101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन EIR ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूए अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश

0: महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रमों के साथ।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं, और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कभी हार नहीं मानते। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज और प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अभी कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। सुनिए आज का भाग 189, 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। सात बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक है मिलिंद सबनीस। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुनिए इसका भाग 28। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में हेलो फरमाइश। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4 बजे सुनिए पिटारा में गीतों भरी।

ये कहानी कहानी है जीवन एक सरल रेखा रेखा लेखिका श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी, संपादन सहायक काजल भद्रगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। पांच बजकर 30 मिनट पर सुनिए तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन, 7 सुनिए जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता, 8 हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार। लेखन है वीरेंद्र कश्यप का, निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर। इन्हीं की प्रस्तुति। आठ बजकर पंद्रह मिनट पर रात्रि चित्रलोक, 9 आपके लिए और 10 आप सुनेंगे छाया गीत। लेखक एवं स्वर राजुल अशोक का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरितमानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ का भाग 189।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में श्री अनूप जलोटा जी मौजूद हैं।
2: नमस्कार जी।
1: जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कोश फूले, कुमुदनी जिये सकुच रहे, भृंग लता झूले। श्रोताओं, कृष्ण भक्ति का संसार बड़ा विविध रंगी है। इसमें कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप और मधुर रूप की अद्भुत छटा बिखेरी गई है। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला में भक्ति के विविध रूपों और आयामों पर चर्चा हम कर रहे हैं अनूप जलोटा जी के साथ। इस कड़ी में आज भक्ति भाव की कौन सी छटा अनूप जी बिखेरेंगे, हम उन्हीं से पूछते हैं। अनूप जी बताइए,
2: आज हम कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमें अधिकार देते हैं, थोड़ी लिबर्टी दे देते हैं कि हम उनको चोर भी कह सकते हैं। हम उन्हें माखन चोर कहते हैं, हम उनको रण छोड़ कहते हैं, हम उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, हम उनकी रासलीला में शामिल हो सकते हैं। भगवान ऐसे कौन से हो सकते हैं जो इतनी हमें इजाजत देते हो कि हम उनके साथ कर सकें। इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि जब भगवान राम सिंहासन पर बैठ गए, राजा बन गए, तो जो वानर सेना थी वो उनके पास आई और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे साथ तो बड़ा धोखा हो गया। उन्होंने कहा क्या धोखा हो गया, हम तो आपके भक्त हैं, हम आपके साथ खेलने आए थे, आनंद करने आए थे, और आपने हमको रावण युद्ध में लगा दिया। उसके बाद अब आप राजा बन गए हैं, अब तो हम बिल्कुल आपके साथ खेल नहीं सकते, हम तो बड़ा दूर रहते हैं आपसे। तो भगवान राम ने कहा कि बात सही है, अब मैं राजा बन गया हूं, तुम लोगों के साथ मैं खेल नहीं सकता, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और तुम लोगों को ग्वाल बाल बना दूंगा और हम सब खेलेंगे
1: जी।
2: तो अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, भय राम जी के बानर, किशन जी के ग्वाले। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जो हमें आनंद देते हैं, मित्र बन के हमारे साथ खेलते हैं। लीजिए ऐसा ही एक भजन आपको सुनाता हूं।
3: वो काला एक बांसुरी वाला

0: सचमुच हम बांसुरी बजैया के रंग में जैसे डूब गए थे, खो से गए थे। अनूप जी, हमें बताइए कि इस भजन में किस राग की चर्चा थी?
1: कोई प्योर राग इसमें हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया, मिक्स है
0: जी। और हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि कृष्ण के बहुत सारे भजन आपने गाए हैं, उन भजनों की रचना प्रक्रिया बताते हुए कुछ झलक प्रस्तुत करें।
1: भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस भजन को पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने सबसे पहले गाया और कमाल का गाया। उसके बाद उसी श्रृंखला में उसी भजन को कुछ उसी स्टाइल में मेरे पिताजी ने उतारा और उसको एक सरलता प्रदान करी। उसके बाद कई लोगों ने उस भजन को गाया अलग अलग धुनों में, लेकिन हमने, मैंने और पिताजी ने उसी धुन को साथ रखा जो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने गाई थी। इस भजन के साथ साथ जो व्याख्या होती है वो बड़ी ही हृदय स्पर्शी है
0: जी।
1: कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी। सोचा था कि कन्हैया आएंगे, ये मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी हुई है, समझ गए कि ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती है। तो घंटी को आदेश दिया, बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है, बिल्कुल चुप रहना। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, और जैसे ही जरा सा माखन मुख से गया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी।
0: क्या बात है।
1: कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी और मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू किया। घंटी बोली हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते।
0: क्या बात।
1: बस आ गई गोपी, पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास और यशोदा पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया क्या, और कन्हैया के मुख से अनायास

भोर और सांझ, तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास हो।

अब इसमें एक नई व्याख्या सुनिए। यशोदा कहती है, कन्हैया तुमने हमेशा माखन ही चुराया है, तुम्हारा नाम पड़ गया माखन चोर। अपने घर में तो सब कुछ है, दूध दही मिठाई मेवे, वो सब तो तुम नहीं चुराते, तो ये माखन से इतना प्रेम क्यों है? कन्हैया बता रहे हैं यशोदा को कि उनको माखन इतना

0: वाह, बहुत सुंदर भाव विह्वल कर देने वाला भजन आपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया और हम सब की आंखें नम है इस समय।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत की है आशीष झा। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। जिंदगी की मिट्टी से उठी कहानियों का मोल समझाते हैं ये दो बीघा जमीन फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शास्त्रीय संगीत से महकता ये गाना। फिल्म है हमदर्द, प्रेम धवन के बोल और संगीत है अनिल बिस्वास का।

आइए अब सुनते हैं सखी की उलझन। चित्रलेखा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत है रोशन का।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। हम आपको बता दें आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। भक्त संगीत सुनिए सुबह 7:30 से कार्यक्रम अमृत कलश के अंतर्गत, और गैर फिल्मी गीत गजल सुनिए सुबह 8:15 से कार्यक्रम सुर संगम में। समसामयिक विषयों पर आधारित दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का प्रसारण समय रहेगा सुबह 8:30 से, जिसमें आज की बात का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। साथ ही वार्ता होगी अयोध्या के संत महात्मा बनादास जी एक परिचय, वार्ताकार होंगे महंत अंकित दास जी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत सुनिए सुबह 9:00 से, और श्रोताओं से हम सीधे जुड़ेंगे सुबह 9:30 से हेलो अयोध्या के माध्यम से। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी से आज की कड़ी सुनिए सुबह 10:00 से। अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग सुनिए दोपहर 12:30 से। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा दोपहर 1:00 से, और गीतांजलि सुनिए दोपहर 2:00 से। दोपहर 2:30 से बहनों का कार्यक्रम होगा अंगना, जिसमें आज चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जयंती पर। साथ ही सुश्री अर्पिता मिश्रा की वार्ता सुनवाई जाएगी, स्वस्थ पारिवारिक जीवन का व्यक्ति के व्यक्तित्व व समाज निर्माण में योगदान विषय पर। युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:00 से, जिसमें चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर। अंडोराला वेला स्थान के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही कार्यक्रम में सुनवाई जाएगी ओबी रिकॉर्डिंग आकाशवाणी @90 पर श्रोताओं से बातचीत, साथ ही होगी शब्दावली भी। आकाशवाणी अयोध्या से कार्यक्रम लोक संगीत सुनिए शाम 5:30 से, कार्यक्रम शाम सुहानी 6:10 से, और कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के सुनिए शाम 6:30 से। एक प्रगतिशील किसान श्री केदारनाथ मौर्य से बातचीत सुनवाई जाएगी शाम 6:45 पर। प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत, साथ ही कार्यक्रम में चर्चा होगी विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। कार्यक्रम गीत कुंजन का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:15 से। महफिल या गजल का

प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:15 और हेलो अयोध्या का समय रहेगा रात्रि 9:30 से। इन कार्यक्रमों के अलावा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का अनुप्रसारण एवं प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय समाचारों का अनुप्रसारण अपने नियत समय पर किया जाएगा। तो ये था संक्षिप्त विवरण हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों का। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये ले कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की, कहा संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तेज आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत एवं सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जनहानि प्रयागराज में हुई है जहां 21 लोगों की मृत्यु हुई।
4: इसके बाद मिर्जापुर में 19, संत रविदास नगर में 16 और फतेहपुर में 11 लोगों की जान गई है। समाचार कक्ष से मैं अरुण।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और कार पुलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। लखनऊ में एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
1: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने पर विशेष जोर दिया ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। इस बीच देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत की अपील और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का असर दिखने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमन अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गाजियाबाद स्थित 8वीं NDRF बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि NDRF ने बीते 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है।
4: देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए NDRF के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने 6

0: रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और एक रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में कल स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है।
1: निराश्रित गोवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसके उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: मौसम विभाग ने आज से 18 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में दिन के समय कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की। कहा, संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: आइए आज के दिन का शुभारंभ हम करते हैं ईश्वर के चरणों में वंदना के साथ। आरंभ मां गायत्री के चरणों में इस वंदना के साथ।

0: कुछ और भक्ति रचनाएं हम प्रस्तुत करेंगे छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। स्नेह में वो ताकत है जिसके जरिए बड़े से बड़े सामर्थ्यवान को भी झुकाया जा सकता है, वरना सुदामा में कहां ताकत थी कि भगवान श्री कृष्ण से पैर धुलवा ले।
1: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए, सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी। तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
2: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
1: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
2: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
1: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
2: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
1: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार,
2: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।

Niki, aiuti a chi श्रोताओं, हम आपको बता दें, बढ़ती हीट वेव और हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए, इन विशेष बातों पर ध्यान दें। अधिक से अधिक पानी पिएं, हल्के रंग के पसीना सोखने वाले हल्के वस्त्र पहनें, धूप के चश्मे, छाता, टोपी और चप्पल का प्रयोग करें। अगर आप खुले में काम करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरों को गीले कपड़े से ढके रहें और छाती का प्रयोग करें। यदि किसी को लू लग भी जाती है तो उस व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती कपड़े, गीले कपड़े से पोछें अथवा नहलाएं तथा चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही ये जरूर याद रखें कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने साथ पानी जरूर रखें। ORS घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, और पंखे और गीले कपड़ों का उपयोग करें तथा बार बार स्नान करें। एक सौ 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समाचारों की थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और

0: प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

0: अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व

0: वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए UDF मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: VD सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। UDF सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर UDF के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और UDF के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि S. पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट PM डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सारना में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी ऐसा

0: दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, दो दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: की याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। कुछ खूबसूरत पलों की महक सी हैं तेरी यादें, सुकून ये भी है कि ये कभी मुरझाती नहीं। कार्यक्रम में पेशे खदमत है चंदन दास की आवाज में गजल।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
1: श्रोताओं, इस समय गर्मी अधिक बढ़ रही है और लू भी बहुत तेज चल रही है, और इससे बचने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए, जिसके

संबंध में कुछ जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि लू के संबंध में जारी की जा रही चेतावनियों को अनदेखा ना करें, उस पर ध्यान दें। हीट स्ट्रोक के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी, मूर्छा आदि को पहचाने और हीट रैश, हीट क्रैम्प का अनुभव अगर आप करते हैं तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। हाइड्रेट रहें, यानी शरीर में जल की कमी को ना होने दें। यदि प्यास ना लगी हो तब भी पानी अवश्य पिएं। शरीर को ढककर रखें, हल्के वस्त्र पहने, खुले में कार्य करते समय धूप से बचाव के लिए शरीर को ढककर रखें। सिर ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा आदि का प्रयोग करें। यथासंभव अधिक से अधिक घर के अंदर या कार्यालय के अंदर ही कार्य करें। साथ ही बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति को जो अकेले रहते हैं उनके नियमित रूप से देखभाल की जानी चाहिए। घरों को ठंडा रखें, दिन के समय पर्दे, खिड़कियां, दरवाजे आदि को बंद रखें। इन सब छोटी मगर मोटी बातों को ध्यान रखकर हम लू लगने से अपने को बचा सकते हैं। सोहेल की आवाज में कार्यक्रम की अगली पेशकश एक गीत।

0: कार्यक्रम सुर संगम आकाशवाणी अयोध्या से आपने सुना। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में अभिवादन है। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे वार्ता अयोध्या के संत महात्मा बनादास जी एक परिचय। वार्ताकार होंगे महंत अंकित दास जी। पर पहले कर लेते हैं आज की बात अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर। किसी भी समाज का केंद्र परिवार होता है। परिवार ही हर उम्र के लोगों को सुकून पहुंचाता है। परिवार किसी भी सामाजिक ढांचे की रीढ़ की तरह काम करता है। परिवार के हर एक सदस्य को आर्थिक और भावनात्मक सपोर्ट करता है। परिवार की अहमियत क्या होती है, इसे बताने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। समाज में परिवार सबसे छोटी इकाई है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना संभव नहीं। हमारी संस्कृति और सभ्यता में कितने ही परिवर्तन हुए, लेकिन परिवार संस्था के अस्तित्व पर कभी भी आंच नहीं आई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था। सन 1995 से यह सिलसिला जारी रहा 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने का। विश्व परिवार दिवस का मूल उद्देश्य है परिवारों के विघटन को रोकना। ये दिन दुनिया भर में परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अहमियत को समझाने और उनकी भलाई के लिए काम करने का प्रतीक है। आज के तकनीकी युग में तकनीक का इस्तेमाल रिश्तों को जोड़ने के लिए हो रहा है। हर साल की तरह साल 2026 की थीम है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण। तो भाई, कम से कम आज के दिन हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनकी परेशानियों को समझें, दूर करने का प्रयास करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि परिवार हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। परिवार ही वो आधार है जो

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: आपके संदेश
3: से आते हैं
2: आपके गीत।
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
2: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।

0: digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: कार्यक्रम है प्रणाम अयोध्या और केंद्र है आकाशवाणी अयोध्या। कार्यक्रम में अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं अयोध्या के संत महात्मा बनादास जी एक परिचय। वार्ताकार हैं महंत अंकित दास जी।
3: जीवन परिचय महात्मा बनादास जी महाराज। महात्मा बनादास जी का जन्म पौष शुक्ल 4 संवत 1878 गोंडा जिले के अशोकपुर गांव में हुआ था। इनका मूल नाम बना सिंह था। इनके पिता का नाम गुरुदत्त सिंह था। इनके पूर्वजों का मूल स्थान बैसवाड़ा उन्नाव राय बरेली था। शताब्दियों पूर्व वे रंजीतपुरवा नामक स्थान से आकर अयोध्या के निकटस्थ इस भूभाग में बस गए थे। कलहंस राजा अचल नारायण सिंह 1544 ईस्वी में वर्तमान ने उन्नाव जिले के डोंगिया खेड़ा तालुका के राव के पुत्र हमन शाह को अपनी पुत्री ब्याह कर गोंडा जिले के नवाबगंज महादेवा और डिकसिर परगनों के 42 गांव दहेज में दिए थे। उसी संबंध से हमन शाह डोंगिया खेड़ा से गोंडा चले आए और यहीं बस गए। कालांतर में उनकी आशातीत वंश वृद्ध हुई जिससे वैश्य क्षत्रिय आसपास के गांव में फैल गए। इसी से संबंध एक कुल अशोकपुर अनभुला नामक गांव में बस गए। बाबा बनादास जी की एक चौपाई विद्या विधिना ही लिखी भूल भाल हूँ माए पढ़े ककहरा बालपन मात्रा साबित नाए। इतना होते हुए भी दीर्घ काल व्यापी साधना के पश्चात जब इन्होंने अनेक उत्कृष्ट काव्य ग्रंथों की रचना कर ली तो अपनी प्रारंभिक अल्पज्ञता पर इन्हें स्वयं आश्चर्य होता था, किंतु प्रभु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं यह समझकर ये अपने को सांत्वना देते थे। बाल्यावस्था में ही इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक साधना की ओर मुड़ी। इसी समय इन्होंने पुनर्जन्म न लेने का व्रत ले लिया। पुत्र की ऐसी मानसिक स्थिति देखकर पिता गुरुदत्त सिंह ने अपने कुलगुरु गोस्वामी

लक्ष्मण वन से उसे मंत्र दीक्षा दिला दी। उस समय बना सिंह बिल्कुल अबोध थे। गुरु करने को मोहिन ज्ञाना, देख महात्म पितु अनुमाना, तिनके शरण दिए करो आई, इतनी बुद्धि धर्म तब आई। इसी अवस्था में इन्होंने गुरु की आज्ञा से प्राप्त कर शिव की पूजा, रामचरितमानस का पाठ व गीता के अनुसार योगाभ्यास की क्रियाएं प्रारंभ कर दी। पिता को आशंका हुई कि कहीं इनकी एकमात्र संतान घर बार छोड़कर विरक्त न हो जाए, अतः लौकिक जीवन में रुचि उत्पन्न करने के लिए इन्होंने इनका विवाह कर दिया। इनकी ससुराल देवरिया जिले के मनिया समोगर गांव में बसे हुए बिसेन क्षत्रियों के यहाँ हुई। विवाह के उपरांत गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी इनकी आध्यात्म साधना का प्रभाव पूर्णतः गतिशील रहा। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक थी। जमींदारी होते हुए भी आर्थिक दशा शोचनीय देखकर इन्होंने भिनगा राज्य बहराइच की सेना में नौकरी कर ली और लगभग 7 वर्ष तक यहाँ कार्य करते रहे। इस सैनिक जीवन की छाप इनकी वाणी में अंत तक बनी रही। गृह त्याग के पश्चात भी ये अपने को आध्यात्म क्षेत्र में राम का सिपाही मानते रहे। ये प्रायः कहा करते थे, हम तो हैं रघुवीर सिपाही, निस दिन राम नाम रटिबे को, और हुकुम हमरे सिर नाही, काया मुलुक जगीर मिली है, सुबस बसावन सो मोहि चाही, बिरत चर्म अति ज्ञान अनुपम सुमति सनाहन पटतर जाही, दास बना प्रभु बिरत भरोसे, बसत सदा सर जूतट माही। जिस समय ये भिनगा राज में नौकरी कर रहे थे, इनके चचेरे भाई मोती सिंह के उद्योग से घर की स्थिति सुधर गई। इन्होंने बलरामपुर में बहुत सी जमीन लेकर खेती का समुचित प्रबंध कर लिया। इनके अनुरोध से बना सिंह नौकरी छोड़कर घर चले आए। यहाँ रहते अधिक दिन नहीं बीते थे कि 12 वर्ष की आयु में इनके एकमात्र पुत्र का परलोक वास हो गया। बनादास जी के जीवन में इस घटना ने युगांतर उपस्थित कर दिया। सामान्य लोगों की बात इसे देवकोप मानने के बदले आराध्य की असीम कृपा का फल माना। पुत्र शोक में अयोध्या आगमन, उस दिन संबद 1908 की कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व था। पुत्र का सब लेकर आए और अयोध्या के होकर रह गए। उस समय बाबा की आयु 30 वर्ष 2 महीना 3 दिन की थी। कुछ दिन अयोध्या वास करने के अंततर इनकी इच्छा देशाटन की हुई। अयोध्या में वह पहले स्वर्ग द्वार में रहे। वर्षा ऋतु में वह स्थान पानी से भर गया। परम हंस सिया वल्लभ शरण जी महाराज से, जिन्हें इन्होंने सतगुरु माना है, इनकी भेंट उसी समय पर हुई जिससे भक्त ज्ञान और योग साधना का समय ज्ञान प्राप्त किया। उन्हीं की प्रेरणा से अजगर वृत्ति धारण कर 14 वर्ष कठोर साधना में निरत हुए। इनकी प्रतिज्ञा थी 14 वर्ष व्यापी राम नाम साधना में इनके आदर्श भरत जी थे। बनादास जी को विश्वास था कि जिस प्रकार 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में तपोमय जीवन व्यतीत करके भरत जी अपने आराध्य का साक्षात्कार प्राप्त किया था, उसी भाव को धारण कर तपस्या करने से आज भी भगवान श्री राम का दर्शन हो सकता है। करुणा मैं रघुवंश मन सह न सके यह पीर, हृदय कमल विकसित भयो प्रगटे सिय रघुवीर, अरुण चरण पंकज बसन कल कोमल नवनीत, सूरत में आयो जब नाश भई भव भीत। 14 वर्षीय तपस्या के समाप्ति पर इन्हें भगवान श्री राम मां जानकी सहित साक्षात्कार दर्शन से कृतार्थ किया। इनके पश्चात राम घाट छोड़कर ये अयोध्या नगर में चले आए और वर्तमान तुलसी उद्यान पूर्व विक्टोरिया पार्क की पश्चिम सीमा में संलग्न भूमि पर एक मुराव की बाड़ी में रहने लगे। बनादास जी को वह स्थान पसंद आ गया, अतः मुराव की बाड़ी में ही एक किनारे पर उन्होंने अपनी एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बना ली और भजन करने लगे। कालांतर में मुराव ने बाड़ी करना छोड़कर उस भूमि को उन्हें सौंप दिया। इन्होंने कुटी को आश्रम का रूप देकर उसका नाम भवहरण कुंज रखा। इसके बाद आजीवन उसी स्थान पर रहे। कुंज भवहरण अवध मध उत्तम अवश्य मुकाम।

0: हे राम जानकी धाम, राम जानकी धाम, काम दुख मोह कल्प तरु, मना दास मम हेतु और सारो जग थल मरु, पाए सब मन कामना एक भरोसे नाम, कुंज भव हरण अवध मज उत्तम अवश्य मुकाम। बना दास जी के हाथ के लगाए अशोक बेर और सीहोर के वृक्ष अब तक इस आश्रम में विद्यमान है। एक बार रीवा के महाराज रघुराज सिंह अयोध्या आए, अनेक मंदिरों और महात्माओं का दर्शन करते हुए भी जब वह भवहरण कुंज के सामने पहुँचे तो हाथी से उतरकर आश्रम के भीतर गए। उस समय बनादास जी अशोक वृक्ष के नीचे जमीन पर लेटे हुए थे। रघुराज सिंह को आता देखकर इन्होंने करवट बदल ली और उनकी ओर पीठ कर दिया। इस व्यवहार से खिन्न होकर रघुराज सिंह बिना प्रणाम किए तत्काल ही लौट पड़े। रात में जब वह लेटे तब देर तक नींद नहीं आई। सो जाने पर स्वप्न में देखा कि आभास हुआ जैसे किसी महात्मा की अवज्ञा करने के फलस्वरूप वह घोर कलेश पा रहे हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर वह भवहरण कुंज आए और बनादास जी से अपने द्वारा किए गए अपमान के लिए क्षमा याचना करने लगे। बनादास जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, जिसे मान का भूख नहीं, अपमान की परवाह नहीं, उसकी अवहेलना का अर्थ ही क्या। महात्मा बनादास जी की लोकोत्तर सिद्धियों की चर्चा करते हुए अयोध्या का इतिहास के रचयिता अवधवासी लाला सीताराम ने लिखा है कि अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह ददुआ साहब उत्तराधिकार संबंधी अपने मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हार गए थे। इसके बाद प्रिवी काउंसिल लंदन से उन्हें 1889 ईस्वी में बनादास जी की कृपा से ही डिग्री प्राप्त हुई थी। अवध की झांकी पृष्ठ संख्या 5 इस संबंध में बनादास जी की निम्नलिखित पंक्तियां दृष्टब्द है। वारिसमान प्रताप नारायण दास बना अस खांचत ली के। इसके पश्चात बनादास जी के शेष जीवन इसी आश्रम में आराध्य के ध्यान और उनकी लीलाओं के गान में बीता। जीवन के अंतिम समय में रोगों के आक्रमण से बनादास जी को अपार कष्ट हुआ। भवहरण कुंज में ही चैत्र शुक्ल सप्तमी संबद 1949 को 71 वर्ष की आयु में इनका केतवास हुआ और इस प्रकार साधना के प्रारंभ में की गई प्रतिज्ञा पूरी हुई। है मेरो याही मतो जो पुरवे रघुवीर, जियो राम रटि अवध में मरो तो सरजू तीर। महात्मा बनादास जी की जन्मभूमि अशोकपुर नवाबगंज गोंडा में स्थित ब्रह्म ऋषि देवराव बाबा द्वारा स्थापित मूर्ति की देखरेख या संरक्षण हेतु निरंतर प्रयासरत। जय जय श्री सीताराम।
1: अयोध्या के संत महात्मा बनादास जी एक परिचय बता रहे थे महंत अंकित दास जी। महात्मा बनादास ने अपना सर्वस्व ईश्वर और समाज को समर्पित कर दिया। संतों की यही तो पहचान है जो सभी मोह को त्याग देते हैं।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
2: नहीं अछूता हो जिस
1: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
3: अब कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में चलते चलते आज की कुछ खास खबरें समाचार पत्रों से। समाचार पत्र अमर उजाला के माई सिटी अंक के अनुसार

नगर निगम अयोध्या में प्रत्येक सोमवार को नो फ्यूल डे रहेगा, जो प्रधानमंत्री के ईंधन खर्च में कमी के आह्वान पर निर्णय लिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए शुक्रवार से उपकेंद्रों पर मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्रीराम नगरी में 25 मई को राम परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ मनाई जाएगी। समाचार पत्र दैनिक जागरण के अयोध्या जागरण के अनुसार सत्र 2026 में पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश आवेदन की तिथि 17 मई तक बढ़ा दी गई है और नगर निगम अब डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शहर में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसी के साथ संपन्न हुआ हमारा आज का कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित किया गया। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब हम लाए हैं श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर भेजी गई फरमाइशें कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में।
1: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161877347।
0: जय श्रोताओं, हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है आज के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में। मैं हूं आराधना, आप सभी के संदेशों को लेकर कार्यक्रम में। दिन खिल चुका है और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं। थोड़ा वक्त सा वक्त हमारे लिए आकाशवाणी अयोध्या के लिए हम सभी श्रोताओं से चाहते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता रोज अपनी पसंद हमें लिखकर भेजते हैं, जिन्हें अधिक से अधिक हम अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं फिल्म शर्मिली के गीत के साथ, जिसे हमारे इन श्रोताओं ने पसंद किया है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सीटी दीवाना और सुखविंदर सिंह जोड़ा के साथ हैं पिंटू और राजेंद्र सिंह। आप सुनिए अपनी पसंद का गाना फिल्म शर्मिली से।

तो दोस्तों, ये मीठा सा गीत रहा श्रोताओं के लिए फिल्म शर्मीली से। अगली फिल्म है हीर रांझा और इसके गीत के लिए हमारे श्रोता हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ और कालिया। आप सब पसंद करता हमारे सुने ये गीत, साथ ही हमारे अन्य श्रोताओं के लिए भी ये मीठा सा गीत।

0: निर्देशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: गिरिडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन, साइमा हसन, बाबू अहद, मिफ्रा, बेबी चाहत और सादिया। आप सबकी पसंद आज के कार्यक्रम में बनी है फिल्म तीन देवियां का गीत। सुनिए और सभी को सुनाइए।

भाई दोस्तों, हमारी इस जीवन में रोज कुछ ना कुछ नए अफसाने बनते हैं और उन्हीं में से एक होता है आकाशवाणी अयोध्या के साथ हमारे श्रोताओं का जुड़ना। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म चोर मचाए शोर से। सुनना चाहते हैं अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरबख्श सिंह। फिल्म चोर मचाए शोर का ये गीत।

भाई हम अपने श्रोताओं से भी यही पूछना चाहेंगे, बोलो है ना, आप हमसे दूर जरूर हैं लेकिन हमारे साथ जुड़े भी हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत हम शामिल करेंगे, फिल्म साथी है और इस फिल्म का गीत हमारे श्रोता जो सुनना चाहते हैं उनका नाम है रिंगिने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। फिल्म का नाम साथी।

प्रिया श्रोताओं, ऐसे ही मीठे गीतों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी पसंद हमें भेजते रहिए। कार्यक्रम का अंतिम नगमा फिल्म अनुराग से हम शामिल कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश।

तो श्रोताओं, ये रहा हमारा आज का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। और अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजते रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: हेलो
4: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर.
5: माय नंबर इज
6: 7376804090. लाइव हेलो अयोध्या. आप सुनते हैं मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम होगा रात 10 तक. हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें. 7376804090.
7: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com. ayodhyaakashwani@gmail.com.

0: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत श्रोताओं ने सुना आकाशवाणी अयोध्या से। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब हम सीधे जुड़ते हैं श्रोताओं से कार्यक्रम हेलो अयोध्या के माध्यम से।
1: अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: हेलो एंड वेलकम टू आवर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। दोस्तों, इस समय गर्मी अपने चरम पर है। हमें अपने गर्मी के प्रकोप से बचना है तो घर के अंदर ही रहना होगा। घर में रहिए, आकाशवाणी अयोध्या सुनिए और जुड़िए हमारे साथ यानी आकाशवाणी अयोध्या के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या के माध्यम से। मिलाइए 73-76-80-40-90 और मैं आराधना आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रही हूँ। चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम के पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: मैम
0: जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम शिवपाल सिंह है, नवाबगंज गोंडा बिश्नौतपुर।
0: शिवपाल जी, क्या करते हैं आप?
2: किराना स्टोर है मैम।
0: तो आपके किराना स्टोर पर कौन सी खास चीज है जो सबसे ज्यादा बिकती है? हेलो
2: मैम,
0: आपके किराना स्टोर पर कौन सी ऐसी चीज है?
2: ये आवाज नहीं आती है, कम आती है आवाज
0: जी। मुझे लगता है आपका जो स्टोर है वो हाईवे के पास है क्या?
2: जी मैम।
0: जी, इसीलिए आवाज ज्यादा आ रही है, मुझे गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। तो
2: जी,
0: जी शिवपाल जी, आप दिन भर अपने स्टोर पर रेडियो लगा कर रखते हैं?
2: जी मैम।
0: आप अपने स्टोर पर दिन भर हेलो अयोध्या आकाशवाणी अयोध्या सुनते रहते हैं?
2: जी मैम।
0: जी, तो कितने बजे?
2: साढ़े नौ बजे।

0: बजे खोले हैं, 12:30 जो लोग गीत आता है वो भी सुनते हैं मैम।
1: जी जी जी।
0: फिर 1 बजे शनिवार का हेलो फैजाबाद हेलो अयोध्या आता है वो भी सुनते हैं।
1: जी हेलो अयोध्या तो अब हर दिन होता है।
0: जी मैम।
1: जी तो आप अपना स्टोर कितने बजे खोल देते हैं?
0: जी मैम।
1: अपने स्टोर को आप कितने बजे खोल देते हैं ग्राहकों के लिए?
0: 6 बजे
1: सुबह 6 बजे।
0: जी
1: जी क्या बात है। चलिए शिवपाल जी आपको हम क्या सुनवाएं आज?
0: जी मैम
1: आपकी आज के कार्यक्रम में क्या पसंद है, क्या सुनवाएं?
0: वो फिरकी वाली।
1: फिरकी वाली
0: राजा औरंग का गाना।
1: जी बहुत ही प्यारा गीत है और अपने समय का सुपर हिट गाना है और आज भी इस गीत को बहुत लोग पसंद करते हैं। चलिए शिवपाल जी आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए बहुत बहुत शुक्रिया और आकाशवाणी अयोध्या के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।

0: मान से भाई हम तो अपनी जुबान से नहीं फिरते हैं, अपने कार्यक्रमों को अपने समय से लेकर हाजिर हो जाते हैं। चलिए हमारे कौन से श्रोता हैं जो अपनी जुबान से हमारे साथ हाजिर हैं। हेलो
1: हेलो। हाँ मैडम नमस्ते
0: जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
1: मैं आपका पुराना श्रोता अर्जुन कुमार सोनकर, श्रोता रमना अयोध्या।
0: क्या बात है अर्जुन जी, आप हमारे कार्यक्रमों को लगातार सुनते हैं लगता है।
1: मैडम आपका प्रोग्राम तो सुबह से चलता है, रात में 11 बजे तक चलता है। इस वक्त मैं दुकान पे हूँ मैडम
0: जी। किस चीज की दुकान है आपकी?
1: पान की दुकान है मैडम।
0: पान की
1: जी?
0: तो ये बताइए कि कौन से खास तरह के पान की आपकी ज्यादा मांग होती है?
1: पान तो मैडम अब बहुत कम लोग हो गए खाने वाले, तो मसाला वाले हो गए।
0: जी जी जी।
1: तो है, कम बिकता है पान।
0: जी जी। अच्छा कोई वैरायटी विशेष होती है पान की?
1: जी जी जी
0: जी। कौन सी?
1: जी आवाज कम आ रही है आपकी मैडम
0: जी। मैंने पूछा कि कौन सी वैरायटी ज्यादा बिकती है पान की?
1: पान की
0: जी,
1: पान की वैरायटी तो बहुत प्रकार की मैडम, लेकिन उसकी बिक्री नहीं है, कम बिकता है पान
0: जी।
1: जैसे जैसे ग्राहक आते हैं उसी हिसाब से बेचते हैं
0: जी।
1: खाता खाता कोई तंबाकू खाता है
0: जी। वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों के जीवन में रंग भरते हैं
1: जी।
0: जी चलिए, तो अर्जुन जी क्या सुनवाएं आपको?
1: जी जी मैडम
0: जी, आज के कार्यक्रम में आपको क्या सुनवाएं?
1: जिंदगी इम्तिहान लेती है।
0: जिंदगी इम्तिहान लेती है, क्या बड़ा संजीदा जी, बड़ा संजीदा गीत आप सुनना चाहते हैं, कोई खास वजह?
1: जी मैडम,
0: इतना संजीदा गीत आप सुनना चाहते हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है।
1: पुराना ही गीत ज्यादा सुनता हूँ मैडम, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है।
0: जी ये तो बात है भाई, पुराने गीतों की मिठास तो भाई,
1: पुराने गीतों की बात ही कुछ और है मैडम,
0: उसका कोई मुकाबला ही नहीं है कह सकते हैं।

0: तो कहेंगे जिंदगी इम्तहान जरूर लेती है, लेकिन हमारे जो मीठे मीठे गीत हैं ना, वो हमारी जिंदगी के इन इम्तहान से पार करने में बहुत सहयोग करते हैं, हमारे दिलो दिमाग को बहुत सुकून देते हैं। चलिए हमारे अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: ਚੱਲੇ ਤੇਜ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਦ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਪਕੋ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਨਮਸਕਾਰ।
0: ਗੁਰੂ
1: ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੀ।
0: ਜੀ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਔਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ।
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਜੀ ਆਪ ਉਸਕੋ ਹਿੰਦੀ ਮੇ अनुवाद कर सकते हैं ताकि हमारे श्रोता भी आसानी से समझ सके।
1: जी इसका अनुवाद भी कर सकते हैं
0: जी।
1: मैडम जी बात ये है, आपके कार्यक्रम सुनते हमारे को बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: और मन खुश हो जाता है जब आपके कार्यक्रम सुनते हैं
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: भी लगते हमारी ये भी थोड़ी सी आपसे गुजारिश है
0: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मोहम्मद अनवर जी पंजाब से?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो इस समय पंजाब का क्या माहौल है, कैसा मौसम है?
1: पंजाब का माहौल अच्छा है और गर्मी पूरी एन प्यारी सी है
0: जी, चरम पर है।
1: पंजाबी में कहना इसको पंजाबी का महीना जो बोलते हैं इसको जेठ का महीना बोलते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: जैसे देवर का महीना होता है जेठ का महीना होता है
0: जी जी।
1: इसे पूरी गर्मी और लू पड़ती है जी, आज संग्रांत है हमारे
0: जी। तो गर्मी और लू से बचने के लिए आप क्या करते हैं?
1: जी मेरी सैलून की शॉप है जी।
0: जी सैलून की शॉप है।
1: और मैडम जी आपने ना जो बोला था ना गल अधूरी, लगता है जो हवा ने सुनी भी लगता है ऐसे जो हवा है ना हमारे को मीठी मीठी लगती है
0: जी।
1: आगे उसका पास आता है किधरों सास अंगूरी।

0: वो भी ऐप से। फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
4: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
3: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
4: और साथ में अपना नाम, पता
3: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
4: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
5: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
6: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
7: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
8: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
7: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
8: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
9: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
8: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
9: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
10: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
2: दोस्तों, इस चिलचिलाती गर्मी में हमारे जो मीठे मीठे गीत हैं वो हमें तरावट देते हैं, और इन्हें सुनने के लिए हमारे श्रोता हमारा फ़ोन नंबर डायल करते हैं 7376804090, और इस नंबर के साथ हमारे साथ कौन जुड़ा है आइए जानते हैं। हेलो।
11: हेलो
2: जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
11: अवंतिका नाम है मैम।
2: अवंतिका जी कहाँ से हैं आप? क्या करती हैं अवंतिका आप?
11: मैम घर पे काम बताते हैं मम्मी के साथ।
2: मम्मी के साथ आप उनकी हेल्प करती हैं?
11: यस
2: जी। तो अभी ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले हमने मातृ दिवस मनाया, तो आपने अपनी मम्मी के लिए ऐसा क्या किया जो मम्मी आपके दिल से खुश हो जाएं और आपको अपने दिल से लगा लें? कुछ ऐसा खास आपने अपनी माँ के लिए किया?
11: हेलो
2: जी, मैंने पूछा अपने मातृ दिवस पर अपनी मम्मी के लिए कुछ खास किया था? हेलो अवंतिका जी, चलिए कोई बात नहीं, अवंतिका जी से हमारा संपर्क टूट गया है और उन्होंने हमें एक माँ फिल्म का बेहद ही प्यारा मीठा सा गीत सुनवाने की फरमाइश की थी। अवंतिका जी के लिए ये गीत हम पेश कर रहे हैं।

श्रोताओ, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये है हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसे आप प्रतिदिन सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से 10 तक और शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से। आज का कार्यक्रम आपके लिए पेश किया आराधना ने और आप तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए हमारे साथ तकनीकी सहयोग दिया अश्विनी शुक्ला ने। अब आज के इस कार्यक्रम

सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया गया 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी अयोध्या से हमारे अगले प्रसारण को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो अयोध्या 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
1: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
3: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
3: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
3: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
3: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
3: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
3: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
3: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
3: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
3: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें,

0: और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।
1: जैसे?
0: जैसे प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं।
1: जैसे?
0: जैसे कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है

0: ये विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है, और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ, और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
3: अब सो जाओ।
2: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और

0: में, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
4: हाँ,
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव

0: के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय तो बना दे यार, सवेर होगी।
5: हां साहब।
6: ओ फायर चुका।

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे।

0: उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
1: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
2: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
1: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
2: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
4: Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
5: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
4: On that day, the sun shone bright. And all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy.

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 101.9 MHz पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: हमसे
2: जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
1: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल है?
2: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
1: बिल्कुल ठीक है। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं, और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
2: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
1: शॉल वगैरह बनाते हैं?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
2: जी बिल्कुल।
1: तो आपकी अपनी शॉप है, या आप कहीं जाते हैं, या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
2: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
1: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
2: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
1: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
2: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत।
1: जी जी जी जी
2: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
1: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
2: जी बिल्कुल।
1: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं, या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
2: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
1: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
2: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
1: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
2: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहां का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
1: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
2: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
1: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं, और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती से कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियाँ मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। और अगर हम कहीं बाहर भी जाएं ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलॉइड के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं, खेत से कर रहे हैं क्या?
1: ये इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा, तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मत राज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ। दीदी आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था। काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली। तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में?
1: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सेपाल दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए, रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है
1: अमरावती विदर्भ में? बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी, और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: पूरी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए, अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते, आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह अभी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों? लेडीज जेंट्स।
1: जेंट्स।
0: अच्छा
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है राजस्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हाल चाल है, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिकद्वारा श्रीनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
0: जी जी।
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा।
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है, जोत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम।

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर 2 सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आज बंद है।
0: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब
0: जी
1: के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो।
0: कालजयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हाँ तो साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों ना हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा, मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

हुसैर अल जाफरी के ये कलाम आप सुन रहे थे। अशोक खोसला की आवाज में कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये जगजीत सिंह की आवाज में। ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जगजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहत इंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रोड बूंदे इस फिल्म इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर

एरा गैरा नथु खेरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाई गई, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल कवाली पॉप गीत और लोक गीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चे से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्चे की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपए और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपए हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत

0: बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत चुने गए हैं जिनमें पारिवारिक रिश्तों की भी बातें हैं और परिवार का आपसी संगठन, आपसी प्रेम भी दर्शाया गया है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक।

बिल्कुल कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी में आज सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्राणी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

कुमार के आवाज में ढोंगी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुनवा रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो है ही, साथ ही पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं, महबूब के बोल, A.R. रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं देवी गीत मालविका और हरिओम की आवाज में।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आवश्यक सूचना, हीट वेव अग्निकांड। श्रोताओं, गर्मी के मौसम में अग्निकांड की घटनाएं भी घटित होती रहती हैं, जिसमें थोड़ी सी चूक के कारण लोगों के खेतों एवं घरों में आग लग जाती है। आग लगने के कारण जन धन की क्षति होती है और इससे जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या नहीं करना है, उन बातों पर विशेष ध्यान रखना है। घरों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए पुरानी वायरिंग को समय रहते बदल दें। AC को लगातार कई घंटे तक ना चलाएं। बीच बीच में कुछ घंटों के लिए बंद कर दें। किसी भी छोटी चिंगारी को अनदेखा ना करें, क्योंकि वो बड़ी आग में बदल सकती है। खाना बनाते समय पानी से भरी बाल्टी हमेशा अपने साथ रखें। खाना बनाने के बाद चूल्हे को तथा रेगुलेटर को अच्छे से बंद करें। मोमबत्ती व अंगीठी का अगर इस्तेमाल करना पड़े तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। माचिस, लाइटर एवं अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खेतों में अपनी फसल को काट कर सुरक्षित स्थान पर रखें। अपने क्षेत्र के अग्निशमन विभाग का नंबर साथ रखें एवं आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन विभाग से संपर्क किया जा सके। अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें। हमें इन बातों पर ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है। घरों में तारों से निकलने वाली चिंगारी को नजरअंदाज नहीं करना है। बिस्तर पर धूम्रपान ना करें। खड़ी फसल के किनारे खाना ना बनाएं। चूल्हे की चिंगारी व गर्म राख कूड़े के ढेर को खुले में ना फेंकें। जब तक सूखी फसल खड़ी हो तब तक खेतों के आसपास खरपतवार ना जलाएं। रसोई घर में अनावश्यक ज्वलन पदार्थ ना रखें। खेतों में बीड़ी, सिगरेट आदि को जलता हुआ ना फेंकें। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं लोक रंग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं लोकगीत। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगला लोकगीत शारदा सिन्हा की आवाज में।

0: उत्साह मनुष्य को कर्मों से प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, जब बात हो हमारी फरमाइशों की, तो आइए शामिल करते हैं हमारे फेसबुक श्रोताओं की फरमाइशों को। तो आइए कार्यक्रम में जानते हैं कि हमें संदेश किस किस ने भेजा है। आइए शामिल करते हैं गुरमीत सिंह मीता, मोहम्मद हफीज रहमान का संदेश आया है हमें भाकर पंजाब से। अगला संदेश हमें आया है

कोयला अशोक वर्मा का। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला संदेश भेजा है बंडू पोपलघट निवासा खुपटी महाराष्ट्र से। अगला संदेश हमें आया है सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे का। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप ने। अगला संदेश हमें आया है सुरेंद्र खुराना का न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से। कार्यक्रम में अगला संदेश आया है पद्मा टाकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह का। कार्यक्रम में हमें अगला संदेश भेजा है नसीर शेख ने। इनका संदेश हमें आया है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेजा है मोहम्मद फरमान ने। कार्यक्रम में अगला संदेश आया है बेरेडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर का। सुभाष गोदारा का संदेश हमें आया है गांव हीरावाली फजल का पंजाब से। समशूल कुमार राही का संदेश हमें आया है गंज डुंडवारा से। अगला संदेश हमें आया है संदीप कुमार का गोराया जलंधर से। जनकपुरी सहारनपुर से हमें संदेश भेजा है जॉन डिकैस्ट्रो ने। अगला संदेश श्रोताओं आया है गगनदीप थांदी का टोरोवाल नवाशहर पंजाब से। कार्यक्रम में अगला संदेश आया है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा का। कार्यक्रम में शामिल करते हैं कुछ और संदेश जो कि हमें आया है पाटन गुजरात से धीरजवी रबारी का। ताज मंचल लक्कड़ बाजार खांडवा से कार्यक्रम में संदेश भेजा है मोहम्मद रफीफ पवार ने। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं इन सब की फरमाइश पर ये गीत, तेरे नाम फिल्म का ये गीत।

श्रोता, ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं कुछ और फरमाइशें जो कि हमें आई है पटियाला रोज कंच डिंडवारा उच्च प्रदेश से मोहम्मद खलील कुरैशी का। अगला संदेश हमें आया है परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संघई का। बोधराज खोरवाल का संदेश हमें भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से। श्रोता, कार्यक्रम में अगला संदेश आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी का। विनय मोहन का संदेश आया है सेक्टर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से। सत्येंद्र चंसौलिया आदर्श सार्थक का संदेश आया है ग्राम पंजौनिया जिला जलौन से। अगला संदेश आया है सुखविंदर सिंह जौड़ा का कृष्णा पार्क दिल्ली से। बी कमाल का संदेश आया है मजनू का टीला से। अगला संदेश आया है उत्तम सिंह जंघेल का आर्यनगर कोका भिलाई से, इन्होंने संदेश भेजा है। अगला संदेश हमें आया है राजू कुमार का मुजफ्फरपुर बिहार से। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला संदेश हमें भेजा है अशोक वर्मा ने। कार्यक्रम में अगला संदेश है दतार सिंह गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। जबलपुर मध्य प्रदेश से हमें संदेश भेजा है अशोक सिंह ने। तो आइए कार्यक्रम में शामिल कर दें इन सब की फरमाइश पर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं कुछ और फरमाइशें जो कि हमें आई है संतोष भाकरे की साहजी नगर देखलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। अगला संदेश हमें आया है मोहम्मद फरूक शेख, इनका संदेश हमें आया है गणेशपुर गंज टुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें आया है हितेंद्र का श्रोताओं कार्यक्रम में अगला संदेश भेजा है खिल्लू परवेज ने, इनका एक संदेश है सेफ वाटर सेफ लाइफ हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से इन्होंने संदेश भेजा है। अगला संदेश हमें आया है बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम का। अगला संदेश है गुरमीत सिंह मीता का साउथ दिल्ली से। अगला संदेश है साधुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़ का। गुमला झारखंड से संदेश भेजा है नाजमुल हुडा जावेद ने। अगला संदेश हमें आया है विक्रम सिंह करवासा का, गांव कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा का। अगला संदेश हमें आया है फहीम मंसूरी का, बांदा उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम में अगला संदेश है जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप का। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब का संदेश आया है बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम सिंह वरवाल का। अगला संदेश श्रोताओं हमें आया है विनोद लखनपाल रावर का, रावर जिला करनाल से। अगला संदेश है कलानौर से नरिंदर शर्मा का। गोविंद वैष्णव का संदेश आया है ग्राम लसुडिया पता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। अगला संदेश है जाल गांव जामो जिला खामगांव महाराष्ट्र से राजू माठे का। कार्यक्रम में अगला संदेश आया है कस्बा उगैठी से देवेंद्र कुमार गुप्ता का। अगला संदेश हमें आया है सोमदत्त नाभा का, जिला पटियाला पंजाब से। कार्यक्रम में आइए इन सब की फरमाइश पर शामिल करते हैं साजन फिल्म का ये गीत।

अच्छा तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं कुछ और फरमाइशें जो कि हमें आई हैं ऊपर कोट मोहल्ला चौकंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी का। अगला संदेश हमें आया है छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर का। श्रोताओं कार्यक्रम में अगला संदेश है आरायन जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हमें संदेश भेजा है बनवारी जयपाल ने। रायपुर अनई जिला बनारस से हमें संदेश भेजा है इरशाद अहमद ने। अगला संदेश है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी का। कार्यक्रम में अगला संदेश आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा का। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल का। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना का। कार्यक्रम में अगला संदेश है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा का। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा का। अगला संदेश है श्रोताओं पारस मड़ी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार का। अगला संदेश हमें आया है आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस का। अगला संदेश श्रोताओं कार्यक्रम में आया है गंज डुडवारा से मोहम्मद कली मंसारी का। अगला संदेश है अनोखे लाल मौर्य का पुराना शहर बरेली से। कार्यक्रम में अगला संदेश है जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मोड़त का। अगला संदेश हमें आया है हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकर नाइमा का। तुलसी दास का संदेश हमें आया है पंचकुला चंडीगढ़ से।

0: प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सब का आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।

0: हीट स्ट्रोक, लू यानी तेज गर्मी जानलेवा हो सकती है। घर से निकलते समय सिर ढक कर रखें। इसके लिए कपड़े, हैट या छतरी का प्रयोग कर सकते हैं।
1: हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने और पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिए।
0: ORS घर में बने पेय पदार्थों जैसे लस्सी, चावल का माड़, नींबू पानी, छाछ का सेवन कर तरोताजा रहें।
1: स्थानीय मौसम संबंधी जानकारी के लिए रेडियो सुने, टीवी देखें और समाचार पत्र जरूर पढ़ें।
0: पशु पक्षियों को भी छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
1: छोटे बच्चों और पालतू जानवरों को कार या अन्य वाहन में अकेले छोड़कर न जाएं। वाहन जल्दी गर्म होकर खतरनाक तापमान पैदा कर सकता है।
0: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच तेज धूप में जाने से बचें। गर्मी के मौसम में जंक फूड का सेवन न करें। ताजे फल, सलाद तथा घर का बना खाना ही खाएं।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
3: श्रोताओं, ये कार्यक्रम में वापस लौटते हैं और शामिल करते हैं कुछ और फरमाइशें जो कि हमें आई है तुलसी मस्कीन की, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। कार्यक्रम में अगला संदेश है कालका से शुभचंद्र बजाज का। अगला संदेश श्रोताओं हमें आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा का। अगला संदेश आया है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता का। कार्यक्रम में अगला संदेश है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल अंसारी का। अगला संदेश आया है संदीप स्वामी का, हयात कॉलोनी आयरिया बिहार से संदेश भेजा है फैसल इमाम ने। अगला संदेश आया है दिलावर खान का। कार्यक्रम में अगला संदेश है कस्बा उगेठी से धीरज गुप्ता का, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम का। अगला संदेश आया है मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी का। कार्यक्रम में

अगला संदेश हमें आया है कमल साहनी का, नागपुर महाराष्ट्र से। कार्यक्रम में अगला संदेश है श्रोताओं, रवि कुमार का नागपुर महाराष्ट्र से। आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं। कुछ और फरमाइश है जो कि आई है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से राहुल रवि कुमार का। कार्यक्रम में आइए शामिल करते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोतो, अभी आप फरमाया फरमाइशों पर सुन रहे थे ये गीत जिसे हमने लिया था फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से। और अब आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक आवश्यक सूचना। हीट वेव, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक के लक्षण श्रोताओं हो सकते हैं गर्म लाल शुष्क त्वचा का होना, पसीना न आना, पल्स तेज होना, व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम की स्थिति, सिर दर्द, मितली, थकान और कमजोरी होना, चक्कर आना, मूत्र न होना या कम होना आदि। हीट स्ट्रोक के चलते मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले कुछ प्रभाव। उच्च तापमान से शरीर के आंतरिक अंगों विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और शरीर में उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है। मनुष्य के हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। जो लोग एक या दो घंटे से अधिक समय तक 40.6 डिग्री सेल्सियस यानी 105 डिग्री फॉरेनहाइट या अधिक तापमान अथवा गर्म हवा में रहते हैं उनके मस्तिष्क में क्षति होने की संभावना प्रबल हो जाती है। श्रोताओं, इन सब चीजों के साथ हमें क्या नहीं करना है, इन बातों पर विशेष ध्यान रखना है। प्रचार माध्यमों पर हीट वेव, लू की चेतावनी पर ध्यान दें। अधिक से अधिक पानी पिए, हल्के रंग के कपड़े, हल्के वस्त्र पहने, धूप के चश्मे, छाता, टोपी और चप्पल का प्रयोग करें। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ पैरों की को गीले कपड़े से ढके रखें और छाते का प्रयोग करें। लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पोंछकर अथवा नहलाएं तथा चिकित्सक से संपर्क करें। यात्रा करते समय पीने का पानी अपने साथ अवश्य ले जाएं। ORS घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, माड़, नींबू पानी, छाछ आदि का प्रयोग करें जिसमें कि शरीर से पानी की जो कमी हो उसकी भरपाई हो सके। पंखे और गीले कपड़ों का प्रयोग करें तथा बारंबार स्नान करें। हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प्स के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, उबकाई, पसीना आना, मूर्छा आदि अनुभव करते हैं तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। अपने घरों को ठंडा रखें, पर्दे, दरवाजे आदि का उपयोग करें। शाम और रात के समय घर व कमरों को ठंडा करने हेतु पर्दे, दरवाजे खोल दें। सूर्य के ताप से बचने के लिए जहां तक संभव हो घर के निचली मंजिल पर रहें। कार्यस्थल पर पीने का पानी, ठंडा पानी रखें। लोगों को सीधी सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान रखें। श्रम साध्य कार्य को ठंडे समय में करने का प्रयास करें। घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढ़ाएं। गर्भस्थ महिलाओं और रोगग्रस्त लोगों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। हमें इन सबके साथ क्या नहीं करना है, इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। जानवर एवं बच्चों को कभी भी बंद और खड़ी गाड़ियों में अकेला न छोड़ें। दोपहर 12 से 3 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें। गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े ना पहनें। जब बाहर का तापमान अधिक हो तब श्रम साध्य कार्य ना करें। अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रमित खाद्य एवं पेय पदार्थों का प्रयोग ना करें। अल्कोहल, चाय व कॉफी पीने से परहेज करें। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। तो आइए कार्यक्रम में वापस लौटते हैं और जानते हैं कुछ और गीतों के बारे में जो कि आई है हमें हमारे फेसबुक श्रोताओं की फरमाइश पर। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं कुछ और फरमाइशें। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ यानी नीलम का संदेश आया है कार्यक्रम में। अगला संदेश है श्रोताओं, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर का। ओम प्रकाश राय का संदेश हमें आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। अगला संदेश महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी का संदेश आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश श्रोताओं हमें आया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा का। नरेंद्र सिंह पवार का संदेश हमें आया है मध्य प्रदेश रतलाम से। अगला संदेश श्रोताओं हमें आया है रियासत हुसैन सिद्दीकी का जसपुर उत्तराखंड से। दिलशाद हुसैन का संदेश हमें आया है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश श्रोताओं हमें आया है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर का। अगला संदेश आया है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा का। अगला संदेश है खैल बाजार पानीपत से लक्ष्मी मल्होत्रा का। अगला संदेश श्रोताओं है लाहौड़ा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत का। कार्यक्रम में अगला संदेश आया है शाहूनगर

यवतमाल से राहुल मनवर का। कार्यक्रम में अगला संदेश श्रोताओं रजाक मोहम्मद का हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। शेख जयूर रहमान का संदेश हमें आया है मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से। सुरेश गगनेजा का संदेश आया है जलालाबाद वेस्ट से। कार्यक्रम में अगला संदेश है नाना लामसे का मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेड़ी से। अगला संदेश है संजय ढींगिया का बागपत उत्तर प्रदेश से। राधेश्याम शर्मा का संदेश है गांव माडी खेड़ा जिला सिरसा से। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू का अगला संदेश है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। राजेश कुमार वर्मा का। विक्रम मालवीय का संदेश आया है हमें महेश्वरी विनायक रतलाम मध्य प्रदेश से। अगला संदेश हमें आया है पंजाजी नावरकर का। अगला इनका संदेश आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। शिव चौहान का संदेश आया है बाबा कुटीर रायगढ़ से। अगला संदेश श्रोताओं हमें आया है जाकिर मंसूरी का बाजार रोड मुंगीसापुर से। अल्ताफ उजरे का संदेश आया है सांगली जिले के जत शहर से। अगला संदेश श्रोताओं है गजानंद येले दरियापुर भाबली से। अगला संदेश हमें आया है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा का पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। निसार सलमानी का संदेश आया है हमें धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। अगला संदेश है शेरवानी स्कूल गंज ढूंढवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी का। सुनील पाठक का संदेश हमें आया है अनारकली बाजार जगराव से। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं इन सब की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं कार्यक्रम की पहली गजल।

0: आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर घर, जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
4: जग घूमे थर जैसा न कोई।
2: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
3: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि आकाशवाणी अयोध्या से। आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगली गजल, जिसे हमने लिया है आशा भोसले और गुलाम अली की मिलीजुली आवाज में।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि 101.9 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुनते हैं दोपहर समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में

0: बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में है। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
2: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, विंडो खुला रहेगा।
2: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी

0: जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की ईगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो IPL में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार, जिसे हमने अनुप्रसारित किया हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम है अंगना।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम अंगना सुनने वाली सब बहनिन का यीशु के प्यार भरा नमस्कार। कैसन बहनी आप सब हैं? आशा करिए थे कि आप सब अपने घर परिवार के साथे में मस्त हुई हैं, व्यस्त हुई हैं और स्वस्थ भी हुई हैं। आज है 15 मई और 15 मई का मनावा जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में। बहनों, भारतीय संस्कृत हो या दुनिया भर के जो परंपरा है, उन परिवार का न केवल बच्चन के लालन पालन और उनके पालन पोषण ही न, जबकि नैतिक शिक्षा, अच्छा व्यवहार, संस्कार के पहली पाठशाला माना जाता है। परिवार दिवस मनावे के मुख्य कारण है कि लोगन का परिवार से संबंधित जो मुद्दा है उसके बारे में जागरूक बनाओ और परिवार के मुख्य जरूरत भोजन, वस्त्र, आवास, सुरक्षा और चिकित्सा जैसे देखभाल भी शामिल है। बहनों, परिवार स्नेह, सुरक्षा और अपनापन के भावना का सबसे अच्छा स्थान है। परिवार में बड़े बुजुर्गन से जहाँ अपने सबका अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा और नैतिकता सीखे का मिलत है, जो उनकी अपने सबके जीवन का जरूरी अंग है, वही जो न है परिवार में प्यार, खुशी और त्योहार जो न है हंसी खुशी से मनावे का भी अवसर मिलत है। और साथे में जो अगर आप दुखी हैं तो दुखी में संबल और सहयोग के भी भावना बहुत अच्छे से परिवार में पावा जात है। एक दूसरे के सम्मान और परवाह भी परिवार में कीन जात है। साथे में छोट छोट खुशी का भी ध्यान रखा जात है। परिवार के सब सदस्य साथे में रहें तो बहनों कितना अच्छा लागत है। सब हंसी खुशी से रहे, साथे में खेले खाएं, बच्चे

जड़ है हमारा परिवार। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि एक स्वस्थ परिवार का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक महान राष्ट्र के निर्माण की पहली सीढ़ी है। आज के इस व्यावसायिक दौर में मैं एक बड़ी ही दिलचस्प बात देखती हूँ। बाजारवाद ने हर चीज को उत्पाद बना दिया है। आप बड़े बड़े होटल्स और आलीशान रेस्टोरेंट्स के विज्ञापनों को गौर से देखिए। वे करोड़ों रुपए सिर्फ यह बताने के लिए खर्च करते हैं कि यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा आराम या हमारे यहाँ मिलता है घर जैसा स्वाद। मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक 5-स्टार होटल जिसके पास दुनिया के मखमल के गद्दे और अंतर्राष्ट्रीय शेफ हैं, वह अपने विज्ञापनों में घर शब्द का सहारा क्यों ले रहा है? वह इसलिए क्योंकि दुनिया का कोई भी बाजार उस रूहानी सुकून और सुरक्षा को पैदा नहीं कर सकता जो एक स्वस्थ परिवार में मिलता है। जब कोई होटल घर जैसा शब्द इस्तेमाल करता है तो वह अनजाने में यह मानता है कि परिवार ही दुनिया में गुणवत्ता और शांति का सबसे बड़ा मानक है। होटल्स हमें विलासिता तो बेच सकते हैं, पर वह माँ के हाथ के खाने वाली ममता और वह बेफिक्र सुरक्षा वाली नींद नहीं बेच सकते। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा करना चाहती हूँ। पूरी दुनिया परिवार के इसी महत्व को स्वीकार करती है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक वैश्विक अनुस्मारक है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी आर्थिक प्रगति कर लें, यदि हमारे पारिवारिक नींव कमजोर है तो समाज की संरचना कभी स्थिर नहीं रह सकती। इस दिन का उद्देश्य परिवारों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। हमें इस दिन को सिर्फ औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ बैठकर गिले शिकवे दूर कर और आपसी प्रेम को नवीनीकृत करके मनाना चाहिए। परिवार संस्कारों की पहली पाठशाला होती है। एक माँ और एक बेटी के रूप में मैं यह गर्व से कह सकती हूँ कि बच्चे का भविष्य उसके स्कूल के बस्ते से नहीं, बल्कि उसके घर की हवा से तय होता है। मैं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी ईमानदार और साहसी बने, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब वह अपने माता पिता को जीवन के संघर्षों में सच का साथ देते हुए देखती है। परिवार वह प्रयोगशाला है जहाँ बच्चा नैतिकता का पहला प्रयोग करता है। आज के दौर में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है। मैं यह महसूस करती हूँ कि जिस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन स्वस्थ है उसे अवसाद छू भी नहीं सकता। घर की चाय की टेबल पर होने वाली बातें किसी भी मनोचिकित्सक की थेरेपी से कहीं ज्यादा असरदार होती हैं। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब असफलता, बीमारी या आर्थिक मंदी आती है तब पेशेवर रिश्ते और सोशल मीडिया के दोस्त पीछे हट जाते हैं। उस अंधेरे समय में परिवार ही वह सर्कल ऑफ ट्रस्ट होता है जो हमें टूटने नहीं देता। परिवार वह कंधा है जहां आप बिना डरे रो सकते हैं और वह हाथ है जो आपको गिरने से पहले थाम लेता है। जिस व्यक्ति के पीछे एक सहायक परिवार खड़ा होता है वह दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ने का साहस रखता है, क्योंकि उसे पता है कि हारने के बाद भी उसके पास लौटने के लिए एक सुरक्षित घर है।

0: दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखते हैं। आज मैं एक टीस महसूस करती हूँ। भौतिक सुख तो बढ़ गए हैं, हर सदस्य के पास अपना कमरा है, अपना मोबाइल है, लेकिन संवाद मर रहा है। हम एक ही सोफे पर बैठकर एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं। हम साथ तो हैं पर साथ नहीं हैं। स्वस्थ पारिवारिक जीवन को बचाने के लिए मैं कुछ जरूरी बातें साझा करना चाहती हूँ। पहला, साथ बैठकर चाय पीना या बच्चों के साथ खेल खेलना छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन यही वो धागे हैं जो परिवार को मजबूती से बांधते हैं। अपने बच्चों से उनके दिन भर की बातें पूछें, उनके सपनों को सुनें। दूसरा, हमारे घर के बुजुर्ग वो वटवृक्ष हैं जिनकी छांव में संस्कार फलते फूलते हैं। उनका सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे घर के बुजुर्ग कोई बोझ नहीं बल्कि अनुभवों की चलती फिरती लाइब्रेरी हैं। उनका सानिध्य परिवार को जड़ों से जोड़े रखता है। तीसरा, हमें त्योहारों को केवल सोशल मीडिया पर फोटो डालने तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें आपसी मेलजोल का जरिया बनाना चाहिए। एक स्वस्थ परिवार बनाने में महिला की भूमिका एक धुरी के समान होती है। वह सबको जोड़कर रखने वाला वो धागा है जो मोतियों को बिखरने नहीं देता। लेकिन यह जिम्मेदारी केवल महिला की नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य की है। किसी ने क्या खूब कहा है, ईंटों से सिर्फ मकान बनते हैं पर अपनों के प्यार से ही वो घर कहलाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि 15 मई को जब हम परिवार दिवस मनाएं तो स्वयं से एक प्रश्न पूछें, क्या हम अपने घर को सिर्फ सुविधाओं से भर रहे हैं या यादों से? परिवार वह बगीचा है जिसे प्रेम से सींचना पड़ता है। महिला इस बगीचे की माली जरूर है पर खुशबू बिखेरने की जिम्मेदारी हर फूल की है। आइए हम अपने घरों को इतना जीवंत बनाएं कि बाहर की चकाचौंध उसके सामने फीकी पड़ जाए। परिजनों का साथ हो तो हर मुश्किल आसान है। स्वस्थ सुखी परिवार ही इस धरती पर स्वर्ग का प्रमाण है। होटल्स हमें घर जैसा एहसास दिलाने का झूठा वादा तो कर सकते हैं लेकिन वे उस निस्वार्थ ममता और सुरक्षा का विकल्प नहीं बन सकते। मैं आप सभी से यह आह्वान करती हूँ कि अपने घर को केवल रहने का ठिकाना नहीं बल्कि संस्कारों का मंदिर बनाएंगे, क्योंकि जब परिवार मुस्कराएगा तभी समाज फलेगा फूलेगा और हमारा देश विश्व पटल पर गौरवान्वित होगा। मैं अपनी बात इस उम्मीद के साथ समाप्त करती हूँ कि हम सब आज यहाँ से अपने परिवार को थोड़ा और वक्त देने का संकल्प लेकर जाएंगे। जहाँ अपनों का प्यार और विश्वास है वहीं खुशियों का असली वास है, वहीं खुशियों का असली वास है।
1: बहनों, अब ही के आप सब सुनत रही हैं वार्ता अर्पिता मिश्रा जी से। चर्चा का विषय रहा है स्वस्थ पारिवारिक जीवन का व्यक्ति के व्यक्तित्व व समाज निर्माण में योगदान। मैंने आगे अपने सब और बात बत कही कीन जाए, उसे पहले सुन लीन जाए लोकगीत शिखा भदौरिया की आवाज में। आगे अपने सब बतियाए खोए और बातचीत करे खोए।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: मैनो आज 15 मई और 15 मई का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जयंती का भी मनावा जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश रायबरेली दौलतपुर गांव में भय रहा है। मैनो द्विवेदी युग के प्रणेता महान संपादक भाषा सुधारक का आज के दिन याद किया जाता है। द्विवेदी जी कविता और गद्य के भाषा के रूप में खड़ी बोली के प्रयोग कीन जाए इकरे ताई अथक प्रयास जीवन भर करत रहें। साथे मा जोन भाषा में त्रुटि हुआ था उसे संबंधित होए वाले जो न है त्रुटि ओका भी सुधारे के ताई भरपूर प्रयास करत रह गए। मैनो आज के दिन साहित्य मा उनके कार्य सुधार निबंध आलोचना कार्य के ताई याद कीन जात है। आज है मैनो आज दिन है शुक्रवार और शुक्रवार के अपने सब बात कीन जाते।

है सौंदर्य पे जिसमें आप सब कैसन गर्मी में अपने चेहरा का एक्स्ट्रा ग्लोइंग दिखा सकते हैं एकरे बारे में बताओ। ताजी और निखरी त्वचा के ताए सरल और प्रभावी तरीका है एलोवेरा जल। रात में सोवे से पहले एलोवेरा जल चेहरा पर लगावें, ऐसे त्वचा ठंडी और हाइड्रेट रहे। एक इस्तेमाल फेस मास्क के रूप में भी किया जा सकत है। बहनों आजकल गर्मी है और गर्मी में खीरा अपने सबके घरे में आउबे करत है। खीरा कद्दूकस कहके ना उसके रस निकाल लिए। अब एका जो ना है स्प्रे बोतल में भर के रख लें। दिन में 2-3 बार अपने चेहरा पर स्प्रे कर सकत ही। बहुत आसान है और बहुत आराम भी देते चेहरा का। चंदन और गुलाब जल का जो न है मिलाए के एक पेस्ट बना लें और एका भी अपने चेहरा पर 15-20 मिनट तक लगावें। फिर करीब बाद हल्के हाथ से मसाज करके फिर ताज़ा पानी से चेहरा धो लें। गर्मी में राहत अच्छा मतलब महसूस होता है और राहत भी मिलत है। साथे में ना एका कुल करत तो रहा है लेकिन 8-10 गिलास पानी भी जरूर पिए। और अगर अपने घरे में उपलब्ध है मुल्तानी मिट्टी तो एक मास्क लगाए के ना अगर आपका चेहरा जो ना है तैलीय है एक ऑयली स्किन कहा जाता है। गर्मी में ऑयली स्किन वाले इनका तो और ज़्यादा दिक्कत होते कहें से उनका चेहरा और ज़्यादा तैलीय तैलीय नजर आवत है चमकत है। तो गर्मी में मुल्तानी मिट्टी का जो ना है गुलाब जल मिलाए के मास्क तैयार कर लें। चेहरा में एक लेप लगावें फिर 15-20 मिनट बाद ताज़ा और साफ पानी से धो लें और साथ ही में जो ना है ना सूती कपड़ा से अपने चेहरा का पोंछ लें ना कि कोनो और कपड़ा इस्तेमाल करें जिससे चेहरा जो ना है अच्छे से साफ भी हो जाए। दही और ओट्स के स्क्रब बनाए के का हल्के हाथे से मसाज करें। ऐसे गर्मी में चेहरा पर जो जमा पसीना है और जो कोश मतलब त्वचा अपने सबको मर जाता है ना चेहरा पर कबो कबो हल्का ऐसे रूखी रूखी सी त्वचा लागत है वो जो ना है निकल जाए और चेहरा जो ना है बहुत अच्छे से चमके। गर्मी में पुदीना का जूस पिए से फायदा तो होवे करत बहनों। पेटे का फायदा मिलत है पाचन तंत्र अच्छा रहत है। साथ ही में अगर चेहरा का भी फायदा दीन जाए से तो कितना अच्छी बात है। पुदीना का जो ताजी पाती है ना वो कल आवे के रस निकाल ले फिर फ्रिज में रख के पुदीना के आइस क्यूब बना ले। दिन में 1-2 बार चेहरा पे लगा सकती थी और साथ ही मना जब कबो पियहुक मन का है तो गिलास में जो ना है डाल दें 1-2 आइस क्यूब बढ़िया जो ना है पुदीना वाला पानी भी तैयार हो जाए। हल्का नमक डाल के पी भी सकती थी। पपीता गर्मी में चेहरा के ताई फायदेमंद है। पका पपीता लें मसल लें अब एक चेहरा पर लगावें 15-20 मिनट तक लाग रह दें फिर जो ना अच्छे से का धुल लें साफ कर लें चेहरा क्लीन हो जाए बढ़िया। नींबू पानी पिए के साथे साथे ना नींबू और शहद का भी इस्तेमाल अपने चेहरा पर कह सकती थी बहनों। आहार विहार का ध्यान तो रखवे करें स्वस्थ रहे के ताई चेहरा जरूर दमके अगर आहार विहार का ध्यान रखा जाए। साफ पानी पिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें और साथ ही मना सुन लीन जाए गौनई फिर आगे जो ना है अपने सब समय होए तो बातचीत करे का होए।

0: बहनेऊ गौनई सुना जात्रा पद्मा गिड़वानी के आवाज में और सखियन भी साथे मा जो न है गौनई साथ देत रही। अब कार्यक्रम में और बत कही करी के अनुमति घड़ी ना देतिया है यही के साथ है यीशु का कार्यक्रम से दे अनुमति। नमस्कार।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम अंगना 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना। अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक बड़ा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो 3,000 बच्चे हैं वो अपने चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती है, जैसे आप कुछ काम कर रही है, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल। मैं भी बहुत निश्चिंत होके, बेफिक्र होके मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो तभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी, बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है, और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना दे

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही है?
1: जी मेरा नाम वर्षा धगट है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है,
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और सच
1: में हर महिला मेरे ख्याल से भारत

0: भारत की हर महिला का यही किरदार होता है
1: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई तो है ना।
0: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
0: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
1: जी, बहुत सही बात आपने कही और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
0: जी, पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से
0: फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी,
0: हाउस वाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउस वाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ,
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही है?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?

0: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
1: साक्षी जी जरा अपने बारे में बताइए।
0: जी मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात।
0: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
1: साक्षी जी आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
0: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
1: जी
0: के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
1: जी
0: बहुत महत्व है सभी के लिए।
1: सचमुच यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
0: जी।
1: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
0: जी जी बहुत।
1: और विविध भारती सुनती है आप?
0: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
1: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
0: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
1: तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो है उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना।
1: हाँ,
0: जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और

0: इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके
1: खुशी मिलती खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाए बोलते सभी कम ज्यादा हो जाता
0: है। और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: खाने की तो अच्छी से आपने थकान जाती सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी है ना।
1: मेहनत पे फल मिलता ऐसा हो जाता
0: है। हाँ बिल्कुल मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ।
0: और रेडियो सुनती है आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश।
1: गाने सुनते हो? रहता रेडियो दिन भर
0: रेडियो चालू रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: सायली।
1: क्या नाम है आपका?
0: राजभाई, राजभाई धाकड़।
1: राजभाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
0: बड़े गांव से।
1: बड़े गांव?
0: गुना जिले।
1: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
0: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
1: क्या बात,
0: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
1: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
0: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
1: क्या बात है, सचमुच यानी परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
0: अच्छा लगे, देवर है, देरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
0: हाँ, रेडियो सुनती हैं।
1: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
0: बहुत अच्छे लगे हैं।
1: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आपके पसंद का?
0: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दो गाड़ी।
1: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली
1: जी, नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत से आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती है। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती है आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर का काम सिंपल।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती है आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती है आप? कभी खुद की खुशी का काम करती है आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे दिन में बच्चों का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: हमारा खेत में जाना पड़ता
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन, मतलब माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का, माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद हाटी से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउसवाइफ हैं, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हम चाहे सिलाई उलाई भी करते हैं।
0: क्या बात है, आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
1: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
1: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
0: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
1: खुशी मिलते हैं, हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी?
0: जी। और आपने पसंद
1: दो महीना से छटपटा रहे थे हाँ, जी कब दो महीना पूरा होगा?
0: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: जसमती मैया तेरे बोले नंदलाला।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए, हाँ। अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, खास तालाब है, महाबलेश्वर है।
0: जी जी जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है
0: जी।
1: नटराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती है जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ। मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ। मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया?
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ। 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती है, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी।
0: अच्छा
1: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
0: क्या बात,
1: साड़ी सेंटर में। सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल से है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
0: जी।
1: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं। हाँ, प्यारे प्यारे गीत सुन
1: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
0: क्या
1: उससे
0: बात,
1: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना?
1: जरूरी है, बराबर है
0: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
1: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
0: बहुत प्यारा गीत आपने चुना। ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?

0: तो ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह हैं 4002466 2, यानी 4002466 2। दूसरा नंबर है 2867 0288, 2867 0288। और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ

पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे, आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। फिर तो ठीक है, तिहार से ज्यादा का जरूरी है, सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है, उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है, और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुखबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपी आने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूँ जिसका कैमरा शानदार हो।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही

0: जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका। सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो, हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूँ। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूँ। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूँ, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूँ। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूँ मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। UPI पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूँ। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है। वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां ले

हंसी आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था। नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लगी चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी

सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला? चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकंठ यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकंठ नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकंठ सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी है, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकंठ बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकंठ तब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकंठ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था, तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकंठ की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकंठ को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से

मिली। नीलकंठ का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हाँ कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: चलता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक

0: के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सगी आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 से, और ये है हम सब का हर मन प्यारा आकाशवाणी अयोध्या FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सांध्यकालीन कार्यक्रमों में आपका मीत अमरजीत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है आकाशवाणी अयोध्या FM की आवाज। तो आइए सांध्यकालीन कार्यक्रमों में सबसे पहले सुने युवाओं को संबोधित उनका कार्यक्रम युववाणी, जो आज प्रेजेंट करेंगी शिखा मौर्य और प्रस्तुत करता है जयंत पटेल। बस कुछ ही पलों में ये प्रोग्राम सुनिए।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: कार्यक्रम युगवाणी लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त शिखा मौर्या। और दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ आइए एक नजर डाल लेते हैं कि कार्यक्रम युगवाणी में आज क्या है खास आपके लिए। सबसे पहले चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर। वहीं स्थान सेगमेंट में दोस्तों आज हम सैर करेंगे अंडोरा ला वेला की और सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोताओं से दिशा पांडे की बातचीत। साथ ही गीत संगीत के साथ शब्दावली सेगमेंट में नए शब्दों के माध्यम से अपनी बोलचाल की भाषा को बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए शुरू करते हैं चर्चा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर। मित्रों, बदलते समय के साथ परिवार के मायने भी बदले हैं, लेकिन प्यार और सम्मान के मूल्य आज भी वही हैं। चाहे खुशी हो या गम, परिवार ही वो जगह है जहां हमें सुकून मिलता है। और परिवार का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना ही नहीं दोस्तों, बल्कि फैमिली का मतलब है कि हर सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामे रहना, जो किसी भी इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। मित्रों, परिवार हमारी नींव है जो हमें न केवल प्रेम और सहारा देते हैं, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य, संस्कार व समाज के तौर तरीके भी सिखाते हैं। दोस्तों, फैमिली ही हमें मुश्किल वक्त में सपोर्ट सिस्टम देती है और हमारे साथ खड़ी रहती है। फिर चाहे वह माता पिता का लाड हो, भाई बहन की नोकझोंक हो या दादा दादी की कहानियां, हर पल हमारे लिए अनमोल है। वही बात

करें तो दोस्तों हर वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परिवारों के सामने आने वाली समस्याओं और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में जागरूकता बढ़ाना है। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मई 1993 को इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और वर्ष 1994 में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली पहली बार मनाया गया था। वहीं यह दिन फैमिली के महत्व को पहचानने और उनके सम्मान करने का दिन है, क्योंकि बदलते दौर में जहां हम एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं यह दिन हमें याद दिलाता है कि परिवार के साथ हमारे रिश्ते कितने जरूरी हैं। और मित्रों, परिवार न केवल हमारी ताकत है बल्कि हमारे जीवन में ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार भी है। आज के डिजिटल युग में जहां मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे समय का बड़ा हिस्सा लेते हैं, वहीं परिवार के साथ हमारा जुड़ाव कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बच्चों और वयस्कों का ध्यान अक्सर स्क्रीन पर केंद्रित हो जाता है, जिससे पारिवारिक बातचीत और समय कम हो जाता है। इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज हमें यह बताता है कि हमें परिवार से जुड़ा कितना जरूरी है। दोस्तों, हमारे छोटे छोटे कदम जैसे एक दूसरे के साथ भोजन करना, डिजिटल डिटॉक्स करना और हमारी बातचीत परिवार को मजबूत व खुशहाल बनाने में मदद करती है, जो प्रत्येक पीढ़ी के मूल्यों और आदतों को विकसित करती है। साथ ही सीखने, देखभाल करने और सहयोग के लिए भी पहली नींव परिवार के द्वारा ही हमें मिलती है। वहीं मित्रों, बात करें तो वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम है परिवार असमानताएं और बाल कल्याण, जो इस बात को बढ़ावा देती है कि आर्थिक और सामाजिक असमानताएं बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा व समग्र विकास को कैसे प्रभावित करती है। साथ ही समानता को बढ़ावा देने और मजबूत पारिवारिक सहायता को प्रोत्साहित भी करती है। तो दोस्तों, आइए इस परिवार दिवस पर हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि अपने फैमिली को समय देंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे और इस प्यार के धागे को हमेशा मजबूत रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर, और इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग। फिल्म है क्रिएचर 3D, गायक है मिथुन, लिरिक्स है मिथुन का और संगीत से सवारा है मिथुन ने।

0: मित्रों, अभी आपने सुना ये गीत। इसी के साथ आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और स्थान सेगमेंट में सैर करने चलते हैं अंडोरा ला वेला शहर की। मित्रों, पायरेनीज पहाड़ों की वादियों में स्पेन और फ्रांस के बीच बसा हुआ बेहद खूबसूरत देश जो कि अंडोरा ला वेला है, जो दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में स्थित एक छोटे से देश अंडोरा की राजधानी है और 1023 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह शहर प्राकृतिक सुंदरता व आधुनिकता से परिपूर्ण है और बहुत ही लोकप्रिय है। मित्रों, वहीं बात करें तो अंडोरा ला वेला का अधिकांश भाग विशाल मैदानों से बना है और यह शहर मुख्य रूप से अपने पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अंडोरा के पुराने शहर बरी एंटीक की संकरी गलियों में। यहाँ की पत्थर की इमारतें, छोटे कैफे और शांत माहौल मध्ययुगीन युग का एहसास कराते हैं। वहीं सेंट एस्टेव का चर्च, जो कि 12वीं सदी में बना था, जो गोथिक शैली के भित्ति चित्रों से सजी है, जिसमें ईसा मसीह के अंतिम दिनों को दर्शाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, कासा डे लावाल 1580 में बनी एक ऐतिहासिक इमारत है, जो पहले अंडोरा की संसद थी। साथ ही दोस्तों, इतिहास से अब थोड़ा आधुनिकता की ओर चलते हैं, जहां अंडोरा शहर अपनी शॉपिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, परफ्यूम और कपड़े भी काफी प्रसिद्ध हैं। मित्रों, शॉपिंग के बाद चलिए चलते हैं शहर के बीचों बीच एक शानदार ओपन एयर जगह पर, जहां से आप पूरे शहर और आसपास के ऊंचे पहाड़ों के अद्भुत नजारे देख सकते हैं। मित्रों, अब अंडोरा की यात्रा बिना भोजन के तो अधूरी है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में आपको फ्रांसीसी और स्पेनिश संस्कृति का मिश्रण मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप आए तो एस्कुडेला जरूर ट्राई करें। और हाँ, अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो यहाँ के स्की रिसॉर्ट्स और कैलेडिया स्पा का स्वाद जरूर लें। वहीं दोस्तों, अगर अंडोरा देश की भाषा की बात करें तो यहाँ की आधिकारिक भाषा कैटलन है और इस देश की मुद्रा यूरो है। इसके अलावा अंडोरा में पेरिस विभाजन प्रणाली देश की कैथोलिक जड़ों की याद दिलाती है, जो स्पेनिश संस्कृति के प्रभाव से प्रेरित होकर अंडोरा में 3 दिवसीय उत्सव आयोजित किए जाते हैं। अंडोरा में एक विशिष्ट संगीत और नृत्य सत्र भी होता है, जिसमें स्थानीय और शहर के पारंपरिक नृत्य कांट्रा पास प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, शहर में कैल्डा स्पा और साल्वाडोर डाली घड़ी के लिए मशहूर है। वहीं बैलीरा नदी के किनारे स्थित यह शहर सर्दियों में स्कीइंग और गर्मियों में हाइकिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र भी है। वहीं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अंडोरा एकमात्र महानगर होने के नाते राजधानी देश का आर्थिक केंद्र भी है। साथ ही दोस्तों, यह शहर कर मुक्त होने के कारण पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है। और मित्रों, पहाड़ों के गोद में बसा अंडोरा ला वेला शहर अपने आप में अनूठा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह छोटी सी यात्रा पसंद आई होगी और इसी के साथ अब फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत

0: ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
1: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।

0: दा था।
1: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
0: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
0: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
5: की बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा, शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
6: अंतराल के बाद आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और दोस्तों, आइए आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोताओं से दिशा पांडे की बातचीत को सुनते हैं।
7: तो दोस्तों, एक बार फिर से आज हम स्टूडियो के बाहर आ गए हैं अपने श्रोताओं से मिलने के लिए और उनके विचारों को जानने के लिए, उनके अनुभवों को जानने के लिए कि अभी तक रेडियो को सुनते आ रहे हैं, रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम सुने हैं आकाशवाणी में, तो उनका इन कार्यक्रमों को लेकर क्या अनुभव रहा है। आकाशवाणी अपना 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है, तो इस 90 वर्ष के सफर में हमारे श्रोताओं का अनुभव कैसा रहा है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
8: नीरज पांडे
7: जी। नमस्कार नीरज जी। तो बताइए, रेडियो आप कब से सुनते आ रहे हैं?
8: रेडियो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे बाबा सुनते थे। अगर रेडियो नहीं रहता तो बाबा हमारे सोते नहीं थे रात भर। एक बार रात में हमारे बाबा का रेडियो बिगड़ गया था रात में 9 बजे, और बाबा हमारे पूरी रात ऐसे जगते रहे। सुबह हुई तो पहले वो जाके कौन के रेडियो खरीद कर लाए।
7: क्या बात है। और तो कौन सा प्रोग्राम आप सुनते हैं? ये तो रही बाबा की बात, तो बाबा मतलब रात भर पूरा सोए नहीं थे, आकाशवाणी नहीं सुन पाए रेडियो, तो आपका अनुभव क्या रहा?
8: हाँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा। फैजाबाद का कार्यक्रम 9 बजे से आता था, तो हम लोग गाने भी सुनते थे रेडियो पर, और मैच आता था तो हम लोग बहुत अच्छा सुनते थे, BBC का कार्यक्रम सुनते थे। तमाम चीजें थी रेडियो पर। पहले रेडियो ही एक माध्यम था, उतना ज्यादा TV का कोई प्रचार तो था नहीं। खेत में रहो तब भी रेडियो रखे रहो, मेड़ पे रख दो, पेड़ में टांग दो, बना रहे, तो वो बहुत अच्छा लगता था रेडियो का कार्यक्रम।
7: तो आपके अनुभव वाकई में आपने जो बताया उससे ऐसा लग रहा है कि आपका अनुभव रेडियो के प्रति, आकाशवाणी के प्रति काफी बेहतरीन था। कोई सबसे मजेदार किस्सा बताइए जो बचपन से लेके अभी तक बीता हो रेडियो को लेकर।
8: रेडियो को लेकर, अरे एक शादी में गए थे, दूल्हा रिसिया के बैठा था रेडियो के लिए, रेडियो चाहिए ही चाहिए। फिर रेडियो नहीं मिल पाया तो दूल्हा रोने लगा वहाँ पे रेडियो के लिए, तो वहाँ लड़की वाले के चाचा वाचा जो थे वो रेडियो खरीद कर लाए और दिए। तो रेडियो का बड़ा जमाना था भाई, शादी विवाह में जिसको रेडियो मिल जाता था वो बड़ी बात हो जाती थी।
7: क्या बात है भाई। नीरज जी, बात करके आपसे बड़ा अच्छा लगा कि आप जैसे लोग भी हैं रेडियो सुनते हैं, और आपके बाबा जी का सुन के बड़ा अच्छा लगा कि बताइए आकाशवाणी सुनने को नहीं पाए तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, बात करने के लिए धन्यवाद।
8: धन्यवाद।
7: तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं अभी तक की सबसे नन्ही श्रोता। इनकी हाइट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8-9 साल की, मतलब 10 साल की भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये रेडियो की प्रशंसा मैंने इनके मुख से सुना अभी जब मैं नीरज जी से बात कर रही थी तो उसके थोड़ी देर पहले, कि ये बोल रही थी, उछल रही थी कि मैम मुझसे पूछिए सवाल, मैं रेडियो सुनती हूँ। तो चलिए बताइए, आपका नाम क्या है?
9: शिक्षा।
7: तो शिक्षा जी, ये बताइए आपको रेडियो सुनना कैसा लगता है?
9: बहुत अच्छा।
7: बहुत अच्छा लगता है सच में? आपके घर में रेडियो कौन सुनता है? आप?
9: दादी बाबा ये लोग चलाते हैं।
7: ओहो, दादी बाबा चलाते हैं फोन पे। तो आपने कभी फोन किया कि नहीं आकाशवाणी में?
9: फोन किया लेकिन मेरा फोन कभी लगता ही नहीं।
7: अच्छा, तो निराश नहीं हुई है ना ऐसे? आप फोन करते रहिए, कोशिश करते रहिए, तो फिर आपकी कॉल लग जाएगी ना। तो फोन करेंगी क्या फिर से रेडियो में? हाँ। गाने सुनने के लिए?
9: हाँ।
7: कौन सा गाना सुनेंगी फिर आप? हाँ, सोच के बताइए कौन सा गाना आप सुनने वाली हैं रेडियो पर जब आपकी कॉल लग जाएगी तो।
9: कजरारी कजरारी।
7: कॉल करिएगा रेडियो पर, आई होप कि आपकी कॉल जरूर लगेगी और आप अपनी फरमाइश का गाना फिर सुन पाएंगी। जी, आपका नाम क्या है?
10: आदरी पांडे।
7: आदरी पांडे, आप रेडियो सुनते हो?
10: हाँ।
7: कौन सा प्रोग्राम सुनते हो आप?
10: अच्छा वाला।
7: अच्छा वाला? ओह माय गॉड, कौन चलाता है आपके घर में रेडियो?
10: हम।
7: आप चला लेते हो? फोन में सुनते हो कि रेडियो पे सुनते हो?
10: रेडियो सुनते।
7: रेडियो

0: घर में?
1: हाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, कौन खरीद कर लाया रेडियो?
1: हम।
0: आप ही खरीद के लाए हो? चलिए आदरी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया, थैंक यू।
2: दोस्तों ये थी आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोताओं से दिशा पांडे की बातचीत। और दोस्तों अब बारी है सेगमेंट शब्दावली की, जिसमें हम चलिए जानते हैं अंग्रेजी और हिंदी के कुछ शब्दों को। तो मित्रों हमारा अंग्रेजी का पहला वर्ड है एसेंशियल, ई एस एस ई एन टी आई ए एल, जो कि एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है आवश्यक। इसका एंटोनिम होगा नीडलेस और सिनोनिम है नेसेसरी। एसेंशियल को हम इस तरह सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, ए गुड डाइट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, यानी अच्छी डाइट हर किसी के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों इसी तरह हमारा इंग्लिश का अगला वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड, पी आर ओ एल ओ एन जी ई डी, जो कि एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जारी रखना। इसका एंटोनिम होगा शॉर्टेंड और सिनोनिम है एक्सटेंडेड। मित्रों प्रोलॉन्ग्ड को हम कुछ इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, दे प्रोलॉन्ग्ड देयर विजिट बाय टू डेज, उन्होंने अपनी यात्रा दो दिन और जारी रखी। दोस्तों इसी तरह हमारा तीसरा वर्ड है कंपैरिजन, सी ओ एम पी ए आर आई एस ओ एन, जो नाउन वर्ड है जिसका अर्थ होता है तुलना, वहीं इसका एंटोनिम होगा कॉन्ट्रास्ट और सिनोनिम होगा लाइकनेस। कंपैरिजन को हम वाक्य में प्रयोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन देम, उनके बीच कोई तुलना नहीं है। मित्रों हमारा इंग्लिश का अगला वर्ड है बेनिफिट, वी ई एन ई एफ आई टी, जो कि नाउन है जिसका अर्थ होता है फायदा, इसका एंटोनिम होगा लॉस और सिनोनिम होगा प्रॉफिट। मित्रों हम बेनिफिट को इस तरह सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, इट इज सेड योगा इज फॉर ग्रेट बेनिफिट टू ह्यूमन हेल्थ, ऐसा कहा जाता है कि योग मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों इसी तरह हमारी शब्दावली में हिंदी का अंतिम शब्द है अद्भुत, जो कि विशेषण है जिसका अर्थ होता है आश्चर्यजनक या अनोखा, वहीं अद्भुत का विलोम है नीरस। इसे हम वाक्य में प्रयोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ताजमहल की सुंदरता सचमुच अद्भुत है। तो दोस्तों ये थे हमारे शब्दावली सेगमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, जिन्हें आप अपने डेली बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, फिल्म है द डिप्लोमेट और गाने को प्यारी सी आवाज दी है वरुण जैन, रोमी और अनुराग।

दोस्तों, जैसा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस में शुरुआत में बात की, तो इसलिए इस गाने को मैंने इस प्रोग्राम में सिलेक्ट किया। इसी के साथ दोस्तों, आइए जानते हैं अग्निकांड से बचने के लिए कुछ सावधानियां। दोस्तों, मई की यह चिलचिलाती गर्मी और लू सिर्फ हीट स्ट्रोक ही नहीं है, बल्कि यह अग्निकांडों के लिए खतरा भी बढ़ा देती है। वहीं सूखी घास, गर्म हवाएं और जरा सी लापरवाही पल भर में पूरे वर्ष की मेहनत को राख कर देती है। ऐसे में दोस्तों, हम कुछ आसान सी सावधानियों को अपनाकर अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं दोस्तों, बात करें तो सबसे ज्यादा आग शॉर्ट सर्किट से ही लगती है। ऐसे में एक ही सॉकेट या प्लग में सारे उपकरण ना लगाएं। साथ ही एसी, कूलर और फ्रिज के लिए अलग अलग एमसीबी का उपयोग करें। इसके अलावा मित्रों, पुराने या कटे तारों को बदल दें और बहुत ज्यादा गर्मी होने पर उपकरणों को बंद कर दें। वहीं रसोई घर में खाना पकाते समय चूल्हे को कभी अकेला न छोड़े और घर से निकलते समय या सोते समय गैस सिलेंडर का रेगुलेटर जरूर बंद करें। दोस्तों, ज्वलनशील पदार्थों की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, मोमबत्ती या माचिस जैसी चीजों को सीधी धूप से दूर रखें और जलती हुई सिगरेट को कहीं भी बाहर न फेंकें। साथ ही फसल के अवशेष या सूखी पत्तियों को कचरे में न जलाएं, क्योंकि हवा के माध्यम से आग फैल सकती है। वहीं दम घुटने पर या गीले सूखे से कपड़े, नाक और मुंह ढकें। इसके अलावा दोस्तों, घर में अग्निशामक यंत्र जरूर रखें। वहीं अगर बात करें तो धुएं से बचाव हेतु आग लगने पर रेंग कर बाहर निकले, क्योंकि ज्यादातर धुआं ऊपर की ओर ही जाता है और आग लगने की स्थिति में 101 या 112 पर फायर ब्रिगेड को तुरंत फोन करें। तो दोस्तों, ये था हीट वेव में हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अग्निकांड से बच सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म है सुल्तान, गायक हैं राहत फतेह अली खान, लिरिक्स है इरशाद कामिल का और संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने।

मित्रों, अब घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम से विदा लिया जाए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल के कार्यक्रम में क्या होगा खास। चर्चा होगी सिक्किम दिवस, शांतिपूर्वक एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर। वहीं दोस्तों, हमारी धरोहर सेगमेंट में हम रूबरू होंगे हम्पी के स्मारक समूह से, साथ ही आर्थिक जगत क्षेत्र से जानेंगे अवसर लागत के बारे में। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए गीत संगीत और टॉपिक के साथ, और इसी के साथ अपने दोस्त शिखा मौर्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसे आपने आकाशवाणी के अयोध्या FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर सुना। शाम के 5:30 हुए हैं और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी अयोध्या से लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुने भानु प्रताप और उनके साथियों से बेटी बचाओ पर ये लोकगीत।

माफ कीजिएगा, विजय कुमार सिन्हा गाया हुआ दादरा हम आपको इस लोकगीत के बाद सुनवाएंगे। और इस समय आप सुन रहे हैं वंदना शुक्ला की आवाज में ये कहरवा।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
4: लोक संगीत कार्यक्रम में अब जो लोग गीत आप सुनने जा रहे हैं, उसमें आवाज है हीरालाल यादव की।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: और अब आइए सुने कार्यक्रम के अंत में पूर्वी शंकर यादव और उनके साथियों से। आपको बताते चले कि लोकगीत हम आपको शाम 6:30 से भी सुनवाएंगे। कार्यक्रम का नाम रहेगा गूंजे स्वर गांव के।
3: गवना कराई पिया घर बैठवले, गवना कराई पिया घर बैठवले, अपने नौकरिया पे लागल हो, अरे अपने नौकरिया पे लागल।

0: इन्हीं लोकगीतों के साथ आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या FM है 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। शाम के 6:59 हो रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और दुर्लभ का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा

0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
1: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों की

0: बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालौत वीतदर्सन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome, with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Both the leaders discussed energy cooperation and bilateral trade high amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable.
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और दुर्लभ का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा

जी हाँ, जब हम सब परिवार से दूर जाते हैं तो घर की कितनी याद आती है कि नहीं। एक और ऐसा ही गाना निकाल कर लाए हैं आपके लिए और ऑन एयर करने जा रहे हैं शाम सुहानी प्रोग्राम में। अब ये अगला गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में, तकदीर वाला फिल्म से। और इसके पहले जो आपने गाना सुना था वो था एसपी बाला सुब्रमण्यम, सुरेश वाडकर और शैलेंद्र सिंह और उनके साथियों की आवाज में आपने गाना सुना था घर एक मंदिर फिल्म से।

तो जाने से पहले आपका मीत अमरजीत बस यही कहता है कि मोबाइल से थोड़ा दूर हटें और मोबाइल उस वक्त ही यूज़ करें जब आपका कोई काम हो मोबाइल से, है कि नहीं। स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम ना दें, अपने परिवार में टाइम दें, अपने परिवार के सदस्यों के बीच बैठकर बातें करें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, तभी इस जीवन का आनंद है। जी हाँ, हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। शाम सुहानी प्रोग्राम से आपका मीत अमरजीत लेता है अब इजाजत। अपना और अपनों का, सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

0: बॉलीवुड के फिल्मी गानों के साथ ये था शाम सुहानी प्रोग्राम जो आकाशवाणी अयोध्या से पेश किया गया 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद दिल्ली केंद्र से आपको संस्कृत में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000+ वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26,000+ वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेयी दलस्य विधायकः रथींद्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपांत्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानम् एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्ध विमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमंत्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिम एशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारंभिके भाषणे प्रधानमंत्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानां आक्रमणानां दृढ़तया निंदा कृता।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में

0: अखंडता स्वच्छ और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपतिं शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन संबोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
0: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 26,000 ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतृणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां ईरान देशस्य विदेश मंत्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिक अंतर्जालीय पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावाञ्च चर्चितवन्तौ। द्विपक्षीय विषयेषु परस्पर हित सम्बद्ध विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानम् अपि कृतवन्तौ। ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडले 26,000 वर्षे श्री अराघची वर्यस्य सहभागितायाः अपि तेन प्रशंसा कृता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य क्यूबा देशस्य विदेश मंत्रिणा ब्रूनो रोड्रिग्स पारिल्ला इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। सामाजिक अंतर्जालीय पटले प्रकाशिते संदेशे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् स्वास्थ्यं विकास सहभागित्वं क्षमता निर्माणं इत्यादिषु विषयेषु सहयोग सम्बद्धां चर्चां उभौ नेतारौ अकुरुताम्। उभयोः देशयोः विदेश मन्त्रालयोः मध्ये नियमित परामर्शाय सहमति पत्रस्य आदान प्रदानमपि अभवत्। प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। एनटीए इति अभिकरणेन घोषितं यत् 26,000 नीट यूजी इति चिकित्सा प्रवेश परीक्षा जून मासस्य 21 दिनांके पुनः आयोजयिष्यते। इतः प्राक् अस्य मासस्य तृतीय दिनांके आयोजिता परीक्षा कथितेन पेपर लीक इत्यनेन कारणेन निरस्तीकृता आसीत्। अपि च सीबीआई अस्मिन् विषये अन्वेषणं कुर्वन्नस्ति। एनटीए इति अभिकरणेन अभ्यर्थिनां माता पितरौ केवलं एनटीए इत्यस्य आधिकारिक माध्यमानाम् आश्रयं कर्तुं प्रार्थितम्। अत्रान्तरे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अवदत् यत् छात्राः सर्वकारस्य प्राथमिकताः सन्ति, केन्द्रं तेषां विषये संवेदनशीलमस्ति। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्री प्रधानः परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितवान्।
2: हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है।
3: आर फोरमोस्ट प्रायोरिटी इज द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द गवर्नमेंट रिमेन्स डीपली माइंडफुल ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दे इन्वेस्ट इन देयर स्टडीज। फॉलोइंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन 3rd May वी वर डिटरमाइंड टू इंश्योर दैट नो जेन्युइन कैंडिडेट वॉज डिप्राइव्ड ऑफ अ फेयर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द एजुकेशन माफिया।
2: एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए।
1: शिक्षा मंत्रिणा स्वीकृतं यत् एनटीए संस्थायां निश्चित परिष्काराणाम् आवश्यकता अस्ति तथा च भविष्ये अनियमिततां निवारयितुं परीक्षा व्यवस्थां सुदृढं कर्तुं उपायान् वयं करिष्यामः। सः अग्रे अवदत् यत् नीट यूजी परीक्षा

0: परीक्षा विद्यमानस्य ओएमआर आधारितस्य पत्रस्य प्रकारस्य स्थाने आगामी वर्षात संगणक आधारित परीक्षायाः सीबीटी प्रकारेण संचालिता भविष्यति।
1: सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी।
2: द सीबीआई हैज टेकन प्रॉम्प्ट एक्शन इन द मैटर। ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स द रूट इशू विल बी एड्रेस्ड बाय कंडक्टिंग द नीट एग्जामिनेशन इन अ कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ द करंट ओएमआर बेस्ड सिस्टम।
1: अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।
0: भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसु इत्येषः पश्चिम बंगाल राज्यस्य विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्विरोधरूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातः प्रोटेम स्पीकर तपस रॉयस्य निरीक्षणे अस्य पदस्य निर्वाचनम् अभवत्। वसुवर्येण सद्यः एव आयोजिते विधानसभा निर्वाचने कूच बिहार दक्षिणतः भाजपेति दलस्य प्रत्याशिरूपेण प्रथमं विजयं पञ्जीकृतम्। मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा अधिकृतरूपेण श्रीवसुवर्यस्य नाम प्रस्तावितम्। सभया ध्वनिमतेन नियुक्तिं तस्य दृढीकृतम्। उपराष्ट्रपतेः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारं ग्रहणानन्तरं श्वः प्रथमवारं सिक्किमराज्यं प्रति गमिष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतेः गंगटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यदिवसोत्सवे भागं भजिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरंभः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरस्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट् स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
3: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी अयोध्या एफएम से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं सांध्यकालीन कार्यक्रम एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आइए शुरू करते हैं लोकगीतों का एक और कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
3: लोकगीतों का कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुनते हैं दिन में 12:30 से प्रतिदिन, जिसमें सोमवार को फरमाइशी प्रोग्राम होता है और बुधवार को भी लोकगीतों का फरमाइशी प्रोग्राम आप अंगना कार्यक्रम में दिन में 2:30 सुनते हैं। शाम को 5:30 दैनिक लोकगीतों का कार्यक्रम होता है आधे घंटे का और 15 मिनट का कार्यक्रम होता है शाम 6:30 से, जिस समय ये प्रोग्राम हो रहा है। जी हाँ, गूंजे स्वर गांव के। और लोकगीत आप किसानवाणी कार्यक्रम और कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। फिलहाल आइए सुने ओम प्रकाश सिंह का गाया हुआ ये दादरा।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: और अब लोकगीत में बन्ना सुनिए, गायिका है रीना।

रीना टंडन से अभी आपने ये बन्ना लोगी सुना, और अब अंजनी कुमार और साथियों से आइए सुने कार्यक्रम के अंत में ये लोकगीत जो एक कहरवा है।

इन्हीं लोकगीतों के साथ आज का गूंजे स्वरगांव के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। समय मिलाइए शाम के 6:44 और 45 सेकंड हो रहे हैं। बस कुछ ही देर के बाद ठीक 6:45 से आप सुनेंगे खेती किसानी का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आए आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: पंचो जय हिंद। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान पंचन का पूजा के प्यार भरा नमस्कार। पंचो, ये धरती पर अगर कहूँ स्वर्ग है तो जान लो अपन परिवार है। परिवार के साथ बितावा गए जोन एक एक पल है उस सबसे अनमोल पल होत है। पंचो, परिवार हमरे मार्गदर्शक किनाए होत है। वो हमें ऊंचाई तक पहुंचे के प्रेरणा देते हैं और मुश्किल समय में हमार सबन के सहारा भी बनत है। पंचो, देखा जाए, आप सभी सोचत हो का वो अचानक परिवार के बारे में बताए रही हैं, तो पंचो हर साल 15 मई यानी कि आजू के दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनावा जाता है। पंचो, परिवार दिवस का मनावे के घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र सभा की ओर से सन 1993 में भय रही। पंचो, परिवार दिवस मनावे के जो उद्देश्य है वो ये है कि परिवारन से जुड़े मुद्दन के प्रति लोगन का जागरूक की जाए और समाज अर्थव्यवस्था और जनसंख्या से जुड़ा वही बदलाव का समझा जाए जाना जाए जो उनकी परिवारन के जीवन का प्रभावित करत है। पंचो, कोनो भी समाज के महत्वपूर्ण इकाई परिवार ही माना जाता है। मने के जीवन में परिवार समाज के सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी इकाई है। परिवार सिर्फ एक साथ रहे के एक जगह ना है, बल्कि मने के भावनात्मक शक्ति ओकर पहचान और नैतिक मूल्यन के पाठशाला है। नैतिक मूल्य और संस्कार बच्चन का परिवार से ही मिलत है। बच्चा जोन कुछ

0: भी सीखा था ना वो परिवार से ही सीखा था। देखा जाए तो एक शुरुआत ओके परिवार से ही होते है। अच्छा बच्चा रहा था तो ओका बाहर के लोग गुणगान करा थी कि अरे भैया फलाने के घर के ही लड़का है। भाई संस्कार तो एक खून में बांटे, कहे कि अच्छे परिवार के लोग अपने बच्चन में अच्छे अच्छे संस्कार का डाला थे, जैसे बड़ों का सम्मान करना, सबसे प्रेम और सहयोग के साथ रहना, सहानुभूति जैसे गुण के जो विकास होते ही परिवार के ही माहौल में होते है। और परिवार से मन का पहचान मिला थे, ओके आत्मविश्वास बनत है, निस्वार्थ प्रेम और देखभाल की अगर बात की जाए तो वह परिवार में मिला था। बाहर के मन तो स्वार्थी होते, देखा जाए बाहर की दुनिया स्वार्थ पे आधारित होते, वो आपसे तबे मतलब रखे जब आपसे कुछ काम हुए। एक परिवार ही ऐसा जगह है जहाँ पे एक दूसरे के सदस्य के जो प्रति प्रेम रहा थे वो निस्वार्थ रहा थे, वो हमारे गलती पे टोका थे सुधारा थे और जो ने हमें बेहतर इंसान बनाने में हमारी मदद करा थे। कभी कभी कहा होता है ना कि माई बाप या बड़े बुजुर्ग जो दादा दादी के टोक जो है बच्चन का बहुत बुरी लग जाते। आजकल के जो समय चलत बना बच्चे क्यों सुने ना चाहते हैं, तो देखा जाए तो अगर क्यों रोक टोक करे वाला रहा थे तबे तो मैं गलती के प्रति ओके सुधार के गुंजाइश रहा थे। अगर क्यों टोकत ना है बाहर की दुनिया में कहे क्यों तू है टोके, तू नीक करा बेकार करा जोन करा आपन बनेबा बिगड़बा। तो ये तरह से देखा जाए तो बच्चन के पालन पोषण उनके संस्कार सामाजिक विकास के पहली नींव है परिवार। बच्चन के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक विकास में परिवार के सबसे अहम भूमिका होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से जौने परिवारन का पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक सहायता ना मिलत उनके गिधारन का गरीबी में रहाय की संभावना ज्यादा रहत है। एक असर उनके शिक्षा और स्वास्थ्य पे पड़ सकत है। पंचो कोनो भी परिवार की बुनियादी जरूरत होते भोजन कपड़ा आवास उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य मतलब चिकित्सा के देखभाल। पंचो परिवार हमरे सबन के जीवन के आधार और सबसे बड़ा सहारा है जो उनकी प्यार सुरक्षा और नीक नीक संस्कार देते। और एक सुखी परिवार में सभी सदस्य हिल मिल के रहते हैं, एक दूसरे से सुख दुख बांट के रहते हैं। कोनो भी देखा जाए टुंड पुंड आपस में हो ही जाते हैं। जहाँ कहा था ना कि जहाँ चार बर्तन रहते वहाँ आवाज तो होबे करा थे लेकिन वे वक्त पर सब एक साथ खड़ा रहा थे। तो यही तरह से हम सबन के आपस में हिल मिल के रहे के है और हम सभी कह सके थे कि परिवार स्नेह सुरक्षा और अपनत्व के भावना के सबसे बढ़िया स्थान होते हैं। अपने परिवार के महत्व का जाने समझे और हमेशा एक हो के रहे के चाहिए। तो पंचो देखा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस रहा है और परिवार दिवस के उद्देश्य जोन रहा है परिवार के महत्व का जाना जाए और संयुक्त परिवार का बढ़ावा दिन जाए। हम तो यही कहा कि देखा जब से एकल परिवार हो गए मने ज्यादा परेशान होत बाटे, कहे कि वो सोचत है ना कि बड़े परिवार में अगर हम सभी रहे तो हमें ज्यादा काम बोत करे पर, लेकिन ये सोच गलत है। जब ज्यादा लोग आपस में मिलके काम करिए तो एक हो के रही है तो तरक्की करी है, निश्चित रूप से विकास के राह पे आगे बढ़ी है। ऐसन बहुत लोगन के उदाहरण देखे का मिलत है। तो पंचो देखे अब जो है खेती पाती से हम सभी जुड़ा है और खेती पाती से संबंधित देखे नीक नीक जानकारी और जो है उपयोगी जानकारी हम लेके आवा करी थे। ऐसे ही समय समय पे अपने पंचायती में हम कृषक भैया लोगन का बुलावा करी थे, उनके अनुभव भी ले थे। ऐसे ही देखे अपने पंचायती में एक बार आवा रही ने एक प्रगतिशील किसान केदारनाथ मौर्या भैया, ये लौकी परवल और धान की रोपाई के आपन अनुभव हमारे सबन का बताए रही है। और ये ग्राम भरतोपुर मुबारकगंज अयोध्या से हमारे स्टूडियो में आवा रही ने इनसे बातचीत की ने प्रभाकर शुक्ल भैया, तो लीन जाए जानकारी।
1: जो आज अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हैं प्रगतिशील किसान केदारनाथ मौर्य भैया, आपके घर है भरतूपुर पूरे गुलजार पोस्ट मुबारकगंज जनपद अयोध्या। केदारनाथ मौर्य भैया, सुना है आप बढ़िया खेती किसानी करत हैं और सबसे पहले तो हम आपके आकाशवाणी के अपने स्टूडियो में स्वागत करत है।
2: धन्यवाद आपको।
1: और जैसे की खेती किसानी की बात है तो हमारे तमाम किसान पंच भैया जोन है वे यही काम में लगा है और खूब मेहनत करत है और कई किसान तो बढ़िया ऐसे आमदनी भी कमाते हैं
2: जी।
1: और वैसन किसान में आप भी एक किसान हो
2: जी।
1: अब ये बताओ भैया कि यही साहित खेती किसानी के काम में कौन कौन फसल ऐसा है कि जोन अपने खेते में लगाए हो?
2: इस समय हम परवल लगाए हैं, लौकी लगा रहे हैं, चारा बो रहे हैं, तमाम खेतियां हैं। और तो किसान हमारे यहाँ तरबूज बोए हैं, खरबूजा बोए हैं, खीरा बोए

0: भिंडी बोए हैं, गन्ना और भिंडी सा फसली किए हैं।
1: अच्छा।
0: तमाम फसलें किसान कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। मूल भैया अगर आपके बात करी तो आप कहते हैं परवल।
0: जी हाँ।
1: तो जो उन परवल की खेती है ये के शुरुआत कब की गवा है, बुआई वगैरह कब की?
0: ये के सितंबर में पौधा लगाया गया। तो हमारे पास खेत खाली नहीं था तो हमने प्लास्टिक के थैले में बना के रखे।
1: अच्छा।
0: और फरवरी में हमने उसको खेत में रोपाई कर दी जब खेत हमारा खाली हुआ।
1: जी।
0: और अब हमारा पौधा हमने उसमें बांस गाड़े और डोरी लगाए, बांधे, सब तैयार किए, अब चढ़ भी गया है, अब फल देना शुरू हो गया है।
1: अच्छा।
0: परवल कैसी फसल है कि एक बार आप बो दीजिए तो 8-9 महीना तक चलता रहता है।
1: अच्छा।
0: ये हमारा परवल नवंबर तक फलेगा।
1: जी जी।
0: और एक बार आप लगा दीजिए, जब परवल खत्म हो जाए नवंबर में तो आप इसको काट दिए।
1: अच्छा।
0: और ना भी काटे तो बीच में जो जगह खाली है उसमें पात को भी लगा दें, धनिया बोए दें, पालक बोए दें, कोई भी सब्जी ठंडी में आप ले लीजिए, आपका चलेगा। जब उधर फिर फरवरी आएगा तो फिर कल्ला लेकर के शुरू हो जाएगा। अगर इसमें एक मूल गांठ की बीमारी लगती है
1: जी,
0: वो बीमारी अगर ना लगे तो मान लीजिए कि 9-10 साल तक ये कई बार परवल लगा दीजिए चलता रहता है।
1: अच्छा।
0: और इस मूल गांठ के लिए दवा तो दी जाती है फ्यूराडान, लेकिन फ्यूराडान ना दे करके अगर उसी खेत में 10-20 पेड़, 50 पेड़ गेंदा का लगा दो।
1: अच्छा।
0: तो जो उसके कीट होते हैं वो इस पर आक्रमण हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: हमको कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। इसमें भी अगर उस पर फल पर कोई कीट आता है तो ये कीट आता है वो मक्खी की तरह होता है।
1: अच्छा।
0: पीला पीला
1: जी।
0: उसके लिए आप चाहे जितनी दवा डालो, आज डाल दिए, 2-3 दिन 4 दिन वो फल पर जब तक रहेगा तब तक नहीं, लेकिन जब आपने फल तोड़ दिया दूसरा शुरू हुआ फिर वो छेदना शुरू करेगी।
1: अच्छा।
0: तो जहाँ वो छेद देगा वो फल हमारा सूख जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए सबसे बढ़िया दवा है फेरोमोन टैप।
1: अच्छा।
0: फेरोमोन टैप आप लगा दीजिए, कीट वो मादे की गंध में आता है।
1: अच्छा।
0: हम अपने खेत में लगाए हैं
1: जी,
0: और वो कीट वही अपने मादा को ढूंढते हुए पहुंचेगा और उसको सूंघेगा, बेहोश होगा, बेहोश होकर नीचे उसमें प्लास्टिक थैला बंधा है।
1: अच्छा।
0: उसी में वो लुढ़क जाएगा
1: जी।
0: जब नर ही नहीं रह जाएगा तो प्रचलन नहीं होगा।
1: बिल्कुल।
0: जब प्रचलन नहीं होगा तो हमारी फसल तो सुरक्षित बची है। तो ये जहाँ तक उनके आ रहेगी, मतलब मान लीजिए कि 100-200 मीटर की दूर तक।
1: अच्छा।
0: वो कीट आकर उसमें आक्रमण होते रहेंगे।
1: अच्छा। जिससे एक बीघा के खेत हुए थे, हमें कितना टेप लगाओ जरूरत पड़त है?
0: ज्यादा से ज्यादा 4-5।
1: अच्छा। का ये टेप बहुत महंग पड़त है भैया?
0: 80 रुपए में एक आता है।
1: अच्छा।
0: लगा दिए है, अब 15-16 दिन तक वो काम करता रहेगा।
1: अच्छा।
0: 15-16 दिन के बाद डिब्बा वही रहेगा, दवा आप बदल दीजिए।
1: अच्छा।
0: वही दवा बदल दीजिए, फिर आना शुरू हो जाएंगे
1: जी।
0: आपको कीटनाशक डालने की मशीन टांगो, ये करो, तो है तमाम व्यवस्था बनाओ, कोई जरूरत नहीं।
1: बिल्कुल। जो दवा है हम तना पे डाली थी, फल पे डाली थी, तो बहुत से नुकसान रहा थे, खास करके अपने सबके खाए में।
0: कीटनाशक ना डाल करके तमाम ऐसे IPM हैं, है ना, जैसे आप टाइकोकार्ड लगा दो।
1: अच्छा।
0: टाइकोकार्ड आप लगा देंगे तो कीट वो रहता तो है अंडा, और फ्यूराडान की दवा की तरह गोंद लगा के कागज में मिलता है, लखनऊ अलीगंज में है इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे।
1: अच्छा।
0: आप मंगा लीजिए तो 30-35 रुपए में कार्ड आता है। ये अपने खेत में 3-4 कार्ड लगा दो।
1: अच्छा।
0: अब वो अगर कीटनाशक नहीं डालेंगे तो महीनों चलता रहेगा।
1: जी जी।
0: अब आप चाहे गोंद से चिपका दो, चाहे धागे से बांध दो, या पिन से टांग दो, वो 24 घंटे के बाद अंडा फूट जाएगा और कीट में बदल जाएगा
1: जी।
0: कीट के लार्वा को ही खाते रहेंगे तो बच्चे कहाँ बनेंगे। दवाइयां तमाम है।
1: अच्छा।
0: लेकिन किसान या वो विश्वास नहीं करता या वो
1: जानकारी नहीं
0: चाह रहा या जानकारी नहीं।
1: बिल्कुल,
0: है ना। किसान को वहाँ जाना चाहिए।
1: जी जी।
0: वो इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे इसके लैब है, चला जाए, लेके चला आवे।
1: तो यह तरह से मौर्य भैया आप परवल के जो उन्होंने पौधा है वो लगा चुका है और अब वहाँ थोड़ा थोड़ा के फल आओ
0: शुरू हो गया।
1: शुरू हो गया।
0: जी हाँ।
1: तो ये तो रही बात परवल के। अब अगर बात करी सब्जियन में, तमाम जो गर्मी वाली सब्जी है हमारे किसान पंचे अपने खेते में लगावत है, खास करके लता वर्गीय सब्जी जोन है,
0: तो उनके लौकी लगा रहे हैं।
1: तो आप लौकी के जोन फसल है वो लगावत है, तो बुआई एक एक कर चुका है भैया?
0: बुआई कर चुके हैं और अब पौधा जम चुका है
1: जी।
0: अब वो हमने बांस बिगाड़ दिया है
1: जी जी।
0: अब उसी में हम तार बांधेंगे और उस पर डोरी भी बांधेंगे
1: जी,
0: तो उसी पर पौधा हम चढ़ा

0: जाएंगे
1: हाँ,
0: तो जब पौधा चढ़ जाएगा तो फल आना शुरू होगा।
1: अच्छा,
0: तो जब फल आना शुरू होगा तभी तो, लेकिन लगा रहना पड़ेगा। जो घास फूस होती है लोग उसमें दवा डाल देते हैं, लेकिन हम दवा नहीं डालते।
1: अच्छा,
0: यही हाथे वाला ट्रैक्टर जो आया है
1: हाँ?
0: उसी ट्रैक्टर से जुताई करा देते हैं, पौधे पौधे के किनारे खुरपी से घास फूस निकाल लेते
1: अच्छा।
0: हैं। चूंकि दवा जो डाली जाती है उसकी गैस यही नहीं मट्टी तक असर करती है।
1: बिल्कुल, मतलब कम से कम दवाई के उपयोग के जितने हम चाहे फल है चाहे सब्जी है के उत्पादन करी थी, उमा गुणवत्ता उतनी अच्छी रहे, हमारी माटी भी अच्छी रहे, आपके कहे के भाव यही है।
0: दूसरी चीज मतलब सरकारी खाद पर भी कम वो रखना चाहिए। आप बर्मी कंपोस्ट बना ले, नेटअप गड्ढा से भी खाद बना ले, कूड़ा कचरा की खाद बना ले। हम लोग उसको कूड़ा कचरा उठा के अलग फेंक आते हैं
1: जी,
0: लेकिन इकट्ठा करके एक नेटअप गड्ढा बना लो और उसी में पानी के फुहारा हफ्ता भरे में एक बार मार दो, मट्टी से कुछ ढक दो, वो सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा। हम उसी को क्यों ना डालें?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं जो लौकी करेला और परवल लगाते हैं
1: हाँ?
0: हम बर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो हमें नत्रजन डालने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: अच्छा,
0: अगर बहुत जरूरी पड़ी तो एनपीके डाल दिए, डीएपी पोटाश डाल दिए, क्या जरूरत है हम नत्रजन हेरने के ढूंढने की।
1: बिल्कुल, कम से कम उर्वरक या दवा के उपयोग करके खेती की जाए तो हम समझे थे कि ये काफी अच्छा रहे। और आज के समय में जो आपके कृषि वैज्ञानिक भैया हैं उनके भी यही सलाह है कि कम से कम इनके उपयोग किए जाए ताकि हमारा जो भी उत्पादन है वो सुरक्षित रहे, हमारे खेत के माटी सुरक्षित रहे, माटी के उर्वरता बनी रही जाए। नहीं तो कई बार इस रसायन के प्रयोग करे से ये देखे के मिलते बाय कि माटी भी अपन जो शक्ति है वो खोए रही है
0: जी, कि अपने खेती में जितना कम से कम कीटनाशक कम से कम उर्वरक डाली जाए कितने उपभोक्ता खाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: अब कब के बीमार हो जाए कोई ठिकाना है
1: जी। जी, अब बात करिए आगे भैया मौर्य जी, मौसम आवता है खरीफ के
0: जी,
1: इधर गर्मी जैसे खत्म हुए उधर धान के रोपाई के लिए भी हमारे किसान पंचे अपने काम में लग जाए हैं
0: जी।
1: तो धाने के रोपाई करे से पहले तमाम जो तैयारी है वो हमारे किसान पंचन का पूरी करे।
0: सबसे पहले बीज,
1: अच्छा
0: बीज को आप जितना अच्छा बीज लेंगे वही सबसे सुंदर है। अगर बीज ही आपका गड़बड़ हो गया तो पैदावार कहाँ होगी, है ना। सबसे पहले आप विश्वसनीय बीज लें, उसके बाद नर्सरी डालें
1: जी,
0: और नर्सरी चाहे जब डालें तो शोध करके डालें।
1: अच्छा, पहले थोड़े अलग डाल लिए,
0: मतलब
1: देख लिए होगा, परख लिए।
0: नहीं नहीं, वो तो डाल ही ले, लेकिन बीज को जब आप शोध करेंगे तो जो बीज जनित बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाएंगी।
1: मतलब बीज शोधन कर लिए
0: जी हाँ।
1: लेकिन जोन भैया मौर्य जी प्रमाणित बीज आवत है का वह बीवा का शोधित कर जरूरी है, वो तो शोधित रहते हुए
0: शोधित करके आता है। लेकिन अगर मान लीजिए आदमी गांव से ले लिया या कहीं से ले लिया,
1: मतलब अपने घर के बीवा उपयोग करें तो वह का बीज शोधन करें,
0: बीज शोधन करें।
1: अगर बीज शोधित बिया है
0: तो कोई जरूरत नहीं,
1: जरूरत नहीं। तो अब जिसे खेत की तैयारी के विषय में आपसे बात करी, धान के रोपाई करे का है आगे, तो अभी से का तैयारी करे को,
0: अभी से नर्सरी की तैयारी करे, बीज खरीदे, खेते में दो तीन चार दिन से पानी पहले भर दें ताकि खेत नम हो जाए। नहीं तो जब नर्सरी डली है तो ऊपर से उसका फुनगी सूखना शुरू हो जाती है।
1: अच्छा,
0: वो गर्म रहता है ना
1: जी,
0: तो जब वो जैसे बरसीम के खेत है या मक्का उक्का के चरी वरी के खेत है, नहीं तो एक आध हफ्ता से उसमें खेता में आप पानी। अच्छा, और नर्सरी डाले तो कुछ दूरी दूरी पर डाले, ये नहीं बहुत घनी डाल दो। जब घनी डाल दोगे कहा वो थोड़े इन खेतवा में तो हो
1: जी,
0: तो बहुत पतला पौधा रहेगा। जब पतला पौधा रहेगा तो खेतवा में जब लगे वो देर में उकल्ला ले, देर में ब्यासे, है ना। जब दूरी दूरी रहे, एक एक इंच आधे इंच का कुछ जगह रहेगा,
1: बिल्कुल,
0: तब वो अच्छा पौधा रहेगा
1: जी।
0: और उसके बाद जब रोपाई की समय आती है, हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा पानी भर देते हैं।
1: अच्छा,
0: जब पानी ज्यादा भर दें तो हम अपना तो लगाते नहीं, मजदूर लगाते हैं। तो नियम तो ये है कि एक वर्ग मीटर में 50 पौधा कम से कम लगाया जाए।
1: अच्छा, मतलब मानक के अनुसार हमें दूरी भी रखे का है और दूरी के साथ ही साथ पौधा के संख्या जोन बाय वो पर ध्यान दिए गए,
0: ध्यान दिए के पानी ज्यादा न रखे। अगर खेत में ज्यादा पानी रखे हो, हवा चला तो कहीं गुल्ला आएगा, जब पौधा नीचे से निकल
1: आएगा
0: कहीं उखड़ेगा तो कहीं गुल्ला आएगा, ऐसा नहीं। खेत में कीचड़ रहना चाहिए
1: जी,
0: कीचड़ में लगाऊं और वैसे लगाऊं कि ज्यादा गहराई में न गाड़े।
1: अच्छा,
0: अगर ज्यादा गहराई में गाड़ दियो तो बाद में कल्ला निकसत निकसत निकसत निकसत कम कल्ले निकल पाते हैं।
1: अच्छा,
0: और जो ऊपर लगाएंगे ऊपरे रहे तो ज्यादा कल्ले आएंगे। तो

0: ये देखा गया है कि जैसे यशायार एक पद्धति है, उसमें एक हफ्ता 10 दिन का पौधा लगाया जाता है।
1: अच्छा,
0: तो कीचड़ रहता है उसमें, वही बीज उठा उठा के धरत चले गए
1: जी,
0: तो उसकी पैदावार हमारी 1.25 गुना 1.5 गुना हो जाती है।
1: अच्छा। चूंकि
0: उसमें कल्ले ज्यादा आ जाते हैं, ऊपर रहा थे कल्ले ज्यादा आएंगे तो उसकी पैदावार ज्यादा होगी। आदमी छिटकवा पहले बोत रहा,
1: बिल्कुल
0: कितना बढ़िया पैदा होत रहा, लेकिन अब ध्यान दिए चाहिए कि पौधे की संख्या भी बढ़िया रहे और रोपाई का टाइम उस समय से बढ़िया रहे, तब तो ठीक है। और
1: नहीं खेती तो की तैयारी में भैया मोरिया जी, आप जैसे जो खेत में धान लगावे का है तो पहले से खेत कैसे तैयार करते हो आप?
0: हम तो पहले सूखे जोताए दिए थे।
1: अच्छा, यारी गर्मी में जोताए हैं।
0: हाँ, घास फूस सब खत्म होगा, उसके बाद पानी भर के और लेव लगा दिए, लेव लगा दिए, 2-3 दिन तक अपन मौका मिला तो पाटा लगा दिए, और नहीं तो इसे पानी भरा कर अब 3-4 दिन बाद फिर लेव लगा दिए, तब तक कुछ घास फूस उसमें वो फूट जाते हैं
1: फिर उनका सड़ा देंगे।
0: फिर जब हम उसपे लेव लगाएंगे हफ्ता भर के बाद, तब हम नर्सरी लगाएंगे।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है केदारनाथ मौर्य भैया, यह तरह से आप प्रगतिशील किसान हो और अच्छी खेती आप करते हैं, और जो नई नई विधियां है अपने हिसाब से मतलब आप प्रयोग करता हो, और वो नतीजा है कि आपकी खेती भी अच्छी होती है, अपने आसपास के किसान पंचन का भी आप प्रेरित करते हैं, अच्छी बात। केदारनाथ मौर्य जी, आप हमारे आकाशवाणी अयोध्या की स्टूडियो में आयें, आशा करी थी कि मेरे किसान पंचे आपकी बताई गई बात का, आपके अनुभव का अपनी खेती किसानी में वे अपनी है। निश्चित तौर पर जिसे आप लाभ कमाता हो इससे उन्हों का फायदा हुए, जानकारी दिए के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंचो देखे अब इनके बातचीत सुनी गए एक प्रगतिशील किसान केदारनाथ मौर्य भैया से, जिनकी लौकी परवल और धान की रोपाई के बारे में बताइन, और प्रभाकर शुक्ला भैया इनसे बातचीत कीन। तो देखे खेती पाती हम सब ही करत है, पूरा जानकारी के साथ ही अगर हम खेती करवे तो निश्चित रूप से जैसे केदारनाथ मौर्य भैया फायदा कमाते हैं सब्जियन से और फसलन से, वैसे हम सब फायदा कमाई। और देखा जाए तो आजकल जो नए नए बढ़िया प्रगतिशील किसान हैं, वह देखा कितना पढ़ा लिखा और पर्याप्त जानकारी के साथ ही काम करते हैं, तो रासायनिक और जो विधि से अपने रोग और कीटन के नियंत्रण कराते हैं, उसकी जगह पे जैविक तरीका अगर अपनावा जाए कि कीट किलोना भगावे के ताई, रोग व्याधि हटावे के ताई या माटी के उपचार के ताई, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहा है। और देखा जाए तो उससे जो उपज हमार मिला था वो बढ़िया गुणवत्ता वाली रहा था। तो ये इस तरह से छोटा छोटा बदलाव लाई के हम सभी काम करी जाए, जैसे कि अगर बिया के प्रयोग करत ही तो प्रमाणित बिया लीन जाए, अच्छी किस्म के बिया, और ओकरे साथ साथ उका उपचारित के लीन जाए, समय पे बुआई के ध्यान रखा जाए, और बुआई में जो मतलब अपने माटी के पहले अच्छे से तैयारी कर लीन जाए, खेत के तैयारी कर लीन जाए समय पे बुआई कह के, और जो आवश्यक गतिविधि है सब जब कीन जाए ना, तो भैया कोनो शक ना है कि हम अपने खेते से अपने उपज से बढ़िया लाभ कमावे। तो देखें लाभ के बात होते है तो मन में खुशी आ जाता है, वैसे भी अपने पंचायती में लोग गीत जो है ये अपने सबके भीतर एक तरोताजगी लेके आवत है, तो लोकगीत भी हम लेके आए शंकर यादव इनके साथ ही इनकी आवाज में सुना जाए, सिंगार गीत है।

0: दवाई अझुलनिया के तर लेता
1: छहाई। पंचो उम्मीद करी थे ये गोनी आप लोगन के जरूर निक लाग रहा होए, लेकिन देखें ये अयोध्या मंडी के आज के बाजार भाव मिला बाटे। एक पहले आप लोगन के बतावत चली, चाउर कामन है एक भाव रहा 3,090 रुपया प्रति कुंतल, गेहूं दड़ा 2,585 रुपया, मक्का पियरकी रही है 2,370 रुपया, उड़द दाल उड़द काली वाली रही 9,100 रुपये प्रति कुंटल, और देसिया चना रहा 6,400 रुपये, मसूरी के भाव रहा है 7,000 रुपये प्रति कुंटल, अरहरिक दाल रही है 10,900 रुपया, आलू सफ़ेद वाली एक भाव रहा 725 रुपये प्रति कुंटल, प्याज लाल वाली रही 1,230 रुपया, टमाटर के भाव रहा 1,970 रुपया, लहसुन के भाव रहा 6,900 रुपये प्रति कुंटल, तरोई 2,180 रुपया, खीरा के भाव रहा 1,390 रुपया, बैंगन 2,270 रुपया, और हरी मिर्च एक भाव रहा 3,210 रुपया, कद्दू के भाव रहा 1,360 रुपया, अदरक 5,500 रुपये प्रति कुंटल, शिमला मिर्च रही 2,700 रुपया, भिंडी के भाव रहा 1,890 रुपया, लौकी 1,580 रुपया, करेला रहा 1,410 रुपया, पका वाला केला रहा 2,600 रुपये प्रति कुंटल, नींबुआ 9,600 रुपया, पपीता के भाव रहा 2,620 रुपया, और सेब के भाव रहा 11,150 रुपये प्रति कुंटल, अनार 8,320 रुपया, गुड़ बट्टी रही 5,000 रुपये प्रति कुंटल, और चीनी के भाव रहा 4,120 रुपया प्रति कुंटल। और यही के साथ ही देखें मौसम के हाल मिलावटे। कृषि मौसम विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड

रहा जोन की सामान्य से 2.8 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आर्द्रता अधिकतम 84% रही हवा और न्यूनतम 52% रही है। हवा की गति 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिणी पूर्वी बिहार बही है। आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक यानी हल्का बादल छाए रहा है और कहूँ कहूँ धूल भरी आंधी आवे के भी संभावना है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब यही के साथ ही आपका बताए दी काल के कार्यक्रम, काल किसानवाड़ी के कार्यक्रम हुए और किसानवाड़ी में चर्चा की जाए मक्का की खेती के बारे में और दूसरी भेंट वार्ता जो सुनाई जाए जायद में सब्जी उत्पादन डॉक्टर लोकेश यादव भैया से जानकारी ली है। काल 6:45 से 7:15 के बीच

जानकारी ली है काल 6:45 से 7:15 के बीच में। और देखें घड़ी के इशारा है कि कार्यक्रम के समय होदबा समाप्त। आगे यही कार्यक्रम में फिर कई हुए भेंट, तब तक ले पूजा का देवा गया। पंचो जय हिंद।

खेती किसानी का कार्यक्रम कृषि जगत आकाशवाणी के अयोध्या FM से आपने सुना। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम रूपरेखा में पहले सुन लीजिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। विविध भारती के राष्ट्रीय कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 से। हमारे स्टूडियो से गीत गुंजन, बॉलीवुड फिल्मी गानों का ये प्रोग्राम सुनिएगा 8:15 से। रात 9:15 से महफिल गजल प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:30 से लाइव फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम हेलो अयोध्या आप सुनेंगे 10:30 तक। और अब कल शनिवार 16 मई के कार्यक्रमों के बारे में सुन लीजिए। कल प्रातः 7:15 से कार्यक्रम रूपरेखा में दिन भर प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी लीजिएगा। 7:30 से भक्ति संगीत का अमृत कलश कार्यक्रम होगा। 8:15 से गैर फिल्मी रचनाओं का सुरसंगम प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम। आज की बात का टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। इसके बाद राजकुमार दाग की लिखी झलकी सुनिएगा दिल की भड़ास, प्रस्तुति कमल दत्त की होगी। और समाचार पत्रों से सेगमेंट में अयोध्या मंडल की लोकल खबरें आपको दी जाएंगी और फिल्मी गाना सुनवाया जाएगा। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम सुबह 9:00 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से आपको हम सुनवाएंगे दिन में सुबह 10:00 से लेकर 12:30 तक। अयोध्या FM से दिन 12:30 से लोकगीतों का लोक रंग कार्यक्रम होगा। 1:00 हेलो अयोध्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा। कुछ तुमने कहा प्रोग्राम में फेसबुक श्रोताओं के कमेंट्स पर फरमाइशी फिल्म संगीत प्रोग्राम पेश किया जाएगा। श्रोताओं क्षमा कीजिएगा, कल सुबह 9:00 आप बातें आसपास की प्रोग्राम सुनिएगा, क्योंकि 2 दिन ये प्रोग्राम हो रहा है शनिवार और इतवार को सुबह 9:00 से। कल दिन में 2:00 गीतांजलि प्रोग्राम, 2:15 से दोपहर समाचार दिल्ली से, 2:30 से नारी जगत कार्यक्रम में लाइव हेलो सहेली प्रोग्राम का टॉपिक रहेगा प्रकृति मनोरंजन के लाभ और सावधानियां। नेचर आपको क्या कुछ दे रही है, उसे आपको एंटरटेनमेंट के कौन कौन से लाभ हो रहे हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में बताइएगा। दोपहर 3:00 से लेकर 5:00 तक विविध भारती केंद्रीकृत सेवा के कार्यक्रम होंगे मुंबई से। शाम 5:00 युववाणी में आज की बात का टॉपिक सिक्किम दिवस, शांतिपूर्ण एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और हमारी धरोहर सेगमेंट में हम्पी के स्मारक समूह की जानकारी दी जाएगी और आर्थिक सेगमेंट में अवसर लागत की बात होगी और हीट वेव से बचने के लिए इमरजेंसी किट कैसी बनाई जाए, क्या कुछ उसमें रखा जाए इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लोक संगीत 5:30 से 6:10 से आपको शाम सुहानी प्रोग्राम सुनवाया जाएगा। गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम 6:30 से, किसानवाणी में 6:45 पर चर्चा का टॉपिक मक्का की खेती, इसके बाद जायद फसल में सब्जी उत्पादन विषय पर डॉक्टर लोकेश यादव से बातचीत करेंगी कांति श्रीवास्तव, बाजार भाव मौसम की जानकारी और लोकगीत सुनवाया जाएगा। विविध भारती के कार्यक्रम 7:30 से यानी 7:30 से और रात 8:15 से आकाशवाणी अयोध्या से आप सुनेंगे एक ही कलाकार प्रोग्राम। 9:15 से महफिल गजल प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:30 से लाइव फोन इन प्रोग्राम आप हेलो अयोध्या सुनेंगे और 10:30 से ढलती जाए रात प्रोग्राम में विविध भारती से पुराने गाने सुनिएगा। कार्यक्रम रूपरेखा समाप्त हुई। खाने पीने की चीजों को हमेशा ढक कर रखें और

स्वच्छ पानी पिएं, सड़क पर अपना वाहन चलाते समय नियंत्रित गति में चलाएं और यातायात के नियमों का पालन कीजिए। थोड़ी देर में 7:20 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। समाचारों का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2006 की परीक्षा, 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में तेजी से हुए विकास के चलते आज उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
2: आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना चाहिए।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी के माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते हैं एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक।

0: ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहे।
1: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर आज से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा खत्म हो गई है। कल रात 12 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 29 मई को माता भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। ये ध्वजारोहण राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी रितंभरा के हाथों किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस कार्यक्रम में करीब 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। आईपीएल में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए इकाना स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के लखनऊ कार्यालय में आज एक दिवसीय समीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उपक्षेत्रीय कार्यालय गोंडा, कानपुर, झांसी, फतेहपुर और लखनऊ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक डॉक्टर सुचिता गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक आय के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है जो अगले साल 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
4: ये सर्वेक्षण जरूरी था क्योंकि योजनाओं को बनाने में कहीं ना कहीं हमें इनकम की जरूरत होती है और अगर हमें इनकम सही से मिल रही है तभी हम बहुत सारी योजनाओं में हम टारगेट बना पाएंगे क्योंकि हर इनकम क्लास के जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें अलग अलग तरह की होती है तो सभी के लिए योजनाएं बन पाए अच्छी तरह से और टारगेट किया जा सके किस तरह की योजनाएं कितने लोगों को चाहिए होंगी कितने हाउस होल्ड को चाहिए होंगी तभी हमारा डेटा सही मायने में यूजफुल होगा।
1: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि

खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद के कम प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में आज सभी 899 ग्राम पंचायतों ने एक साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और कार पुलिंग इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ ही हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने का सामूहिक प्रण लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

ये आकाशवाणी का अयोध्या FM है 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अपने सुनने वालों को हम एक बार फिर से बता दें कि कल बातें आसपास की जो प्रोग्राम होगा सुबह 9:30 से, उसमें टॉपिक रहेगा श्री राम यंत्र राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या। टॉपिक फिर से सुन लें, श्री राम यंत्र राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम। और 9 आपके संदेश आपके गीत प्रोग्राम होगा। और अब समय है आकाशवाणी फैजाबाद पर आपको विविध भारती मुंबई से जोड़ने का, जहां से इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है जयमाला।

0: भगवान मेरे बच्चे को 100 बरस की उम्र देवे, कलेक्टर बनाए इसे। ले बेटा अब तो पी ले इसे, है ही कितना, अरे मुश्किल से मासा दो मासा होगा।
1: तुम भी कमाल करती हो माँ, पूरे पाव भर का ग्लास भरा हुआ इस काढ़े से, और तुम, और फिर चाहे ये रत्ती भरी तो ना हो, मेरे बस का नहीं है इसे पीना।
0: अरे मेरी नहीं तो अपने बाबूजी की परेशानी का तो ख्याल कर। अरे देखो 3 दिन से डॉक्टर वैद्यों के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं, तू भी तो बिस्तर पर लेटे लेटे परेशान।
1: क्या कहा? मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ? अरे भाई मुझे लेटाया गया है बिस्तर पर जबरदस्ती। हे भगवान कैसी बुरी घड़ी में मैंने थर्मामीटर मुंह में लगवाया था।
2: इसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया है। अशोक की माँ बाई दीवे, मैं कहता हूँ तुम रोगी से बहस करती क्यों?
1: बाबूजी आप माँ से कुछ भी कहिए लेकिन मुझे रोगी ना कहिए।
2: वाह बखुरदार वाह, तुम भी अपनी कसम के एक ही हो, 72 घंटों से चारपाई पकड़ी हुई है
1: और मैं इस वक्त सैकड़ों दंड पेल सकता हूँ, 1000 उठक बैठक लगा सकता हूँ, जिम्नास्टिक कर सकता हूँ, 1 मील तक दौड़ सकता हूँ और एक साथ दूसरे से कुश्ती लड़कर उसे पछाड़ भी सकता हूँ,
2: लेकिन 3 दिन हो गए एक प्याला काढ़ा भी ना पी सके।
0: हाय हाय वो बेचारा अभी अभी पीने ही लगा था कि तुमने उसे फिर छेड़ दिया। ले अशोक नाक बंद कर बेटे।
1: मैं कहता हूँ इस काढ़े को पीने से मेरी सांस ही बंद हो जाएगी। बाबूजी आखिर आप लोग मेरे माँ बाप होकर भी क्यों नहीं समझते?
2: देखो अशोक हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। भाई दीदी तुम ये समझने की कोशिश करो कि अपने इकलौते बच्चे को बीमार देखकर माँ बाप के दिल पर क्या बीत।
1: जी
2: भाई दीदी हम मानते हैं कि दवा कड़वी है लेकिन कोई भी दवा इतनी कड़वी नहीं होती जो पीना जाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो अचानक ही हमारी कनपट्टी पर बाई दीवे फुंसी पैदा हो गई।
0: और बेटा तेरे बाबूजी ने फुंसी की कोई चिंता न करके 1 महीने तक रोज नीम के पत्तों का आधा से रस पिया था जिससे खून में कोई विकार न रहे।
2: जी और बेटे हमारे इस काम से हमारी सेहत सुधर गई, साथ ही साथ घर वाले भी बड़े खुश हो गए थे। भाई दीवे अशोक तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें कोई उपदेश दे रहे हैं।
1: नहीं, नहीं,
2: कहा भाई तुम तो हमारे समझदार बेटे हो। अशोक की माँ ये गिलास तुम अशोक के हाथ में दे दो,
0: अच्छा।
2: वो खुद पिएगा काढ़ा। भाई हाँ तो बेटा देखो हम आंखें बंद कर लेते हैं और तुम पी जाओ, हम 1 2 3 कहते हैं, 1 2 3 पी जाओ बेटा पी जाओ। हाँ हाँ एक सांस में पी जाओ। हाँ मैं कहता हूँ पी जाओ।
0: हाय हाय तुम तो बुरी तरह डांटने लगे बच्चे को।
1: देखो
0: जा पहले चेहरे का पसीना तो सुखाओ।
2: मैं कहता हूँ अशोक की माँ
0: कहते हो तो कहते रहो, 3 दिन से बराबर बुखार है उसे, कमजोरी बढ़ गई है, आखिर एक सांस में कैसे पी जाएगा इतना सारा काढ़ा। ले बेटे बेटे अशोक
1: मैं एक सांस में 2 सेर दूध पी सकता हूँ, 5 कच्चे अमरूद खा सकता हूँ, 2 दर्जन केले खा सकता हूँ, यहाँ तक के कड़वे करेले खा सकता हूँ, पर एक प्याला काढ़ा नहीं पी सकते।
2: बाबूजी
1: ये नीम के पत्तों से कहीं ज्यादा कड़वा है।
2: कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें काढ़ा पिलाकर ही दम लेंगे। भगवान
0: बेटा ये काढ़ा मैं 15 दिन तक पी चुकी हूँ, अरे मुझे भी तेरी तरह 100 बुखार था,
2: ना कमबख्त बढ़ने का नाम लेता था ना घटने का। 5 दिन बाद तुम्हारी माँ को जब ये काढ़ा दिया गया
0: तो कहीं जाके मेरा बुखार उतरा। हाय वैद्य जी भगवानों ने 100 बरस की उम्र,
2: क्या भक्ति होगी वैद्य जी पहले 102 साल के हैं। अच्छा तो हाँ अशोक की माँ हम अशोक के दोनों हाथ पकड़े लेते हैं, तुम बिजली की तेजी से अशोक के मुंह में काढ़ा डाल देना।
0: नहीं जी हाथ मैं पकड़ती हूँ।
2: तुम्हारा बेटा 25 साल का नौजवान है अशोक की माँ, एक झटके में ये दोनों हाथ छुड़ा लेगा।
1: आप लोग चिंता ना करें मैं चुपचाप लेटा रहूंगा
2: और फिर तुम घंटों तक मुंह नहीं खोलोगे।
1: बाबूजी आप मुझे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखला देते, ना हो तो वैद्य जी से कहिए वो आकर मुझे देख तो ले। पता नहीं उन्होंने मेरी नब्ज देखे बगैर कैसे काढ़ा दे दिया।
2: बेटे तुम्हारी जिद को देखते हुए भाई दीवे मैंने डॉक्टर साहब को बुला भेजा
1: जी।
2: बस वो आते ही होंगे 5-7 मिनट में, लेकिन उनके आने से पहले हम तुम्हें इस सख्सीर दवा की एक खुराक जरूर पिलाना चाहते हैं।
1: नहीं
2: हाँ अशोक की माँ
0: जी
2: अच्छा तो देखो हम अशोक के दोनों हाथ पकड़ते हैं और तुम
0: चलो मैं दवा उन्हें लूंगी।
1: प्रभु
0: जरा 1 सेकंड के लिए ये गिलास तो पकड़ना अशोक के बाबू।
2: लाओ दे दो। है मुझे तो तुम्हारा हाथ भी कुछ गर्म महसूस हो रहा है, कहीं तुम्हें तो
0: क्या भक्ते हो जी।
1: बहुत अच्छे।
0: अरे अभी अभी तो मैं कड़ी चावल खा के उठी हूँ और सुबह से अब तक कसाले का काम करती रही हूँ, मुझे भला कहीं बुखार हो सकता है?
2: अरे बातों का बुखार से क्या ताल्लुक है, तुम फौरन थर्मामीटर लगाओ।
0: कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं सठिया गया है अशोक के बापू, अरे मुझे फिर भूख लग रही है और बल्कि मुझे तो अभी रामू की माँ के घर भी जाना है।
1: थर्मामीटर लगाने

0: बच्चे हम
1: बुखार ना हो तो ना सही, बाबूजी की शंका तो दूर हो जाएगी। ये लो थर्मामीटर।
2: ओफो।
3: देखो बेटे, तुमने जरा अपनी माँ की तबीयत खराब होने की बात सुनी तो तुम्हें भी टेंशन हो गई, यानी तुम्हारी भी चिंता बढ़ गई।
0: चिंता की तो बात है ही बाबूजी।
3: यही हाल हमारा भी है अशोक बेटा, तुम्हारे लिए हमें बहुत टेंशन है, हम बहुत चिंतित हैं।
1: आप ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं गलत था।
3: अच्छा तो बच्चे, अब तुम चुपचाप काढ़ा पी लो।
1: पी तो लूंगा बाबूजी, पर आपको एक कष्ट दूंगा।
3: हाँ हाँ बेटे जरूर, कहो कहो।
1: बाबूजी मैं सीधा लेटा रहूंगा और किसी ना किसी तरह मुंह भी खोल लूंगा, बस आप एकदम खुराक मेरे गले में पहुंचा दीजिए।
3: शाबाश बेटा शाबाश, एक सेकंड ठहरो।
0: क्यों?
3: मैं जरा थर्मामीटर देख लूंगा।
0: हाँ जी।
3: लाना जी जरा देना इधर थर्मामीटर।
2: ये लो।
3: देखा। मैं पहले ना कहता था अशोक की माँ तुम्हें भी बुखार है, 100 डिग्री। ठीक अशोक।
1: क्या मालूम बाबूजी माँ को भी 2-3 दिन से बुखार रहा हो।
3: हो सकता है,
1: हो सकता है।
2: मैं कहती हूँ
3: तुम्हें अब कुछ कहने सुनने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें लेटने की जरूरत।
1: हाँ माँ।
3: संतो, ओ संतो, अबे संतो कहाँ मर गया तू? क्यों जी, कहाँ चले गए थे तुम?
4: डाकघर गया था बाबूजी, अशोक बाबू ने 3 पोस्टकार्ड और 5।
3: अच्छा अच्छा ठीक है, तुम इस चार पाई पर एक बिछौना अशोक की माताजी के लिए लगा दो, जब तुम्हें बुखार है और ये थर्मामीटर धोला।
2: क्या मुसीबत है।
1: बाबूजी अब इस काढ़े के 2 खुराक बना लीजिए, ये खुराक माँ को भी तो चाहिए।
3: तुम ठीक कहते हो बेटा, बिल्कुल ठीक कहते हो। बाय द वे ये लो अशोक की माँ, लो पहले तुम पी जाओ दवा
1: जल्दी,
3: तुम्हें देखकर अशोक की हिम्मत भी खुल जाएगी।
2: अभी मैं नहीं पीऊंगी ये कड़वा काढ़ा, मेरा जी पहले से ही मितला रहा है।
3: वाह जी वाह, ये कैसे हो सकता है?
4: बिस्तर तैयार है बाबूजी, और ये लीजिए थर्मामीटर।
3: अशोक की माँ तुम तो पहले भी इस काढ़े को 15 दिन पी चुकी हो।
1: हाँ तुम
3: पी लो, उधर तुम्हारा बुखार उतरा, इधर मेरी और अशोक की टेंशन यानी चिंता एकदम दूर हो जाएगी।
2: अजी नाली में फेंकिए इस काढ़े को, भाग में बुखार होगा तो होके ही रहेगा, वैजी का काढ़ा तकदीर के लिखे को थोड़ा ही बदल सकता है।
3: देखो अशोक की माँ, अब तुम्हें भी जबरदस्ती पिलाया जाएगा काढ़ा, दवा के मामले में मरीज की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
1: गुस्सा ना कीजिए बाबूजी, लाइए पहले मुझे पिला दीजिए दवा, माँ अपने आप पी लेंगी बाद में।
3: जियो बेटा, जुग जुग जियो। अच्छा तो तुम सीधे लेट जाओ, मैं तुम्हारा मुंह खोलकर अपने आप दवा डालूं।
1: जी
3: हाँ, इस तरह बस बस, अब हिलो डुलो मत।
1: जी
3: हाँ हाँ हाँ, मुंह खोलो खोलो मुंह खोलो।
1: ठहरिए बाबूजी।
3: क्या बात है बेटे?
1: बाबूजी मुझे आपका हाथ भी गर्म लगता है, कहीं आपको तो।
3: अरे पगले, धूप में चल फिर कर आया हूँ ना, कोई बर्फ खाने में तो बैठा नहीं था। और फिर मेरे चेहरे की सुर्खी क्यों नहीं देखते हो तुम?
2: सुर्खी बुखार से भी बढ़ जाती है कभी कभी अशोक के बाबू, थर्मामीटर तो पास में पड़ा है, लगा के क्यों नहीं देख लेते?
1: ये लीजिए बाबूजी थर्मामीटर, भगवान करे आपको बुखार हो।
2: बेटा अशोक, बैजी मुझे बता रहे थे कि आजकल भूत के बुखार बहुत फैल रहे हैं।
1: माँ भूत नहीं, वैजी छूत की बीमारियों का जिक्र कर रहे होंगे।
2: बुखार भी तो बीमारी ही होती है बेटा।
1: तब तो ये काढ़ा पीना ही होगा माँ तुम्हें।
2: अरे मेरी जिंदगी का क्या है बेटा, जिंदगी तो तुम लोगों की चाहिए।
1: लाइए बाबूजी मुझे दीजिए थर्मामीटर। अरे आपको भी बुखार है 100 डिग्री, मेरी और माँ की तरह।
2: सच? संतोष
1: संतोष
2: संतोष, अरे इस पलंग पर एक बिस्तर और बिछा दे,
1: एक और
2: एक खाली प्याला भी लेके आना।
1: जल्दी।
4: जी अशोक।
2: हाँ अशोक।
0: हाँ जी माँ।
2: आप इस दवा के 3 हिस्से कर दे।
1: जी अभी करता हूँ।
2: एक खुराक तेरे बाबूजी पिएंगे।
3: भाई आज मेरे बुखार का पहला दिन है, आज मेरा दवा पीना ठीक नहीं।
1: कहाँ जाने बाबूजी, आपको भी मेरी और माँ की तरह कल परसों से बुखार हो।
4: बिस्तर लगा दिया है जी।
2: अच्छा
4: ये लीजिए प्याले।
2: अशोक बेटा सबसे पहले अपने बाबूजी को एक खुराक दे।
1: सबसे पहले।
2: अरे इनके ही दम से तो गृहस्थी चलती है हमारी।
3: मैं आज बुखार के पहले दिन दवा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, ये मेरा उसूल है।
2: लेकिन नीम के पत्तों का रस तो तुमने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन तुम्हारी कनपट्टी पर फूसी।
3: ठीक है लेकिन ये काढ़ा है।
5: नमस्कार कृपा शंकर जी।
3: आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आपकी सब जरूरत थी। देखिए मुझे और अशोक की माँ को भी 100 बुखार हो गया है, और अशोक के बारे में तो मैंने आपको टेलीफोन पर बता ही दिया था।
1: लेकिन डॉक्टर साहब मुझे भूख बहुत लगती है, दौड़ने भागने को जी करता है, और बिस्तर सबसे बुरा लगता है।
5: लाइए नब्ज दिखाइए।
2: डॉक्टर साहब मैंने थोड़ी देर पहले कढ़ी चावल खाए थे, अब फिर भूख लग रही है, बदन में फुर्ती महसूस।

0: कर रही हूँ।
1: आप भी नब्ज दिखाइए।
2: मैं बिल्कुल चंगा हूँ डॉक्टर साहब, देखिए फिर भी मुझे 100 बुखार है।
1: आप भी लाइए अपनी नब्ज।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, आप खामोश हैं।
1: कोई खास बात नहीं कृपा शंकर जी, मैं सोच रहा हूं मैं यहां बेकार ही आया। आपका थर्मामीटर गलत है। जी हाँ, इसको लाख बार झटकिए लेकिन इसका पारा ना तो 100 डिग्री से आगे बढ़ता है और ना ही पीछे हटता है।

अभी आपने वीरेंद्र कश्यप की लिखी हास्य नाटिका सुनी। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

ये है हम सबका हर मन प्यारा आकाशवाणी अयोध्या एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर पूरी दुनिया में आपका रेडियो मीत अमरजीत आपके पास पहुंच गया प्रोग्राम बॉलीवुड फिल्मी गानों का लेकर गीत गुंजन जो आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल कर रहा है, बहुत बहुत वेलकम कर रहा है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है हवाओं की तरंगों पर सवार होकर आकाशवाणी अयोध्या की आवाज। जी हाँ, हवाओं की तरंगों पर ही सवार होकर ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है जहां कहीं भी सुन रहे हैं आप। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है ना? हंसते गाते मुस्कुराते सेहतमंद और दुआओं में आपने मुझे याद रखा, तो फिर मैं कहां रुकने वाला था, पहुंच गया आपके पास। चलिए, आज शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले सुखदेव थापर का जन्म भी है। 15 मई 1907 को ये पैदा हुए थे। आज ही के दिन 1940 में रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स नाम के दो भाइयों ने मिलकर कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में छोटा सा रेस्तरां खोला था। मैकडॉनल्ड्स के 119 देशों में 35,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स खुले हुए हैं। जी हाँ, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। हम तो बस बेकार में ही ऐसे सोचते रह जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा। देखिए दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। 15 मई आज ही के दिन 1995 में एलिसन गारग्रिप्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहली महिला बन गई थी। जी हाँ, कभी कभी जबान स्लिप कर जाती, बड़ी संभाल के बोलनी पड़ती है। कहते हैं ना कि बोलने से पहले आप सोचिए ज्यादा और संभल कर बोलिए, क्योंकि जुबान तो चंचल होती है, कहीं भी स्लिप कर सकती है। चलिए बातें और करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आपको गाना सुनवाया जाए आज के प्रोग्राम का पहला। तारा रम पम पम

ये फिल्म का नाम नहीं है, गाने के बोल मैंने आपको बताए थे। बॉर्डर 2 से ये गाना, जिसकी फरमाइश आप लगातार पिछले दिनों से कर रहे थे, कुछ नई फिल्मों के सीडीज कंप्यूटर में डाल दिए गए हैं। सुखविंदर सिंह की आवाज को आज बहुत दिन के बाद हम प्ले कर रहे हैं, आइए सुना जाए ये गाना।

जी हाँ, दोस्ती पे ये गाना था। और आज तो जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अपने परिवार में बैठकर आप ये प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। जब परिवार के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, तो बात ही कुछ और होती है कि नहीं। परिवार हमारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा है। चाहे हम कितने भी बिजी हों, व्यस्त हों, लेकिन परिवार ही वो आधार है जो मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से हम सबको मजबूत बनाता है। हर साल की तरह आज 15 मई को भी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, ताकि हम परिवार के महत्व को समझें और इसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। डिजिटल युग में मोबाइल, सोशल मीडिया और

इंटरनेट ने पारिवारिक बातचीत का समय बहुत ही कम कर दिया। ये सब आप भी महसूस कर रहे होंगे। घरों के अंदर जब हर एक इंसान अलग अलग मोबाइल लेकर टीवी को भी छोड़कर वो बैठा रहता है, अपने फैमिली के सदस्यों से विमुख होकर, तो ये बात बहुत ही बड़ी है कि एक जगह इकट्ठे होने के बावजूद भी हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। किससे बातचीत कर रहे हैं? मोबाइल से बातचीत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मोबाइल को दूर रखिए और अपने रिश्तों को बनाए रखिए, तभी खुशी मिलती है असली, है ना। जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ भी कुछ टाइम बांटिए, बातें करिए, उनको क्या तकलीफें हैं, क्या कुछ उनको चाहिए, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर मोबाइल से आप बातचीत करते रहेंगे ना, तो परिवार से फिर उतने ही दूर होते चले जाएंगे। एक ज़माने में हम लोग को कहा गया था कि मोबाइल ने सबको बहुत नज़दीक कर दिया, अब इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। मोबाइल ने नज़दीक नहीं, दूर कर दिया सबको। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे के साथ परिवार में खुली बातचीत करें, आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर बातें करें और परिवार को मजबूत और खुशहाल बनाने में मदद करें। तो जब इतनी बातें हो गई हैं, तो एक गाना भी तो यहाँ पर आना चाहिए ना। वो गाना कौन सा है? वो गाना मैंने आज सर्च करके निकाला है। और जब घर में कोई बहुत दूर से आता है कहीं से, जी, तो खुशी तो होती है ना। क्या होता है, क्या महसूस होता है, आइए सुने इस गाने में।

और अब जी हाँ बारी आ गई आपके इस प्रोग्राम गीत गुंजन में फिल्मी फ्राइडे की। आज फ्राइडे है तो फिल्में भी तो रिलीज हुई है ना, तो चलिए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की म्यूजिक बजाते हैं। बॉलीवुड का फिल्मी फ्राइडे, आइए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में जानते हैं आज ओटीटी और सिनेमा घरों में कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं। एक दो नहीं बल्कि 9 फिल्में और ओटीटी सीरीज आ चुकी हैं आपके जी हां टेलीविजन पर, मतलब वीकेंड पर आप सिनेमा घरों में भी नई फिल्में एंजॉय कर पाएंगे और घर बैठकर ओटीटी पर भी एंटरटेनमेंट कर सकेंगे। धुरंधर 2 को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 56 दिन हो गए। जी हाँ, इस फिल्म ने इस दौरान धुआंधार परफॉर्म किया और जबरदस्त कमाई भी की वर्ल्ड वाइड। अब रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है आज। धुरंधर 2 स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के साथ सार अर्जुन की एक्टिंग आप देख सकते हैं। सैफ अली खान, रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा और सौरभ द्विवेदी की ड्रामा और क्राइम फिल्म कर्तव्य भी आपके पास है। एग्जाम द सिस्टम एक्सपोज, ये सोशल ड्रामा और थ्रिलर मूवी आज दुशारा विजयन और अदिति बालन को थिएटर के साथ ओटीटी पर भी आप देख सकते हैं। पति पत्नी और वो दो, पति पत्नी और तवायफ फिल्म तो आपने 70-80 के दौर में देखी होगी, लेकिन अभी आ रही है पति पत्नी और वो दो। रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म में आपको आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, वमिका गब्बी नजर आएंगी। आखिरी सवाल, ये मेरा नहीं फिल्म का नाम है, ये भी फिल्म आज रिलीज हुई है। ये मूवी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। संजय दत्त, अमित साध, समीरा रेड्डी, नीतू चंद्रा की एक्टिंग को आप थिएटर ओटीटी दोनों पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या एंजॉय कर सकते हैं, जी हाँ धुरंधर 2 का गाना बड़ा वेट कर रहा है आपका, क्योंकि बात तो मैंने कर ली शुरू में ही, लेकिन गाना अब आपके पास।

0: ये है अयोध्या 101.9।
1: रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा।
0: आपकी चॉइस एजे अमरजीत आपके पास।

तो बस इसी तरह से सुनते रहें 101.9 पर और पूरी दुनिया में मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी अयोध्या को। और अब गीत गुंजन प्रोग्राम में स्टार ऑफ द वीक, किसका बर्थडे है आज? बस धड़कने थोड़ी थमने वाली है आपकी, क्योंकि धक धक गर्ल आने वाली है आज।

जी हाँ, हिंदी फिल्मों की एक फेमस हीरोइन और डांसर जिसने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत सन 1984 में फिल्म अबोध से की। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों के कारवां ने इनको भारतीय सिनेमा की सर्वोच्च अभिनेत्री बना दिया। सन 2008 में इस सिने स्टार को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। आप समझ गए ना किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, कुछ लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हैं, बिल्कुल सही सोचा आपने। जी हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की, जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, 58वां, 58 ईयर्स की हो गई हैं। आमिर के साथ फिल्म दिल, संजय दत्त के साथ साजन, सलमान के साथ हम आपके हैं कौन, तो शाहरुख खान के साथ दिल तो पागल है जैसी कामयाब फिल्में दे चुकी माधुरी ने अपने समय के तमाम बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। माधुरी को पहली सफलता 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब से मिली। इस फिल्म के बाद माधुरी का करियर चल निकला, पीछे मुड़कर फिर देखा नहीं उन्होंने। राम लखन, परिंदा, त्रिदेव, कृष्ण कन्हैया, बेटा, प्रहार जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में माधुरी ने मेन स्ट्रीम की नायिका बनकर काम किया। बेटा, खेल, खलनायक, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में माधुरी दीक्षित को सुपर एक्ट्रेस का दर्जा मिल गया। 1999 में शादी के बाद माधुरी ने फिल्मों में कमबैक किया। गजगामनी जैसी चर्चित फिल्म के अलावा लज्जा, हम तुम्हारे हैं सनम, देवदास जैसी फिल्मों में काम किया उन्होंने। देवदास की रिलीज के 5 साल के बाद 2007 में आजा नचले फिल्म से माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक किया। 2013 में माधुरी दीक्षित दो फिल्मों में नजर आईं, डेढ़ इश्किया और महिला गैंगस्टर पर बनी फिल्म गुलाब गैंग में। ये जवानी है।

0: जवानी में माधुरी दीक्षित ने एक आइटम सॉन्ग भी 2013 के बाद आई फिल्म में किया। उसका गाना बस चलने वाला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पिछले कुछ समय से अपनी अपकमिंग फिल्म माँ बहन को लेकर भी काफी चर्चा में है। ये एक डार्क कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसकी ऑडियंस। इस फिल्म में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी भी लीड रोल में नजर आएंगी और मदर्स डे के मौके पर जो भी कुछ दिन पहले आया था, फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला है जब फिल्म में माँ बहन का जो फर्स्ट लुक जो है मीडिया पर उनको देखने को मिला, जिसमें माधुरी दीक्षित को भी उन्होंने देखा। लेकिन आपको अब हम सुनवाने जा रहे हैं वो कौन सा गाना माधुरी दीक्षित का, आइए आपके पास वो गाना घाघरा वाला भेज रहे हैं।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

चलिए जाने से पहले स्पोर्ट्स की भी बात कर ली जाए, खेलों की भी बात कर ली जाए। और आईपीएल की तो धूम मची हुई है आजकल, आप भी मैच देख रहे होंगे और कमेंट्री सुन रहे होंगे। पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 के शुरू के 7 मैचों में हारी नहीं थी और 13 अंकों के साथ टॉप पर चल रही थी, बहुत दिन तक रही भी, और अब लगातार 5 मैच हार गई। तो 6 जीत और 5 हार और बारिश वाले मैच में मुंबई को कोलकाता से 1 अंक मिला था। लेकिन कल रात पंजाब 200 रन बनाने के बाद भी धर्मशाला हिमाचल में मुंबई से हार गई। तिलक राम वर्मा ने उनके हाथों से हार छीन ली। 75 रन बनाए तिलक राम वर्मा ने कल धुआंधार। और आरसीबी और गुजरात 16-16 पॉइंट्स लेकर नंबर 1 और 2 पर हैं। तीसरे नंबर पर हैदराबाद 14 पॉइंट्स के साथ है। और ये सभी टीमें 12-12 मैच खेल चुकी हैं आईपीएल में अब तक। आज लखनऊ में चेन्नई से मुकाबला हो रहा है इस समय। 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन बना सकी थी चेन्नई की टीम, लेकिन जो ताज़ा अपडेट मेरे पास आई है वो 12 ओवर की समाप्ति पर 92 रन बना लिए चेन्नई ने 3 विकेट खोकर, 92 रन बन गए। और अब मेरे पास, जी हाँ, पंजाब के पास बस 2 मैच और बचे हुए हैं एलिमिनेटर मैच से पहले और सेमीफाइनल से पहले। तो जो कुछ करना है पंजाब के किंग्स अभी भी कुछ

0: आज का प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम आ गया। आप सब हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका मीत अमरजीत है जब आपके साथ, तो फिकर की क्या है बात। सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या, बस इसी तरह से 101.9 पर और देश और दुनिया में, जी हाँ, प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अपना और अपनों का, सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बॉलीवुड के फिल्मी गानों का ये था प्रोग्राम गीत गुंजन, जिसे आपने आकाशवाणी अयोध्या से सुना। कुछ ही देर में दिल्ली से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने RJKR मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने UAE के लिए भारत के

0: समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और मुझको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श

0: के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाओ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prarthana hai.

0: विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। दरअसल भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा करेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President

0: जगजीत सिंह की आवाज में प्रोग्राम की पहली गजल आपने सुनी और अब प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं गुलाम अली की गाई हुई इस गजल को। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में,
1: ये गजल अबैदुल्लाह अलीम की है, छोटी बहर की गजल है। अक्सर आपने मुझसे सुनी होंगी छोटी बहर की गजलें ज्यादा गाता हूँ इसलिए जरा मुश्किल पसंद थोड़ा सा जेन है, जो ना चीज तैयार हो सके उसको तैयार करने की कोशिश करता हूँ।

0: ये है आपका हर मन प्यारा आकाशवाणी अयोध्या FM, जिसे आपने ट्यून किया है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इंटरनेट के जरिए देश और दुनिया में लोग इसे सुन रहे हैं मोबाइल ऐप प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR पर। बस जी, प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है लाइव हेलो अयोध्या, और नंबर आपको डायल करना है 10:30 बजे तक, 10:30 का 10:25 या 26 मिनट तक, 7376804090, 7376804090। बस इस नंबर को लगाते ही आप हम तक पहुंच जाएंगे, मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिला देंगे और अपनी पसंद का गाना सुन लेंगे।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
3: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।

0: 7376804090 लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी और साथ में होंगे आप ही के पसंद के फिल्मी गाने। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में अभी कॉल कीजिए 7376804090 पर और कनेक्ट हो जाएं एजे अमरजीत सिंह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। ये अलबेला सजीला और दिलचस्प प्रोग्राम आपके अपने FM 101.9 और स्मार्टफोन पर आ चुका है। अवध की सुरीली धड़कन आकाशवाणी अयोध्या। आइए शुरू करते हैं फिल्मी गीतों और आपकी प्यारी बातों का ये सुहाना सफर। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, आपका रेडियो मित्र अमरजीत यहाँ भी पहुँच गया आपसे बातें करने के लिए। कंट्रोल रूम से आज हमारे साथ हैं, बल्कि शाम 5:30 बजे से हमारे साथ हैं इंजीनियर स्वप्निल मिश्रा। तो कॉल अटेंड की जाए, सिलसिला शुरू किया जाए बातों का और सुहाने सफर का गीतों के साथ। जी कौन है मेरे साथ, आपका स्वागत है प्रोग्राम में।
1: हेलो
0: जी, आपका स्वागत है, नाम बताइए, कहाँ से कॉल लगी।
1: नमस्ते सर, अलका शुक्ला बोल रहे हैं गोंडा।
0: अलका शुक्ला, आप तो बहुत ही पुरानी लिस्नर हैं आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या की। इतने दिन आप कहाँ पर थी, आपने कॉल नहीं लगाई, क्या हो गया?
1: सर कॉल नहीं लगा, हमारा फोन खराब था। अच्छा, तो बताएंगे बराबर कॉल।
0: अच्छा ये बताइए, जब लोगों का फोन खराब हो जाता है तो लोग 10 मिनट भी बेचैनी उनको होने लगती है, तो आपने 1 महीना कैसे काट लिया?
1: सर मेरे पास फोन नहीं है, पापा का फोन था इसीलिए।
0: अच्छा, ये बात है,
1: बात करने के लिए ले लेते हैं।
0: तो वैसे भी मैंने आज
1: घर में फोन है।
0: जी जी, वैसे भी मैंने आज गीत गुंजन बताया, आज जो है वर्ल्ड फैमिली डे है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, तो मोबाइल से जितना दूर रहेंगे ना तो

0: नहीं परिवार से जुड़ के आप रहेंगे, है ना
1: जी सर। और आज आपने गीत गुंजन प्रोग्राम भी बहुत अच्छा किया, बातें भी बहुत अच्छी बताई, शाम सुहानी प्रोग्राम में जो दोनों गाने सुने वो बहुत अच्छे लगे।
0: और आपके परिवार में सब बढ़िया है ना?
1: जी सर सब बहुत अच्छे हैं।
0: तो आप
1: ठीक हैं?
0: आप अकेली सुन रही हैं इस वक्त, कोई और भी सुन रहा है आपके आसपास?
1: नहीं सर, घर में सभी लोग हैं, भाभी हैं, तीन भतीजे हैं, भतीजी हैं, भैया, पापा, मम्मी हैं।
0: चलिए बहुत ही बढ़िया परिवार है आपका। तो परिवार में लोग रहते हैं ना, जब बातें आपस में करते हैं तो मन खुश हो जाता है।
1: जॉइंट फैमिली है मेरी, बहुत सारे परिवार हैं।
0: जी जी, तो आज अलका को गाना कौन सा सुनवाया जाए?
1: सर आप लव चले का सुनवा दीजिए, ये कैसी मुलाकात है। सर ये गाना हमने आपके लिए सुना, अगर आप नहीं रहेंगे स्टूडियो में तो हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग सुनेंगे।
0: ये बात तो आपने बहुत ही बढ़िया की, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग अपने आरजे अमरजीत यूट्यूबर पे डालता हूँ। वहाँ पे तो वहाँ पर मैं जब मैं भी उस रिकॉर्डिंग को सुनूंगा जब नहीं बोलूंगा, है कि नहीं?
1: जी सर, आपकी बहुत याद आ रही है तो हमने सोचा गाना रिकॉर्ड करवा लें।
0: और ये भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ से हटा तो अगर ईश्वर मुझे कहीं और ले गया तो फिर मैं वहाँ से भी दुनिया में बोलूंगा, क्योंकि मैं चुप रहने वाला नहीं, मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। जब तक हूँ तब तक बोलता रहूँ।
1: प्रोग्राम करते सभी एंकर बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं।
0: शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। आज
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं
0: जी। अलका आपकी कॉल गोंडा से कहाँ से लगी, गांव का नाम बताइए।
1: ग्राम दलई शुक्रपुरा वजीरगंज।
0: जी जी, ये देखिए मैं आपसे पूछना ही भूल गया बातों बातों में, तो बहुत खुशी हुई आपसे आज बात करके। आप फिर से आइएगा प्रोग्राम में, ठीक है?
1: जी सर,

0: सर, किसी और को भी अपनी बारी का इंतजार है, देखें कौन है। जी नाम बताइए अपना।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नाम बता दीजिए अपना सबको।
1: मेरा नाम सोनाक्षी है।
0: सोनाक्षी, अच्छा ये फिल्म वाली सोनाक्षी?
1: यस मैम। अरे यस सर।
0: अच्छा क्या करती है पहले बताइए, कहाँ किस जगह से कॉल लगाई आपने?
1: मऊ यदुवंशपुर से, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ।
0: मऊ यदुवंशपुर, ये अयोध्या में ही है ना, धाम में? ठीक है, तो
1: yes,
0: अभी आप केवल 7th में पढ़ती हैं, तो रेडियो ज्यादा सुनती हैं क्या?
1: यस सर, मेरे घर का सब लोग सुनते हैं।
0: तो पढ़ा भी करो ना, सारा दिन रेडियो सुनोगी तो फिर पढ़ोगी कैसे?
1: स्कूल भी जाते हैं तो आते हैं, तो फिर मेरी मम्मी चलाती हैं तो सुनते हैं।
0: हाँ, रेडियो देखिए तभी जब खाली टाइम होता है ना, घर का काम आपका हो गया, स्कूल का काम हो गया, तो तब सुना कीजिए। तो बताइए गाना इस फिल्म में कौन सा सुनवाए आपको, किस फिल्म का?
1: प्रेम रोग का, ये गलियां ये चौबारा।
0: अच्छा, तो ये फिल्म आपने देखी थी कि नहीं?
1: हाँ देखे हैं।
0: अच्छा, तो कौन है इस फिल्म में बताइए, बता सकते हैं कौन हीरोइन थी? प्रेम रोग का गाना,
1: हीरोइन का नाम नहीं याद है।
0: पद्मनी कोल्हापुरी। प्रेम रोग का गाना कंप्यूटर

0: साहब हमारे दिखा ही नहीं रहे, आज क्या हो गया प्रेम रोग को? हैं? कंप्यूटर से प्रेम हो? अच्छा मिल गया मिल गया, ये गलियां ये चौबारा। चलिए कॉल के लिए शुक्रिया सोनाक्षी, और घर का नाम भी आपका यही है कि स्कूल का नाम है ये?
1: दोनों घर का भी यही नाम है।
0: तो बड़ा कठिन नाम रखा है आपके घर वालों ने, सब ले लेते हैं आराम से। चलिए ठीक है, सुनिए गाना। कॉल के लिए शुक्रिया आपका, मऊ यदवंशपुर में।

0: और अब जिया हेलो अयोध्या में किसकी आवाज गूंजने वाली है मेरी आवाज के साथ, आइए उनको भी लेके आए रेडियो पर। जी नाम बताइए अपना। अवधेश कुमार मौर्य जी, आप मऊ यदुवंशपुर से कॉल कर रहे हैं ना?
1: जी सर जी।
0: तो क्या करते हैं वहाँ पर?
1: खेती काम है।
0: अच्छा, खेती काम तो वैसे भी बहुत होता है, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते होंगे घर से, है कि नहीं?
1: जी सर जी।
0: तो खेत में आजकल क्या कुछ लगा रखे हैं आप?
1: खाने पीने लगाए हैं, वो मतलब भिंडी है,
0: तरकारी भी बोते हैं आप? बढ़िया बढ़िया। अच्छा हमको एक बात बताइए अवधेश जी, कि पहले की जो तरोई होती थी उसको खाने में बड़ा टेस्ट मिलता था, जो आजकल की तरोई आ रही है तो बड़ी लंबी लंबी, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं तरोई में?
1: अरे सर वो कीटनाशक होता है,
0: बस बस बस सारा काम वही बिगड़ जाता है, कि नहीं? तो सब्जियां तो भारी भारी हो रही है, बड़ी बड़ी हो रही है, कद्दू भी लौकी भी। समझ गए हम। तो बस गाना आपको सुनवा दे हम, कौन सा बताइए आज?
1: रोटी कपड़ा और मकान।
0: रोटी कपड़ा और मकान, मैं ना भूलूंगा।
1: हाँ जी सर।
0: तो कोई भूल रहा है क्या आपको?
1: नहीं नहीं सर,
0: यहाँ
1: गाना अच्छा लगता है।
0: हमको लगा कि आप किसी को कह रहे हैं कि मैं ना भूलूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं, थोड़ा पुराना गाना अच्छा लगता है।
0: बस आप आकाशवाणी अयोध्या को मत भूलिएगा, ठीक है ना
1: जी? अरे सर कई दिन से लगा रहे थे, लग गया कहीं कहाँ से।
0: चलिए गाना सुनिए, कॉल के लिए शुक्रिया आपका।

0: और अब मेरे पास 73 76 80 40 90 पर किसकी कॉल आ गई। जी बताइए अपना नाम।
1: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ।
0: नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में इतनी दूर पर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ा ही मन खुश हो गया। और बताइए, बहुत दिन के बाद आए आज इस प्रोग्राम में।
1: जी जी जी, क्योंकि क्या है कि मैं जब आपके कार्यक्रम आते हैं तभी खासतौर से मैं कॉल लगाता हूँ।
0: तो आपको ये उम्मीद रहती है कि आज मैं कॉल लगाऊंगा तो अमरजीत से बात हो जाएगी।
1: जी जी जी, जैसे आपका आवाज सुना तो मुझे समाचार से पहले तो मैंने कहा चलिए आज मैं इधर तैयार रहूंगा, आज कॉल लगाना ही लगाना है। तो मैंने विजय पांडे जी को भी बोला था तो वो बोले थोड़ा वो नेपाल बॉर्डर के पास अपना दूसरे गाँव में गए हैं तो इसलिए उनका टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने
0: उससे अच्छा, कल परसों इधर बहुत ही जबरदस्त एक तूफान आया था, वो वहाँ भी पहुँचा था आपके नॉर्थ त्रिपुरा में भी कि नहीं?
1: नहीं नहीं, हमारे इधर तूफान तो एक महीने पहले आया था, बहुत ही मतलब नुकसान हुआ था, लेकिन अभी हाल फिलहाल मौसम तो बहुत ही सुहाना बना हुआ है और हल्की हल्की बारिश, मतलब 3-4 दिन हल्की हल्की बारिश भी इधर हो रहा है, बाकी मौसम सही है।
0: अयोध्या जी,
1: मैंने समाचार रेडियो समाचार में मैंने देखा था कि कल की सुबह समाचार में भी सुना था कि मतलब कि बहुत नुकसान हुआ था उत्तर प्रदेश में।
0: जी जी बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में तो नुकसान बहुत ही ज्यादा हुआ क्योंकि बिजली गिरने से यहाँ पर कम से कम 60 के आसपास के लोगों की मृत्यु हो गई थी।
1: जी जी जी, वही समाचार रेडियो में सुना था सुबह का जो समाचार प्रभात आता है उसमें।
0: जी तो ये बताइए अविनाश जी, आपको गाना कौन सा सुनवा दिया जाए आज इस प्रोग्राम में?
1: जी आज नारियल पानी वाला एक गीत सुना है क्योंकि नारियल पानी खेत में बहुत अच्छा होता है और गर्मी के मौसम में भी फायदेमंद होता है क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी अपने उफान पे आने वाला है तो खासकर श्रोता अपना ख्याल रखें।
0: बहुत ही बेहतरीन गाना आपने चुना,
1: ये गीत है
0: जी, आपने बहुत ही अच्छा गाना चुना अपना देश फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। आइए सुनवाएं आपको कॉल के लिए, शुक्रिया
1: जी, शुक्रिया।

0: और अब ये प्रोग्राम, जी हाँ हेलो अयोध्या पहुंच गया, कहीं नहीं पहुंचा है, घड़ी हम देखकर बता रहे हैं टाइम आपको कि वहां तक पहुंच गया है। 9:48 हो गए हैं और ये प्रोग्राम बस आधे में पहुंचने वाला है। इस बार मेरे पास कॉल किसकी आई जी, नाम बताइए अपना। जी अपना रेडियो की आवाज़ तो कम कीजिए, स्पीकर की आवाज़ कम कीजिए, ये सब करेंगे तो फिर कॉल आपकी ड्रॉप हो सकती है। ठीक है तो बताइए आप।
1: हाँ
0: तो
1: बलरामपुर से,
0: बलरामपुर जी, क्या करते हैं वहाँ पर? जी क्या करते हैं वहाँ पर?
1: ये कटलस का काम करते हैं हम।
0: अच्छा, कटलस का काम करते हैं, तो काम में मजा आता है आपको?
1: बिल्कुल आता है, लेकिन गर्मी बहुत पड़ता है सर।
0: गर्मी तो पड़ता ही है, देखिए जाड़ा भी बहुत पड़ता है, गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी बहुत होती है, तो काम तो करना ही करना है, घर से तो निकलना ही निकलना है।
1: सही है,
0: तो नहीं निकल
1: थोड़ा फुर्सत में थे
0: जी,
1: तो हमने आपकी आवाज सुने तो हमने कहा चलो थोड़ा बात करें, गाना भी सुन लेंगे।
0: तो अगर घर से निकलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो पेट में रोटी कैसे जाएगी?
1: नहीं सर जी, मेहनत बहुत पड़ता, खाना नहीं खाया जाता है।
0: बस यही हम लोग कहते हैं कि अगर कोई काम आपका नहीं है ना, तो बेमतलब घर से बाहर गर्मी में आदमी को नहीं निकलना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए।
1: नहीं नहीं, नहीं सही है, लेकिन अब हमारा गर्मी वाला काम ही है, सहारक में ही काम चलता है।
0: जी तो सबसे बढ़िया चीज
1: काम तो करने,
0: सबसे बढ़िया कौन सी चीज बनाते हैं आप?
1: खाना सभी अच्छा रहता हमारा।
0: नहीं, कोई तो ये तारीफ करता होगा ना कि आपने, अरे वो बड़ा जबरदस्त बनाया, लजीज बनाया आपने। तो चलिए इस प्रोग्राम में गाना बता दीजिए, कौन सा चलवाएं आपके लिए?
1: वही गंगा के सौगंध का गाना सुनाइए, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
0: जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया गाना आपने सिलेक्ट किया सुनवाने के लिए, शुक्रिया आपका। इश्तियाक अहमद जी,
1: जी

तो ये देखिए, हम लोग बंद कमरे में यहाँ पे बैठते हैं स्टूडियो में, और इतने लोगों से बात करते हैं, मन इतना खुश हो जाता है। माइक तो एक होता है और हम भी यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन आप सब जब लोग एक साथ यहाँ जुड़ते हैं अलग अलग दूर दूर से, तो मन बाग बाग हो जाता है। कितनी बढ़िया टेक्निक है कि नहीं? अब देखिए मेरे साथ।

0: आ कौन गया बात करने के लिए जी, नाम बताइए।
1: शिप्रा गुप्ता।
0: शिप्रा गुप्ता कहाँ पर सुन रही हैं ये प्रोग्राम इस वक्त?
1: अयोध्या रायगंज।
0: अच्छा जी, और इसके पहले भी कभी आकाशवाणी अयोध्या में आपकी कॉल लगी सुबह दोपहर शाम?
1: नहीं, पहली बार लग रही है।
0: तो आपका तहे दिल से स्वागत करते, मेरा गला फंस रहा है बोलने में, चलिए जैसा भी है। तो आज कैसा मन हो गया कि आज कॉल लगाएंगे तो लग ही जाएगी फिर?
1: नहीं ऐसी तो बात नहीं, रोज लगाते हैं, बस आज लग अच्छा था इसलिए लग गया।
0: अब आपने बताया ना कि रोज लगाते थे, आज तक लगी नहीं और आज कॉल लग गई, आप बहुत ही लकी हैं, है ना? तो क्या करती हैं शिप्रा, वहाँ क्या करती हैं आप रायगंज में? क्या कह रही हैं? अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि अब तो अयोध्या में बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं वहाँ पर, तो आपको तो छुट्टी नहीं मिलती होगी दुकान से जाने की।
1: नहीं, मम्मी पापा रहते हैं, हम घर में रहते हैं।
0: अच्छा, चलिए मम्मी पापा की सेवा करती रहिए, आज परिवार दिवस भी है, है ना? तो आपका हम गाना सुनवा रहे हैं जो आपने ऑफ माइक बताया, साजन चले ससुराल फिल्म से, ठीक है? तो कॉल के लिए शुक्रिया आपका शिप्रा।
1: थैंक यू।

और इस गाने के बाद मेरे पास एक दिलवाला भी आ गया। आइए उस दिलवाले को लेके आया जाए प्रोग्राम हेलो अयोध्या में। जी बताइए अपना नाम। हेलो जी, आप प्रोग्राम में आ चुके हैं, नाम बताइए।

0: कहाँ से? लीजिए, उसकी कॉल लग रहा है ड्रॉप हो गई है। बैजनाथ, बैजनाथ पांडे जी की बस्ती से कॉल लगी थी, दिलवाले का गाना सुनना चाहते थे। ये दिलवाले का गाना, अब देखें किसकी नजर होता है। अब मेरे पास कॉल जी, किसकी कॉल आ गई बताइए अब।
1: हेलो,
0: अपना नाम बताइए सर जी।
1: जगजीवन प्रसाद फैजाबाद।
0: जगजीवन प्रसाद फैजाबाद, ये कौने गांव से बोल रहे हैं आप?
1: यही आपके स्टेशन के पास, बेगम गढ़िया।
0: अच्छा, बेगमगंज गढ़िया, हम समझे लड़हिया।
1: नहीं, गढ़िया गढ़िया।
0: हाँ, जहाँ लोग ज्यादा लड़वाते हैं ना, जिस मोहल्ले में
1: जी,
0: तो उसको लड़वैया बोलते हैं।
1: जी जी, आप मुझे गाना सुनाइए, दिलीप कुमार की मूवी संघर्ष, तस्वीर मोहब्बत की जिसमें।
0: अरे देखता हूँ संघर्ष यहाँ है कि नहीं है। है संघर्ष मेरे पास नई वाली है, पुरानी दिलीप कुमार की नहीं है, कोई और बताइए। दिलीप कुमार तो कई
1: फिल्मों में, मेरा दीवानापन है।
0: बैराग फिल्म से सुनवा देते हैं, उसमें दिलीप कुमार की फिल्म है वो, ठीक है
1: जी।
0: तो और क्या करते हैं आप?
1: सर हम सोफा फर्नीचर बेड और बनाते हैं, पुराना रिपेयरिंग।
0: सोफा फर्नीचर बनाते, तो सोफे की डिमांड आजकल आ रही है बढ़िया।
1: हाँ, पहले तो आकाश बारी सब कुर्सियाँ बनाते थे जब मिश्रा जी थे।
0: अच्छा, हमारे यहाँ भी आप बना के दे गए हैं। अच्छा,
1: बहुत पहले मिश्रा जी थे ना, कंठी माला वाले।
0: हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे।
1: हाँ, तभी मैं बनाता था बहुत कुर्सियाँ।
0: जी जी जी, तो ये बताइए कि आज गाना आपको बैराग फिल्म से हम सुनवाई रहे, दिलीप कुमार को इतना पसंद क्यों करते हैं, क्या बात है?
1: उसकी फिल्में बढ़िया, गाने बढ़िया बढ़िया।
0: ये तो बात है। तो इसमें गाने मेरे पास बहुत हैं, एक तो है छोटी सी उम्र में लग गया रोग, मैं बैरागी नाचूंगा, सारे
1: वही गाओ, वही गाओ।
0: हाँ, मैं बैरागी नाचूंगा। चलिए बढ़िया है। और
1: बुधवार के बाद में सुनाइएगा।
0: हाँ ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, पूरा सुनवाइएगा,
1: कल ढूंढवा के गाना सुनवाइएगा संघर्ष वाला।
0: हाँ, वो देखिए अभी कंप्यूटर में पड़ा नहीं है, कंप्यूटर में पड़ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा। एक बार अपना नाम फिर से बताइएगा। हाँ,
1: जगजीवन प्रसाद।
0: जगजीवन प्रसाद जी, चलिए सोफा बनाते रहिए, लोगों को आराम दीजिए। एक बात बताऊं, लेकिन वैसे मुझे सोफे पे बैठना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों।
1: हाँ सर, गर्माता है।
0: गर्माता नहीं है, जब वेट वाला इंसान उस पे बैठ जाता है ना, तो धरती में घुस जाता है।
1: हाँ हाँ, वही तो बात है।
0: और उसमें कमर सीधी नहीं रहती है, कुर्सी पे आपकी कमर सीधी रहती है,
1: लकड़ी कुर्सी से बीनने वाली होती, बढ़िया होती है।
0: इसीलिए बहुत आरामदेह बेड पर या सोफे पर बैठने से आपकी कमर लचक जाएगी।
1: जी
0: चलिए, आपका बिजनेस भी तो चलना चाहिए ना, लोग सोफा नहीं खरीदेंगे तो आप पैसा कैसे कमाएंगे। चलिए शुक्रिया, गाना सुनिए।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: रेडियो पर आने का। जी बताइए अपना नाम वहाँ से।
1: ठाकुर प्रसाद यादव केशवपुर से बोली थे सर।
0: केशवपुर ये कौन साइड में है, सोहावल भरतकुंड या कहीं
1: नहीं,
0: और?
1: नहीं नहीं केशवपुर बस्ती।
0: अच्छा बस्ती से आपने कॉल लगाई है, वाह बढ़िया। तो बस्ती में प्रोग्राम सबको बढ़िया सुनाई पड़ता है आकाशवाणी अयोध्या का?
1: हाँ हाँ बराबर सुनाई पड़ता है, यही बस सरजू इसी पार में है
0: नदिया के उस पार, ठीक है।
1: हाँ
0: तो ये बताइए मोबाइल एफएम में अपने सुनते हैं कि रेडियो रखे हैं घर में ट्रांजिस्टर?
1: नहीं मोबाइल पे सुनते हैं सर।
0: चलिए बढ़िया है, आजकल लोग ब्लूटूथ स्पीकर से भी जोड़ लेते हैं तो आवाज बहुत और तेज हो जाती है वहाँ पर, है ना?
1: हाँ जी।
0: हमारे पास एक कॉलर है अपने गाँव में, वो रेडियो इतना तेज लगाते हैं साउंड बॉक्स पे कि वो गांव वाले पूरा सुनते हैं 2-3 किलोमीटर तक हाँ तो ये बताइए आज गाना कौन

0: तक। हाँ तो ये बताइए आज गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: हाँ वही बताए हम, धूप में निकला कर न करो रूप की रानी कोरा रंग काला पड़ जाए।
0: बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोग कहते भी हैं कि धूप में ज्यादा निकलने से रंग काला हो जाता है वैसे। है ना, और कुछ लोग कहते हैं कि चाय पीने से भी रंग काला हो जाता है। चलिए गाना आपको सुनवाते हैं।
1: इस समय धूप हो रही है सर।
0: वो तो है ही है, लेकिन अगर धूप में निकलेंगे नहीं तो फिर घर का काम भी नहीं होगा ना, ऑफिस जाना है तो धूप में निकलना ही पड़ेगा छाता लगाकर। चलिए कॉल के लिए शुक्रिया आपका, गाना सुनिए ठाकुर प्रसाद जी।

आपकी भी बारी आ सकती है इस प्रोग्राम में। 7376 40 90 नंबर को मिलाकर बस कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी उंगलियां घुमानी है अपनी, डायल नहीं करना। डायल तो पुराना जमाना बीत गया जब उंगली बीच में रख के हम लोग पूरी रिंग घुमाते थे, लेकिन अब केवल आपको नंबर पुश करने हैं 7376804090।

0: जी हाँ, आपकी लगातार कॉल्स आ रहे हैं यहाँ पर, और अब मेरे पास आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या की बहुत ही पुरानी लिसनर्स जो हैं उनका नंबर लग चुका है। आइए उनसे बात करते हैं। जी नाम बताइए अपना सबको।
1: सर नमस्ते सर, मेरा नाम पूजा सिंह है, मैं ग्राम सिंहरिया जिला अयोध्या से हूँ।
0: और आपने इतने दिनों के बाद आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या को याद किया, इतने दिन तक आपको याद नहीं आई?
1: सर आती है याद, सुनते हैं सर, बट कॉल नहीं करते हैं।
0: देखिए मैंने आपको ऑफ माइक पहचान लिया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि हमारे यहाँ पुरानी लिसनर थी पूजा सिंह, कहीं आप वो तो नहीं है? तो आपने कहा हाँ वही है।
1: जी सर।
0: तो ये गले को क्या हो गया, कुछ ठंडा पानी पी लिया ज्यादा क्या?
1: जी जी सर।
0: शादियों के मौसम में लोग जो है ठंडा
1: गर्म चेंज हो रहा है सर, हाँ, खांसी जुकाम हो गया था।
0: ये भी है, ये भी है। और मम्मी पापा सब बढ़िया आपके घर में, परिवार में सब?
1: जी सर सब बढ़िया, वो दोनों भी लोग सुन रहे हैं, पापा जी मम्मी जी भी सुन रहे हैं।
0: तो मम्मी पापा का नाम लेना हो तो नाम ले लीजिए,
1: सुनते हैं रेडियो,
0: तो जिसका भी नाम लेना है ले लीजिए, उनको भी याद कर लीजिए आज।
1: जी सर मेरे पापा जी हैं श्री चंद्रा सिंह, वो सुन रहे हैं, मेरी मम्मी सुन रही हैं, बाकी तो हम तीन ही सुन रहे हैं, और एक रॉकी है जो जम्मू कश्मीर में सुन रहा है।
0: अरे वाह क्या बात,
1: डेडिकेटेड है ये गाना, मेरे फ्रेंड है वो भी।
0: हाँ क्योंकि अब देखिए ये प्रोग्राम जो है ना नेट पे आ गया, तो ये देश और दुनिया में हर जगह पहुंच रहा है ना।
1: जी सर वो जो है वहाँ न्यूजीलैंड में यार पसंद,
0: जी जी
1: मैंने वो नहीं सुनते थे, बट मैंने उनको बताया वो वहाँ आर्मी में है, तो मैंने उनको बताया तो वहाँ वहाँ सुनते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आकाशवाणी।

0: तो मैं भी आपसे यही कहूंगा,
1: लगता नहीं उनका
0: जी जी, तो पूजा मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या को भूलिए नहीं, यहाँ पर आप बराबर सुनते रहें प्रोग्राम, यहाँ पे एक से एक बढ़िया आरजे एंकर डेली प्रोग्राम करते हैं, है ना
1: जी सर? सुनते भी हैं, मेरे पापा जी, मम्मी जी और मैं, हम तीनों बराबर सुनते हैं सर, बट कॉल नहीं करते हैं। अब हम बहुत दिनों के बाद कॉल किए हैं आज, और बाकी तो सुनते रहते हैं आपके प्रोग्राम, सारे ही अच्छे होते हैं।
0: बढ़िया
1: है। तो हम तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी अयोध्या से, जब फैजाबाद नाम था तब से जुड़े हुए हैं।
0: तो अभी मेरे पास जो है बस्ती से अजिता रावत की भी कॉल आई थी, किसी वजह से वो ड्रॉप हो गए उनकी कॉल।
1: जानते हैं वो भी बहुत पुरानी है,
0: जया और अजिता रावत दोनों सुनते हैं मम्मी पापा
1: आकाशवाणी अयोध्या की
0: जी, वो तो पूरे परिवार के साथ आकाशवाणी अयोध्या में हम सबको मिलकर भी गई हैं यहाँ पर।
1: जी जी सर।
0: चलिए तो गाना सुनवाते हैं पूजा सिंह जी आपका, ठीक है? शुक्रिया आपका
1: जी सर, थैंक यू सो मच।
2: रुक जा।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: जी हाँ, एक कॉल मेरे पास कुछ देर पहले भी ड्रॉप हुई थी, बैजनाथ पांडे जी की बस्ती से नहीं बल्कि, हाँ जी, बस्ती से ही उनकी कॉल ड्रॉप हुई थी, तो उनसे भी कहेंगे कि वो कॉल यहाँ पे लगाते रहे, हो सकता है उनसे भी बात हो जाएगी। और अब किससे बात होने जा रही है, बताइए जी अपना नाम।
2: चंदन दुबे।
1: कंचन।

0: दुबे।
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं पहले ये बता दीजिए मुझको।
1: सर जी क्लास दो।
0: क्लास दो में पढ़ते हैं। बहुत छोटे हैं फिर तो आप, आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी आ रही है। तो ये नंबर मिला कि किसने दिया, आपने मिलाया कि पापा ने मिलाया?
1: सर जी पापा ने।
0: तो पापा से बात नहीं कराएंगे?
1: सर जी लेंगे।
0: हाँ आप भी बात करेंगे, आपसे हम बात करेंगे थोड़ी सी अभी। जी हेलो।
2: हेलो सर नमस्ते।
0: हाँ जी, ये बच्चा जो है किस फिल्म का गाना सुनेगा?
2: सर वो मम्मी पापा वाला जो गाना है।
0: अच्छा, तेरी उंगली पकड़ के चला।
2: जी जी जी।
0: ये
2: काफी देर से हम कह रहे थे सो जाओ, लगेगा नहीं फोन, तो ये काफी देर से परेशान था, पापा लगाओ हम सर से बात करेंगे।
0: जी जी, क्या नाम बताया था इसने, क्या नाम क्या है इसका?
2: जी लड़के का नाम चंदन दुबे है।
0: अच्छा चंदन दुबे।
2: मेरा नाम, जी मेरा नाम जगदंबिका प्रसाद दुबे है।
0: हाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, चंदन से मैंने कंचन दुबे कर दिया था, क्षमा कीजिएगा। है ना, चलिए कभी कभी एक जैसे नाम होते हैं ना तो वो रेडियो कान में बिल्कुल क्लियर नहीं होते, हम लोग हेडफोन में सुनते हैं ना यहाँ पर।
2: जी,
0: तो सीता है कि गीता है कि संगीता है क्या है। चलिए तो चंदन को गाना हम उसकी पसंद का सुनवा रहे, एक बार रेडियो पर उसको और ले आइए। चंदन
2: आइए।
0: हाँ जी
2: सर, इसे कुछ भी पूछिएगा बता देगा।
0: अच्छा
2: पहले में स्मार्ट है, यहाँ मोक्स वाला में पढ़ता है। हाँ, एकेडमी।
0: जी
2: जी पढ़ने में ठीक है।
0: और एक चीज हम और देख रहे हैं कि मौसवाला में लाइन इतनी मेहरबान हो गई है हमारी कि वहाँ से बहुत सी कॉल्स आ रही है मौसवाला से।
2: जी,
0: चंदन कहाँ चले गए, खाना खाने चले गए?
2: लीजिए सर बात कीजिए।
0: हाँ जी चंदन जी, बढ़िया है ना आप, अब मजा आ रहा है आपको, रेडियो पर आपकी आवाज आ रही है? हाँ तो स्कूल रोज जाते हैं ना, नागा तो नहीं करते हैं? हाँ स्कूल जाया कीजिए, वहाँ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, ठीक है ना?
1: यस सर।
0: चलिए आपका गाना मैं सुनवा रहा हूँ, आपकी मम्मी को भी ये गाना सुनवा रहा हूँ, ठीक है? नमस्ते।

0: बताइए अपना नाम, पहुंच गए आप?
1: सर मुमताज नगर से संजय यादव बोल रहा हूँ।
0: संजय यादव जी क्या करते हैं मुमताज नगर में?
1: सर पढ़ाई करते हैं सर, घर पे रहते हैं।
0: वैसे एक बार मैं आपके गांव वहाँ पे गया हुआ हूँ मुमताज नगर में, जो वहाँ पे स्कूल है ना एक बेसिक।
1: जी जी जी सर, जी सर।
0: वहाँ मैं गया हुआ हूँ। और आज गाना आप बता रहे हैं, डांस वाला कोई सुनवा दे, आपको डांस करना है क्या घर में?
1: नहीं सर डांस नहीं करना है सर, बढ़िया सुनाइए सर, डांस करने का मन
0: बहुत
1: है।
0: बहुत ही बढ़िया गाना मैंने निकाला है, दलेर मेहंदी और सुनिधि चौहान की आवाज में वो गाना, मैं भी कभी कभी सुनता हूँ, कर ले बेबी डांस फैंस।
1: जी सर।
0: तो ये बताइए, अभी मैंने कुछ दिन पहले के यहाँ पे किसी ने कॉल लगाई थी तो वो बता रहे थे कि अभी मैंने आज भी बताया कि आपके गांव में कोई एक लड़का है कि जो कि स्पीकर पे रेडियो लगा देता है, 4-5 किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है, तो वो आप ही तो नहीं है कहीं?
1: मेरा छोटा भाई है वो।
0: अरे क्या बात है, इतना मुझे पता था कि मुमताज नगर में ये चीज हो रही है। तो भाई का नाम क्या है जो ये काम करता है वो, ये वाला?
1: सर इसका नाम हेमराज यादव सर, पढ़ता नहीं है जल्दी, मतलब पढ़ने को बोलो तो जाता ही नहीं है।
0: चलिए लेकिन जो भी वो काम कर रहा है ना, बहुत बढ़िया कर रहा है वो।
1: जी।
0: इतने लोगों को वो घर बैठे रेडियो सुनवा रहा है हम लोग का, आकाशवाणी अयोध्या है ना।
1: जी जी।
0: तो हम
1: जी।
0: लोग आपके गांव भी पहुंचने वाले हैं क्योंकि आकाशवाणी का 90 साल पूरा होने जा रहा है 8 जून को।
1: जी जी।
0: तो 8 जून से पहले आपके गांव की रिकॉर्डिंग करने हम लोग आ रहे हैं वहां पर, ठीक है?
1: ठीक है सर, ठीक है।
0: तो गाना सुनवा रहे हैं हेमराज को और संजय यादव को, ठीक है
1: सर? जिस दिन नहीं, मतलब एक दो दिन हो जाता है अगर नहीं सुनाते हैं ना तो लोग पूछने लगते हैं भैया क्या हुआ, बाजा खराब हो गया क्या?
0: अच्छा ऐसा भी, और तो डिमांड बढ़ गई ना फिर आपकी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और गाना आपका पहुंच गया आपके पास।

0: चलिए जी जल्दी से यहाँ पर किसी और को भी लाते हैं, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे कि मेरी कॉल आपने काट दी या ड्रॉप कर दी, मुझसे बात नहीं की आपने। जी बताइए कौन है?
1: रामू जी
0: भरत कुंड अयोध्या से। क्या बात है, भरत कुंड में भी आप जो वहाँ पे मंदिर बना हुआ है ना, नंदीग्राम ठीक है ना?
1: हाँ, नंदीग्राम बना है,
0: उसमें भी अब बहुत से काम होने जा रहे हैं, वो भी मंदिर बहुत बढ़िया बनने जा रहा है अब, है ना?
1: हाँ, मंदिर तो
0: लाइटिंग लगेगी वहाँ पे, और भी बहुत सी चीजें, सड़कें चौड़ी होंगी वहाँ पर, है ना? तो मैं भी वहाँ पे गया हूँ, मैंने दर्शन किया हुआ है वहाँ पर,
1: पार्क बना हुआ है।
0: जी जी जी, तो जैसे दर्शन नगर के पास एक कोई कुंड है, वहाँ पे सूर्य कुंड है, क्या है?
1: ये सूर्य कुंड है
0: ना, जैसे वो बन गया बढ़िया, वैसे आपका भी ये जो नंदी ग्राम है।

0: करने जाने वाला है ना, तो ये बताइए रामू जी करते क्या वहाँ पर आप?
1: सर हम सिलाई करते हैं।
0: सिलाई में आप क्या पूरी ऑल इन वन है, सभी कपड़े सिलते हैं, बच्चों के, लेडीज के, जेंट्स के?
1: सर हम पैंट शर्ट ज्यादा सिलते हैं, जेंट्स
0: ना। हाँ हाँ हाँ,
1: पैंट शर्ट और थोड़ा वो लेडीज काम करते हैं।
0: अच्छा ये बताइए रामू जी कि अब रेडीमेड का जमाना आ गया तो क्या अभी भी लोग पहुँचते हैं वहाँ पर कपड़ा सिलवाने के लिए अपना मन पसंद? पहुँचते होंगे।
1: हाँ पहुँचते हैं सर,
0: क्योंकि रेडीमेड का कपड़ा ना सबके शरीर पर फिट नहीं बैठता है।
1: सिलाई अभी भी है चल रही।
0: कभी जो है कमर लूज हो गई तो लंबाई बढ़ गई पेंट की, तो ये सब होता रहता है रेडीमेड में, है ना। तो गाना आपको कौन सा सुनवाया आपने बताया? बुलंदी फिल्म का।
1: बुलंदी का।
0: चलिए कॉल के लिए शुक्रिया आपका, फिर से आइएगा हमारे प्रोग्राम में और बातें करिएगा प्यारी प्यारी मीठी मीठी, ठीक है?
1: हाँ सर, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: और आइए अब किससे बात करते हैं, हम उनकी भी आवाज ले आते हैं रेडियो पर। जी नाम बताइए अपना। जी आप आकाशवाणी अयोध्या के हेलो अयोध्या प्रोग्राम में आ चुके हैं, नाम बताइए वहां से। अब देखिए बोल नहीं रहे हैं ये। हेलो हेलो, देखिए कॉल भी इनकी ड्रॉप हो गई है। मेरे पास ये बंसी ने कॉल की थी सादतगंज से, और उनकी जगह पे कोई और आने वाला है। जी आइए आप भी आ जाइए प्रोग्राम में, नाम बताइए। जी अपना नाम बताइए क्योंकि टाइम बहुत कम है। हेलो मत करिए और रेडियो की आवाज कम रखेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी।
1: जी जी
0: हाँ बताइए अपना नाम।
1: मैं अनिल यादव बात कर रहा था, तहसील बंदेवर जिला तिकोण मध्य प्रदेश।
0: सीहोर से बात कर रहे हैं? अच्छा
1: मध्य प्रदेश से सर।
0: हाँ हाँ सीहोर सीहोर मुझे पता लग गया। नाम क्या बताइए फिर से?
1: अनिल यादव
0: जी। गाना देखिए मेरा गांव मेरा देश फिल्म का निकला हुआ है, वही गाना चलेगा क्योंकि उनकी भी पसंद पूरी हो जाए जिनकी कॉल यहाँ ड्रॉप हो गई। ठीक है
1: जी जी सर, दूसरा गाना नहीं बजेगा?
0: नहीं नहीं देखिए अब मेरे पास 3 मिनट का वक्त और बचा हुआ है, जब तक मैं गाना ढूंढूंगा तब तक पूरा फिर वक्त सारा चला जाएगा। ठीक है तो आपके साथ साथ बंसी जी भी गाना अपना सुन लेंगे, उनकी भी कॉल ड्रॉप हो गई यहाँ पे। आज 2-3 कॉल ड्रॉप हुई है, बैजनाथ पांडे जी की ड्रॉप हुई और ये बंसी जी की कॉल ड्रॉप हुई। चलिए गाना सुनिए, कॉल के लिए शुक्रिया आपका सीहोर में।

तो कंट्रोल रूम से आज मेरे साथ थे इंजीनियर स्वप्निल मिश्रा। अपने रेडियो मीत अमरजीत को अब हेलो अयोध्या प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। आप सब हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन आपको इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो अयोध्या। अपना और अपनों का सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। आकाशवाणी अयोध्या से ही 101.9 मेगाहर्ट्ज ट्यून करके एफएम पर और देश और दुनिया में हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी अयोध्या को प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर इंटरनेट के जरिए। 10:30 हो चुके हैं, अब से लेकर 11 बजे तक आपको हम कनेक्ट कर रहे हैं विविध भारती मुंबई से, जहां से इस वक्त प्रोग्राम हो रहा है ढलती जाए रात। उसमें सुनेंगे आप कुछ पुराने सदाबहार गाने।

0: ढलती जाए रात प्रोग्राम में अभी आप विविध भारती से पुराने गाने सुन रहे थे। विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे सुबह 6:05 से। यह है आकाशवाणी का अयोध्या FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। रात के 10:59 होने जा रहे हैं। बस कुछ ही देर के बाद ठीक 11 आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने UAE के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेल्फ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और UAE ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को

आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

0: 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा करेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a report of a media house on cess or tax or surcharge on foreign travel. He said